0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है, जो कि दोपहर के 12 बजे तक निरंतर जारी रहेगी। आज शक संवत 1948 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। तदनुसार 22 अगस्त 2026 आज दिन शनिवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक छोटे से शब्द का बदलना आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है? आज की कहानी आपको शब्दों के जादू के बारे में बताएगी। एक बहुत बड़े शहर के व्यस्त फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था। वो अंधा था और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसके पास एक गत्ते का टुकड़ा यानी साइन बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूं, कृपया मेरी मदद करें। पूरा दिन लोग वहां से गुजरते, लेकिन बहुत कम लोग उसकी टोपी में सिक्के डालते। ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते। बेचारे बूढ़े की टोपी शाम तक लगभग खाली ही रहती थी। तभी वहां से एक विज्ञापन बनाने वाली महिला गुजरी। वो रुकी और उसने देखा कि बूढ़े की टोपी में बहुत कम पैसे हैं। उसने बूढ़े से बिना कुछ कहे उसका साइन बोर्ड उठाया, उसे पलटा और उस पर कुछ नए शब्द लिख दिए। जैसे ही उसने वो साइन बोर्ड वापस रखा, चमत्कार होने लगा। जो भी वहां से गुजरता वो रुकता, साइन बोर्ड पढ़ता और बूढ़े की टोपी में पैसे डालने लगता। देखते ही देखते बूढ़े की टोपी सिक्कों और नोटों से भर गई। शाम को वह महिला फिर वहां से गुजरी। बूढ़े ने उसके जूतों की आहट पहचान ली। बेटा, सुबह तुम ही यहां आई थी ना, तुमने मेरे बोर्ड पर ऐसा क्या लिख दिया कि आज हर कोई मेरी मदद कर रहा है? महिला ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैंने वही लिखा जो आपने लिखा था, बस लिखने का तरीका बदल दिया। उसने बोर्ड पर लिखा था, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। दोस्तों, दोनों लाइनों का मतलब एक ही था, कि वह आदमी अंधा है, लेकिन पहली लाइन सिर्फ एक कमी बता रही थी और दूसरी लाइन ने लोगों को यह एहसास कराया कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि वे इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। उस एहसास ने लोगों के दिल खोल दिए। जिंदगी में हम अक्सर क्या कह रहे हैं से ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम कैसे कह रहे हैं। हमारे शब्द किसी को दुखी कर सकते हैं और हमारे शब्द ही किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। अगर आपकी बात नहीं बन रही है तो शायद अपनी बात कहने का तरीका बदलने का समय आ गया है। अच्छे शब्द चुनिए, क्योंकि शब्द मुफ्त होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत कीमती होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिसका शीर्षक था, अंधा भिखारी और बदला हुआ साइन बोर्ड। मैं हूं दानिश, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, जहां से हर कहानी आपके दिल तक जाती है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम आज केंद्रित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं शिक्षाविद वामन राव बलिराम लाखे के जीवन पर। सुबह 8 बजे इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम में आज हम जानेंगे मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला के संबंध में। जानकारी देंगी इतिहासविद डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। सुबह 9 बजे योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय होगा पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद का खंडन। इस विषय पर जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से बातचीत करेंगी सुनीता सिंह। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम भारत विभूति, जिसमें आज हम कलाकार पेंटिंग कलाकार के शंकर पिल्ले के जीवन के बारे में जानेंगे। और इस कार्यक्रम को स्वर दिया है दीपक नेमा और रानी रायकवार ने। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम आज़ाद हिंद, जिसमें आज स्वाधीनता संग्राम सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम प्रसारित होगा। सुबह 11 बजे सुरसागर कार्यक्रम में डॉक्टर नीना श्रीवास्तव का शास्त्रीय गायन प्रसारित होगा। और 11:30 पर स्वामी विवेकानंद के जीवन मूल्यों और आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं अग्नि और छंद है जगती।
1: दानो अग्ने बृहतो दाह सहस्रिणो दुरो नवाजम श्रुत्या अपावृधि प्राची द्यावा पृथ्वी ब्रह्मणा कृधि स्वर्ण शुक्र मुषसो विद्युतुः। हे अग्निदेव, आप हमें हजारों तरह की विभूतियां प्रचुर मात्रा में प्रदान करें। कीर्तिदायी अन्न प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। उषाएं आपको आदित्य के समान प्रकाशित करती हैं, अतः द्युलोक तथा पृथ्वी लोक को ज्ञान के सहारे हमारे अनुकूल बनाएं। स इधान उषसो राम्या अनुस्वर्ण दीदे दरुषेण भानुना होत्राभिरग्निर्मनुषः स्वध्वरो राजा विषामतिथिश्चा रुरायवे। उषा की समाप्ति के बाद प्रज्वलित अग्निदेव अपने उज्ज्वल तेज से प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठ याज्ञिक प्रजाधिपति वे अग्निदेव मनुष्यों की स्तुतियों से प्रशंसित होते हुए प्रिय अतिथि की तरह पूज्य होते हैं। एवा नो अग्ने अमृतेषु पूर्व्या धीष पीपाय बृहद्दिवेषु मानुषा दुभाना धेनुर्व्रजनेषु कारवेत्मना शतिनम पुरुरूपमिषणि। हे अग्निदेव, आप अत्यंत तेजस्वी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। मानव समुदाय के बीच में आप स्तुतियों से तृप्त होते हैं। याजकों को आप कामधेनु के समान असंख्य प्रकार का धन प्रदान करते हैं। वयमग्ने अर्वता वा सुवीर्यम् ब्रह्मणा वा चितयेमा जनाम अति अस्माकम् द्युम्नमधि पंच कृष्टिशुच्चा स्वर्ण शुशुचीत दुष्टरम्। हे अग्निदेव, हम पराक्रम तथा ज्ञान के द्वारा सामर्थ्यशाली बनकर मानव समुदाय में श्रेष्ठ बने। हमारा उच्च स्तरीय अनंत तथा दूसरों के लिए अप्राप्त धन समाज के सभी वर्गों में सूर्य की तरह प्रकाशित हो। स नो बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन् सुजाता इशयन्त सूरयः यमग्ने यज्ञमुपयन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्वेदमे। हे बलशाली अग्निदेव, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ज्ञानी जन यज्ञ में अन्न की कामना करते हैं तथा धन धान्य से संपन्न मनुष्य हमारी इच्छाओं को जानने वाले आपको प्रशंसनीय पूजनीय तथा तेजस्वी रूप में अपने घरों में प्रज्वलित करते हैं। उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च शर्मणि वस्वो रायः पुरुषचंद्रस्य भूयसः प्रजावतः स्वपत्यस्य शक्धिनः। हे ज्ञानोत्पादक अग्निदेव, ज्ञानी स्तोताओं सहित हम दोनों सुख की कामना से आपके आश्रित हों। आप हमारे लिए उत्तम संतति रहने के योग्य ग्रह आदि तथा श्रेष्ठ संपत्ति प्रदान करें। ये स्तोत्रिभ्यो गोवग्रामश्व पेश समग्ने राति मुपस्रजन्ति सूरयः अस्मांच तांश्च प्रहिनेषि वस्य आ बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे अग्निदेव, जो ज्ञानी जन स्तोताओं को श्रेष्ठ गौएं तथा बलशाली घोड़ों से युक्त धन प्रदान करते हैं, आप उन्हें तथा हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें। यज्ञों में वीर संतति से युक्त होकर हम आपकी स्तुति करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें। और क्या आपको पता है, बहुत तेरी बातें छोटी छोटी ही होती हैं। ज्यादातर चीजें जिनके बारे में हम दिन भर चिंता करते हैं और तनाव में रहते हैं, वे अधिक समय तक मायने भी नहीं रखती। इसीलिए अपूर्णता को स्वीकार कर ले। ये परफेक्शनिस्ट होने से अच्छा है।

इस सोच को छोड़ दें कि सौम्य और शांत लोग सुपर अचीवर नहीं हो सकते। वो हो सकते हैं, आप कूल रहकर भी अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी सोच के स्नोबॉल प्रभाव को समझें, क्योंकि एक नकारात्मक विचार आसानी से और भी कई नकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है।

दूसरे लोगों और उनकी समस्याओं के लिए समझ विकसित करने से आपको अपनी समस्याओं के बारे में सोचना बंद करने में मदद मिलती है। यह आपको अधिक कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण देता है। अपने आप को यह याद दिलाएं कि जब आप इस दुनिया से विदा होंगे तो आपके हाथ खाली नहीं होंगे। आप कुछ ऐसा हासिल करके जाएंगे जो मूल्यवान है।

जब भी आप परेशान हो तो खुद से ये पूछे कि क्या ये एक साल बाद भी मायने रखेगा। ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है नहीं, इसलिए इस बारे में ज्यादा चिंता ना करें। खुद से ये सवाल पूछने से आपको ज्यादा शांत जीवन जीने में मदद मिलेगी। इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि जीवन निष्पक्ष नहीं है और उसके साथ जीने की कोशिश करें।

अपनी चिंता और टेंशन को कम करने के लिए दूसरों को सही होने दे, उन्हें ये विश्वास करने दे कि वे ठीक कर रहे हैं। किसी को भी ये सुनना पसंद नहीं है कि वो गलत हैं। ज्यादा धैर्यवान बने, धीरज का अभ्यास करें, दूसरों में मासूमियत खोजने की कोशिश करें और देखें कि वे जानबूझकर आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

0: वर्तमान में जीना सीखें। अपने मस्तिष्क को इस पर ना भटकने दें कि अतीत में क्या हुआ था या भविष्य में क्या होगा। बस इसे बार बार वर्तमान में लौटा लाएं, क्योंकि वर्तमान ही आपके पास वास्तव में है।
1: भजन।

करने के लिए हमेशा कुछ होता है। इसीलिए जब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ हो, तब भी अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। और जब आप अपने सभी टास्क पूरे कर लें, तो खुश होने का इंतजार ना करें। किसी भी बात पर प्रसन्न हो जाएं, किसी भी बात पर मुस्कुरा दें और अपनी पीठ थपथपा लें।

हम अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हैं ये तो ठीक है, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक रहे, तभी वर्तमान के साथ ही भविष्य भी सुधरेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: क्या तुमने सुना?
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं शिक्षाविद वामन राव बलिराम लाखे के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भुइया के चूंदी कस कोदो के पान, तेल कोरत है किसान, ककवा कस धर के नतारी, चटनी सनबासी ला लकर धकर खा के, हता तता आगू आगू बैला ला रेंगा के, रेंगत है पाछू पाछू कमेला किसान, जब ले होइस रे बिहान, सूरज के निकले सवारी। डॉक्टर जीवन यदुराही की ये पंक्तियाँ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन, उनकी परंपराओं और खेती किसानी की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करती है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ अपनी इन्हीं छवियों के साथ भारत के नक्शे पर मुस्कुराता है। यूं तो ग्रामीण अंचल के ये मनोहारी रंग, खेतों में दूर तक फैली हरियाली, बैलों के गले में बंधी घंटी की आवाज, ये सभी कुछ मन को अपने रंग में रंग लेता है। लेकिन जब संवेदनाएं इन किसानों के साथ नंगे पांव धान के इन खेतों में उतरती हैं, तब ग्रामीण जीवन के श्रम और कठिनाई का गहराई से अनुभव करती हैं। ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सघन प्रयास किए। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में किसानों के हित में सहकारिता आंदोलन चलाने वाले एक ऐसे ही महानायक थे, माटीपुत्र वामन राव बलिराम लाखे। वो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वामन राव बलिराम लाखे का जन्म 17 सितंबर 1872 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके पिता पंडित बलिराम गोविंद राव लाखे एक निर्धन किंतु परिश्रमी व्यक्ति थे। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने अपने जीवन की दशा बिल्कुल ही बदल दी। जब बालक वामन राव का जन्म हुआ तब तक ये परिवार समृद्ध हो चुका था। वामन राव लाखे की आरंभिक शिक्षा रायपुर में ही हुई। माधवराव सप्रे उनके साथ पढ़ा करते थे। यहीं से दोनों की मित्रता आरंभ हुई, जिसने आगे चलकर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की नींव रखी। बहरहाल, रायपुर से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने नागपुर से बीए की परीक्षा पास की और सन 1904 में कानून की पढ़ाई पूरी कर वो रायपुर वापस आ गए। इसी बीच उनका विवाह जानकी बाई के साथ संपन्न हुआ। रायपुर से उन्होंने वकालत आरंभ की। वो कई वर्षों तक रायपुर के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन वकालत के पेशे को उन्होंने मात्र धन अर्जन के लिए आरंभ नहीं किया था। उनका मुख्य उद्देश्य जनसेवा था। वो हमेशा ही लोगों के दुख दर्द दूर करना चाहते थे। उनका यही लक्ष्य था कि किसी भी तरह आम जन की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार हो, वंचितों के हिस्से भी सुख सुविधाएं पहुंचें। इस लक्ष्य में उनकी पत्नी सदा उनके साथ रहीं और इसी बड़े उद्देश्य को लेकर वो लगातार आगे

वामन राव बलिराम लाखे के सामाजिक सरोकार सदा ही बहुत गहरे थे। यही कारण है कि वो आरंभ से ही सार्वजनिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्यों में संलग्न रहे। आम लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने पत्रकारिता के विकल्प को भी देखा। सन 1900 में जब माधवराव सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका की शुरुआत की तो वामन राव लाखे इसके प्रकाशक हुए और पंडित माधवराव सप्रे और उनके सहयोगी रामराव चिंचोलकर ने इसके संपादन का दायित्व संभाला। ये छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका थी। मात्र 3 साल ही इसका प्रकाशन हुआ लेकिन इसका प्रभाव व्यापक था। इस पत्रिका ने युवाओं को एक नई दिशा दी और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के एक युग का आरंभ हुआ। सामाजिक सहकार को वो अनेक समस्याओं के समाधान की तरह देखते थे। सन 1913 में उन्होंने सहकारिता आंदोलन को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता और सहकारी संगठनों की मजबूती के लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया। सन 1913 में उन्होंने कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की। सन 1936 तक उन्होंने इस बैंक में बिना वेतन लिए सचिव के पद पर कार्य किया। उनकी लगन और मेहनत का ही परिणाम था कि ये संस्था अपने शिखर तक पहुंची। सन 1937 से 1940 तक वो इसके अध्यक्ष रहे। लाखे जी के प्रयास से ही सन 1930 में बैंक का अपना भवन भी तैयार हुआ। आगे चलकर उन्होंने बलौदा बाजार में सहकारी किसान राइस मिल की भी स्थापना की। इस तरह किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। इसे देखते हुए उन्हें राय साहब की उपाधि से अलंकृत किया गया। आज भी छत्तीसगढ़ के अनगिनत किसानों को सहकारिता के क्षेत्र में किए गए उनके प्रयासों का लाभ प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि उन्हें छत्तीसगढ़ अंचल में सहकारिता का जनक माना जाता है। वामन राव लाखे का जीवन देश और समाज को ही समर्पित रहा। होम रूल लीग के माध्यम से जब भारत में स्वशासन की मांग उठ रही थी तब वामन राव लाखे भी इस मुहिम से जुड़े। जब रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई तब लाखे जी ही इसके संस्थापक थे। उस दौर में छत्तीसगढ़ में राजनैतिक चेतना का जो भी प्रसार हुआ उसमें वामन राव लाखे का महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी उपस्थिति से जहां सहकारी संगठनों का अप्रतिम उत्कर्ष हुआ वहीं देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से छत्तीसगढ़ का आम जन जुड़ने लगा।

वामन राव बलिराम लाखे गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। सन 1920 में गांधी जी के आह्वान पर वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने खादी को अपनाया और खादी के प्रचार के लिए रायपुर में खादी सप्ताह के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और खादी के स्वीकार्य हेतु वो संकल्पित हुए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना के विकास और विस्तार में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके भाषणों का लोगों पर व्यापक प्रभाव होता था। 29 अप्रैल सन 1920 को उन्होंने रायपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि लोग कानून भंग कर अंग्रेजी राज को समाप्त करने की मुहिम में शामिल हों। 18 मई को उन्होंने अफसरशाही के सामाजिक बहिष्कार की अपील की। किसान सम्मेलन हो, राजनीतिक गतिविधियों का आयोजन हो या गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी जैसे शीर्ष नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन, हर जगह वामन राव लाखे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छत्तीसगढ़ में आयोजित सम्मेलन हो या गांधी जी के आंदोलन, वामन राव लाखे तन मन धन से इन गतिविधियों में सक्रिय रहते। सन 1920 में जब गांधी जी रायपुर आए तब उनके रहने ठहरने की व्यवस्था देखने वालों में वामन राव लाखे भी शामिल थे। नागपुर अधिवेशन में तो वो गांधी जी के साथ ही गए। गांधी जी के व्यक्तित्व का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय साहब की उपाधि लौटा दी। 1930 में जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो रायपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, मौलाना रऊफ, महंत लक्ष्मी नारायण दास और शिवदास डांगा ने मिलकर किया। इस प्रकार रायपुर में ये स्वाधीनता आंदोलन के पांच पांडव के नाम से विख्यात हो गए। जन जन के मुख पर यही पंक्तियां थीं कि भैया पांचों पांडव कहिए जिनको नाम सुनाऊं, लाखे वामन राव हमारे धर्मराज को हैं अवतार, भीमसेन के अवतारी जानो लक्ष्मी नारायण जिनको नाम, डागा सहदेव नाम से जाहिर रऊफ नकुल को हैं अवतार, ठाकुर अर्जुन के अवतारी योद्धा प्यारे लाल साकार। इस तरह अंग्रेजों के विरुद्ध जारी महाभारत में रायपुर के ये पांचों पांडव निर्भय हो हुंकार उठे थे। 28 मई को आरंग में वामन राव लाखे ने गरजते हुए कहा कि अंग्रेजों के गुंडा राज को अब और चलने नहीं दिया जाएगा। अंग्रेज इस घोषणा से तिलमिला उठे। 25 जून 1930 को उन्हें दोषी ठहराया गया और 3000 रुपए जुर्माना अथवा एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। वामन राव लाखे ने देश के लिए लगातार संघर्ष किया। 1941 में भी उन्होंने सत्याग्रह किया। सिमगा में उन्हें सत्याग्रह के दौरान ही गिरफ्तार किया गया और 4 महीने के कारावास का दंड देकर नागपुर जेल में रखा गया। रायपुर में शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। रायपुर में एवीएम स्कूल की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु के बाद इस स्कूल का नाम श्री वामन राव लाखे उच्चतर माध्यमिक शाला कर दिया गया। वामन राव लाखे 2 बार रायपुर नगरपालिका के अध्यक्ष भी चुने गए थे। उनका जीवन इतना सरल था कि वो नगरपालिका कार्यालय तक पैदल ही आया जाया करते। वो सदा लोगों से जुड़े रहना चाहते थे। कार्यालय आते जाते समय आम लोग अपनी समस्याएं लेकर उनसे मिलते। वो सबकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते और उनके निराकरण के त्वरित प्रयास में जुट जाते। एक विराट व्यक्तित्व था उनका।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी वामन राव बलिराम लाखे के जीवन पर केंद्रित था। हमारा अगला कार्यक्रम है इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज हम मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। जानकारी देंगे इतिहासविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। बने रहे हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण में।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर और प्रस्तुतकर्ता यानी कि मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। और इतिहास के पन्नों से में हम पिछले अपनी दो कड़ियों में सुन रहे हैं मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनके योगदान के बारे में। पिछली बार हमने आपको बताया कि मध्य भारत वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में 16वीं सदी में गोंड राजा संग्राम शाह का राज्य था। उनके कुल 52 गढ़ थे। राजा संग्राम शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दलपत शाह ने गोंड राज्य गढ़ा की राजगद्दी संभाली, लेकिन 1550 ईस्वी में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। तब उनका बेटा वीर नारायण लगभग 4-5 वर्ष का बालक था। दलपत शाह की रानी दुर्गावती ने राजकुमार वीर नारायण को गढ़ा के गोंड राज्य का अगला शासक घोषित किया और मंत्री आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर स्वयं उनके संरक्षक बनी। 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी यानी अगले 14 वर्ष उन्होंने गढ़ा के गोंड राज्य पर सफलतापूर्वक राज्य किया। सबसे पहला उनका युद्ध हुआ मियाना अफगानों से। उन्हें उन्होंने पराजित किया और इन लड़ाकों को अपनी ही सेना में भर्ती भी किया। इसके उपरांत मुख्य रूप से उनका युद्ध मांडू के सुल्तान बाज बहादुर से हुआ, जिसमें रानी दुर्गावती ने अनेक बार बाज बहादुर को शिकस्त दी। और इसके आगे की बातचीत के लिए हमारे साथ फिर एक बार स्टूडियो में मौजूद हैं पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: पूजा जी, रानी दुर्गावती जी जिन्होंने 1550 ईस्वी यानी 473 वर्ष पहले इतिहास रचा था, एक ऐसी रानी, एक ऐसी शासिका जो आज भी 500 वर्ष बाद लोक स्मृति में है, वो निश्चित ही अत्यधिक लोकप्रिय रही होंगी तब भी। तो रानी की लोकप्रियता के क्या मुख्य कारण है?
2: आपने बिल्कुल सही कहा, हजारों साल के इस लंबे इतिहास में न जाने कितने ही शासक हुए होंगे
1: जी।
2: लेकिन लोग उसे ही याद करता है जिसने लोगों के लिए काम हुआ, बाकी को तो भूल जाता है। उसके कामों से लोगों के जीवन में यदि सकारात्मक प्रभाव हुए हों तो वो उसे अपने दिल में बसा के रखता है। उसकी कहानियों में, किस्सों में, आख्यानों में वो राजा या रानी बार बार दोहराए जाते हैं
1: जी।
2: गोंड रानी दुर्गावती भी ऐसी ही एक रानी थी जिन्हें 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी भुलाया नहीं जा सका है। आज भी वह महाकौशल के अनेक आख्यानों में गाई जाती हैं। गांव-गांव में लोग उनके आख्यान गाते हैं, उनकी वीरता के किस्से, उनके लोक निर्माण के जो कहानी किस्से हैं वो गाते हैं। उनकी अनेक कहानियां और किस्से हैं, उन्हें लोग बहुत सम्मान के साथ आज भी याद करते हैं
1: जी। पूजा जी, जैसे आपने कहा कि लोग उन्हें बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं, तो ऐसे अनेक उन्होंने काम किए। जैसे आपने पिछली बार बताया कि उन्होंने जो गढ़ा का किला था वो इतना अभेद्य बनाया था कि बड़े से बड़े आक्रमणकारी भी वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। इसके अलावा एक और उनकी कला थी पानी से संबंधित, उन्होंने बहुत सारे तालाब बनाए। यहाँ तक कि उनकी जो विरासत को जिन्होंने संभाला, उनकी दासियों तक का ये आता है कि रानी दुर्गावती की जो दासियां थी, तो कहते हैं कि जबलपुर में कुल 56 ताल थे।
2: बिल्कुल सही, रानी दुर्गावती ने अनेक तालाबों का निर्माण कराया और जबलपुर जो उनकी राजधानी था, गढ़ामंडला में जो मदन महल की हम बात करते हैं वो तो जबलपुर में ही है। तो मुख्य केंद्र तो हमेशा गोंड राजाओं का वही रहा। हाँ, हालांकि राजधानियां उनकी लगातार बदलती चली गई। रानी दुर्गावती के समय में भी राजधानी चौरागढ़ रही, पर गढ़ामंडला यानी कि मदन महल उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो जबलपुर में ही कहते हैं कि उनके बनाए हुए 56 तालाब थे
1: जी।
2: कुछ आज भी हैं और कुछ पूर गए समय के साथ में, लेकिन अब जहाँ तालाब नहीं भी हैं उन जगहों पर बस्तियां बस गई और आज भी वो तालाब के नाम से ही जानी जाती हैं,
1: जैसे कि आधार ताल।
2: हाँ, आधार ताल
1: जी।
2: इस तरीके के अनेक नाम जबलपुर में मिलेंगे। तो जहाँ कहीं भी पानी का स्रोत होता, भरपूर पानी होता, वहाँ संस्कृति पनपती ही है
1: जी। हाँ,
2: तालाब बनने का अर्थ से केवल इतना नहीं होता कि तालाब बन गया और पानी की आपूर्ति हो गई
1: जी।
2: आप अगर ध्यान से देखें तो जहाँ पानी का स्रोत होता है वहाँ संस्कृति और सभ्यता पनपती है।
1: बिल्कुल,
2: गांव बसते हैं, शहर बसते हैं, उद्योग धंधे पनपते हैं, धन संपदा बढ़ती है और कला और शिक्षा का भी विकास होता है।
1: लेकिन पूजा जी, ये भी तो एक कला ही हुई ना कि कहाँ पानी निकलेगा ये मालूम होना, तो ज्ञान की बात हुई। तो ये कौशल, ये प्रबंधन किस तरह था उनके पास?
2: बिल्कुल सही। गोंड जनजाति या अन्य जनजातियों, क्योंकि वनों वन क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानती हैं
1: जी
2: और परंपरागत रूप से उन्हें इस ज्ञान और विज्ञान, मैं तो इसे विज्ञान भी कहूंगी,
1: जी बिल्कुल,
2: इसकी बहुत अच्छी जानकारी है कि वह यह जान लेते हैं कि भूमिगत जल कहाँ मिलेगा। हर कहीं आप तालाब नहीं बना सकते, जहां जल होगा वहीं ना बनाएंगे, तो वे इस परंपरागत ज्ञान को जानते हैं। चलते फिरते वनस्पतियों पेड़ पौधों को देखकर बता सकते हैं कि कहां से पानी की भूमिगत शिराएं हैं, तो तालाब या जल स्रोत कहाँ खोदना चाहिए
1: जी।
2: ये उनका ज्ञान सदियों हजारों वर्षों से हमारे बीच में है। इसलिए आप मध्य भारत में जहाँ कहीं भी तालाबों के किस्से कहानी सुनेंगे तो उसमें कोई ना कोई कहानी किस्सा ऐसा होगा जिसमें कि किसी गोंड का योगदान आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत ही आम बात रही कि हमने देखा है कि जो प्राचीन जो शास्त्र हमें मिलते हैं
1: जी,
2: उसमें एक दकारगल विद्या का वर्णन आता है। दकारगल विद्या उसे कहते हैं जिसमें पानी, भूमिगत पानी के बारे में आपकी कितनी जानकारी है। तो ऐसे हमें उल्लेख भी मिला है और उन उल्लेखों को पढ़कर भी हमें ये समझ में आता है कि हजारों साल से ये विद्या इनके बीच में थी। हम ये भी शास्त्रों से जानते हैं कि हमारी प्राचीन ज्ञान विज्ञान में ये भी शामिल था कि आप कहाँ तालाब बनाएं, यानी कौन सी भूमि ऐसी है जो पानी को रोक सकेगी वर्ष भर
1: जी।
2: नहीं तो तालाब सूख जाएगा या भूमि उसको सोख लेगी पानी को। तो उसकी कई सारी विधियां हमको मिलती हैं जो आज भी गोंड जनजाति प्रयोग में लाती है।
1: अच्छा।
2: जैसे मैंने कुछ देखा प्रैक्टिकली भी गोंड जनजाति के बीच में जब काम किया और मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा कि मान लीजिए कि आपको पता करना है कि ये भूमि तालाब बनाने के लिए अच्छी है या नहीं, तो मैंने देखा कि जैसे आप एक पर्टिकुलर साइज का एक छोटा सा गड्ढा करना है और आपको वहाँ खड़े होकर एक तीर आसमान की तरफ फेंकना है।
1: अच्छा।
2: हाँ, और जब वो तीर नीचे आएगा उस बीच में उस गड्ढे में कितना पानी कम हुआ, यानी कुछ एमएम में भी होगा, एमएम में ही हो पाएगा, पर उसको निशान लगाना है आपको, उससे पता चल जाता है कि ये भूमि पानी को रोक पाएगी कि नहीं। इसी तरीके से मैंने एक और देखा था जब मैं जनजातियों के बीच में काम कर रही थी कि आपने एक गड्ढा खोदा जहाँ पे आपको तालाब की संभावना है कि यहाँ तालाब बनाना चाहिए और उसमें पानी भर दिया मैनुअली, है ना, खुद पानी भर दिया और फिर आपको 100 कदम जाना है और 100 ही कदम लौट के आना है। अगर इस बीच में पानी वो सोख लेता है या फिर पानी का स्तर काफी नीचे हो जाता है तो फिर उस जगह तालाब नहीं बनाएंगे
1: जी।
2: हाँ, तो ये सारी विद्याएं भी जो परंपरागत रूप से सीखी गई थी वो आज तक परंपरा में है, सिर्फ जरूरत इतनी है कि कुछ कम हो रही है और हमें उसे संभालना है।
1: हमें उन्हें संभालना होगा, उनसे सीखना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ी को देना होगा, निश्चित रूप से संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो श्रोताओं, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से और पूजा जी ने कितनी अच्छी जानकारी बताई। डॉक्टर पूजा सक्सेना हमारे साथ स्टूडियो में है कि दकारकल विद्या, इस विद्या का नाम, इस विज्ञान का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं ने भी, ज्यादातर लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा कि भूमिगत जल के बारे में ये जो जानकारी दी आपने, आगे भी हम इस बारे में कुछ और आपसे जानना चाहेंगे।
2: जी हाँ, हमने पिछले बार जब चर्चा की थी राजा संग्राम शाह की
1: जी,
2: तो संग्राम शाह ने संग्राम सागर बनवाया था और उसी के पास में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, टेकरी के ऊपर बाजना मठ भी बनवाया था।
1: अच्छा।
2: तो रानी दुर्गावती उनकी वंशज है और उन्होंने संग्राम शाह के काम को आगे बढ़ाया। तो रानी दुर्गावती ने भी बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया और खास बात यह रही कि उन तालाबों के आसपास मठ मंदिर भी बनवाए
1: जी।
2: तो अगर हम जबलपुर में ही देखें तो एक बहुत लंबी सूची है तालाबों की, जैसे नाम आते हैं रानी ताल, आधार ताल, चेरी ताल, मड़ा ताल, गंगा सागर, फूटा ताल, भंवर ताल, सूपा ताल, गलुआ ताल, ऐसे बहुत से नाम है और इस यही सूची खत्म नहीं होती, आगे भी है बहुत सारे ताल तलैया, जो छोटी तलैया है ना, तो जैसे भान ताल, श्रीनाथ जी की तलैया, हाथी ताल, महानंदी ताल, और भी आगे कोला ताल, बघा ताल, उगरी ताल, कदम तलैया, भान तलैया, तिलक भूमि, बैनी सिंह की तलैया, लोको तलैया, ककरैया और जुड़ी तलैया, इतने अभी तो सूची खत्म नहीं हुई है, पर ये कुछ एक महत्वपूर्ण नाम है जो हम देखते हैं कि गोंड काल में ये तालाब बने।
1: श्रोताओं कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है हमें अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। जैसे कि पूजा जी आपने बताया कि आधारताल जैसा एक, जैसे कि जबलपुर का एक बड़ा इलाका है आधारताल या रानीताल या चेरीताल, लेकिन आधारताल मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार आपने हमें बताया था कि रानी के एक मंत्री का नाम आधार कायस्थ था, तो क्या इस ताल का उनसे कुछ संबंध है?
2: एक अच्छा राजा या रानी केवल खुद ही अच्छा काम नहीं करता
1: जी।
2: वो दूसरों को भी प्रभावित करता है कि उसकी प्रजा, उसके सहायक भी अच्छा काम करें।
1: बिल्कुल।
2: तो हम जबलपुर में पाते हैं एक आधार ताल
1: जी।
2: तो जैसा आपने कहा कि उनके मंत्री का नाम था आधार कायस्थ, तो उन्होंने भी एक तालाब बनवाया, और ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं था, बहुत बड़ा तालाब था। आधार तालाब बनाने के बाद उन्होंने उसके पास एक पचमठा मंदिर भी बनाया। पचमठा एक अपनी शैली है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे
1: जी।
2: तो ये जो पचमठा मंदिर है या मठ है, इसमें महालक्ष्मी का मंदिर है और इसकी आज भी बड़ी मान्यता है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। खास बात यह है कि अगर आप इस पचमठा मंदिर को देखेंगे तो इसका जो प्लान है या जो भूविन्यास है वो श्री यंत्र पर आधारित है। जैसे हम पेन कागज पे श्री यंत्र बनाते हैं, ऐसा ही पूरा की पूरा मंदिर ही श्री यंत्र पर आधारित है। तो इसके अंदर मंदिर में शिव हैं, हनुमान हैं, ब्रह्मा, सूर्य, लक्ष्मी। तो गोंड काल में इन सभी की प्रतिमाएं यहाँ पर उत्कीर्ण की गई, और बहुत खूबसूरत द्वार शाखा है, द्वार शाखा पर युद्ध का चित्र भी अंकित है
1: जी। पूजा जी, ऐसे ही किसी और तालाब के बारे में कोई दिलचस्प कहानी बताइए हमें।
2: जरूर, एक तालाब जरूर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। जैसे हमने सुना कि रानीताल का निर्माण रानी दुर्गावती ने करवाया
1: जी,
2: एक बिल्कुल उसके पास में ही एक और तालाब है चेरी ताल
1: जी।
2: तो चेरी का अर्थ है दासी।
1: अच्छा,
2: यानी कि रानी की दासी
1: है जी।
2: तो एक कहानी आती है कि रानी और उनकी जो चेरी थी वो दोनों रानी तालाब का काम होते देखने जाया करती थी
1: जी।
2: तो चेरी के मन में भी आया कि मैं भी एक तालाब बनवाऊं, लेकिन उसके पास तो इतनी धन संपदा थी नहीं। तो उसने क्या किया कि जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उनसे ये कहा कि जब भी आप लोग घर वापस जाया करो शाम को, तो ये पास में जो खाली पड़ी जमीन है इसमें से एक पत्थर अपने साथ रोज ले जाया करो
1: जी।
2: तो मजदूरों ने उनकी बात मान ली और वो रोज एक पत्थर अपने साथ, हर एक मजदूर एक पत्थर अपने साथ ले जाने लगा। और धीरे धीरे देखते हैं कि वहां पर तो एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, बारिश आई, पानी भर गया, तो बन गया चेरी ताला। तो यदि किसी में इच्छा है तो काम हो सकता है।
1: क्या बात है, देखिए मिलजुल कर काम किया जाए तो कोई भी काम संभव। और इससे श्रोताओं में एक बहुत बड़ी सीख ये भी मिलती है कि आपके पास सिर्फ मन में लगन होनी चाहिए, कोई काम करने की इच्छा होनी चाहिए, भले ही कोई सुविधा हो, कोई संसाधन हो या नहीं हो। इतनी अच्छी लोक कथाएं या कथाएं कहें, हम कहानियां कहें, जो इन तालाबों के निर्माण के साथ जुड़ी हुई हैं। राजवंशों का जो मध्य भारत के जो राजवंश थे उनके इतिहास से कितनी सुंदरी कथाएं जुड़ी हुई हैं, और इतने 56 तालाब बनाए। निश्चित रूप से हम 56 तालाबों की बात तो समय अवधि के कारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप संक्षिप्त में कुछ और तालों के बारे में ज़रूर बताएं।
2: गढ़ा के गोंड राज्य में यानी जबलपुर में एक और तालाब है देवताल, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गढ़ा के जो तालाब हैं या कहीं पर भी तालाब होते हैं वो तो धार्मिक आस्थाओं के भी बड़े केंद्र होते हैं। तो ऐसा ही एक तालाब है देवताल, जो गोंड काल में विष्णु देवताल के नाम से भी जाना जाता था।
1: अच्छा।
2: और जब 1563 ईस्वी में पुष्टि मार्गीय संत गोस्वामी विट्ठल दास जी ब्रज से गढ़ा पधारे, तब वे देवताल के निकट ठहर गए और वो स्थान तो पवित्र मान लिया गया। तो उनके अनुयायियों ने उस स्थान को बैठक जी का नाम दे दिया
1: जी।
2: और इसके उपरांत देवताल के निकट अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, और यहाँ राधा बल्लभ संप्रदाय का ये बहुत बड़ा केंद्र बन गया, और यहाँ पर भी एक पचमठा मंदिर हम देख सकते हैं।
1: क्या बात है। तो देखिए, हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि संस्कारधानी जबलपुर का कोई संबंध ब्रजभूमि से भी हो सकता है।
2: जी हाँ, बड़ा गहरा संबंध रहा है ब्रजभूमि से, हम उसको अगली बार लेंगे
1: जी।
2: लेकिन एक और तालाब है गंगा सागर। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उससे और दूसरे भी प्रभावित होते हैं। तो रानी दुर्गावती के वंशज बाद में जो शासक हुए गढ़ा के, वो है हृदय शाह। तो हृदय शाह ने भी एक तालाब का निर्माण कराया जिसका नाम है गंगा सागर। तो यह जबलपुर नगर का एक विशाल तालाब है और आज भी अस्तित्व में है, और इसमें अब तो सिंघाड़े की खेती होती है, तो ये कई लोगों की आजीविका का साधन भी है।
1: तब के लगाए पेड़ देखिए आज भी फल दे रहे हैं।
2: जी हाँ, एक और तालाब है हनुमान ताल।
1: जी
2: तो ये लगभग वर्गाकार आकार का है और इस में जबलपुर में ये ठाकुरवाड़ी के पास स्थित है। ये तालाब 1794 में बना। यहाँ पर पहले कोई एक छोटा तालाब रहा होगा गढ़ा के गोंड राज्य का, लेकिन बाद में जब भोंसलों का शासन हुआ तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बनाया चौकोर, जिसे हनुमान ताल के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के चारों तरफ सीढ़ियाँ भी हैं। एक और तालाब है फूटा ताल
1: जी।
2: क्योंकि कुछ हिस्सा इसका जो आसपास का किनारा होता है वो फूट गया, तो लोगों ने नाम रख दिया फूटा ताल
1: जी।
2: तो एक जगह है घमापुर, वहाँ पर जब हम सराफा बाजार की तरफ जाते हैं तो फिर ये तालाब पड़ता है और इस तालाब के आसपास अब तो बड़ी घनी बस्ती बस गई है, लेकिन किसी समय ये पानी की आपूर्ति का बड़ा मुख्य स्रोत रहा होगा। ऐसे ही है एक भंवरताल नाम का तालाब
1: जी।
2: और यहाँ पर भी ये भी बड़ा काफी गहरा तालाब रहा होगा, अब काफी हिस्सा इसका खत्म सा हो गया है।
1: और अब वहाँ पर एक उद्यान है जो जबलपुर का सबसे खास उद्यान है, जिसे भंवरताल गार्डन कहते हैं और अक्सर लोग जबलपुर की शामें गुजारने के लिए। तो देखिए रानी के वंशजों ने उस समय जो तालाब बनाए, ताल तलैये बनाए, आज भी कितना सुख दे रहे हैं सबको।
2: ऐसा ही एक और तालाब है सूपा ताल। उसका आकार कुछ सूप की तरह दिखाई देता है, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया सूपा ताल। और अब तो उसके पास भी बड़ी घनी बस्ती बस गई है। एक और बड़ा नाम आपने सुना होगा मढ़ौ ताल
1: जी,
2: है ना। तो मढ़ौ ताल भी जो है बस स्टैंड के पास में है और यहाँ पर अब तो ये व्यवसायिक केंद्र बन गया है,
1: जिसे आज हम जबलपुर का मुख्य हृदय स्थल भी कह सकते हैं, सिविक सेंटर के नाम से जानते हैं।
2: जी हाँ, सिविक सेंटर के नाम से जानते हैं। ऐसा ही है गुलौआ ताल भी, और इसके पास में भी अब अभी है तो अस्तित्व में, लेकिन किसी समय ये सारे ही तालाब बड़े महत्वपूर्ण रहे होंगे और व्यवसायिक गतिविधियों के केंद्र रहे होंगे।
1: जी हाँ,
2: एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है जो पब्लिश्ड है जबलपुर के जो ये गोंडकालीन तालाब हैं इनके ऊपर, और इसमें उन्होंने बड़ा शानदार ये बताया है कि किस तरीके से उस काल में, यानी कि आज से 500 साल पहले जब हमारे पास मशीनें नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस समय भी जो उन्होंने लैंडस्केप की स्टडी की और उन्होंने जो भूमिगत शिराओं का अध्ययन किया, कौन से तालाब का पानी रिस के भूमिगत होते हुए कहाँ किस तालाब में जाएगा
1: जी।
2: कोई भी तालाब सूखा नहीं रहेगा, है ना। ढलान को समझना, कहाँ पर पथरीली जमीन आ रही है, कहाँ पर किस तरीके का पानी का बहाव होगा, ये सब आजकल हम टोपो शीट के थ्रू करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं टोटल स्टेशन जैसी, और या सैटेलाइट इमेज के थ्रू होता है। बहुत विज्ञान विकसित हो गया, लेकिन उस समय भी उन्होंने उस पूरे, आप समझिए कि अंडरग्राउंड सिस्टम को समझा और कहाँ तालाब होगा उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में प्लेस किया। तो ये पूरा एक विज्ञान है जिसका कि हमको संरक्षण करना चाहिए था।
1: निश्चित रूप से करना चाहिए। आज जब मशीनों और पूरे संसाधनों के साथ हमें मुश्किलें पेश आती हैं, चुनौतियां होती हैं, तो तब तो कितनी सारी रही होंगी। ये सिर्फ उनका कौशल ही था, प्रबंधन था, कि उनके पास उनका अपना विज्ञान था। कि आपने जैसे बताया कि वो महज पानी के आसपास की जगह की वनस्पतियां देखकर बता देते थे कि यहाँ पे पानी कहाँ होगा, कितना गहरा होगा। और ये एक और आश्चर्यजनक बात आपने हमें पूजा जी बताई कि किस तालाब का पानी अंदर से रिसकर किस जगह पर और जा सकता है और फिर से एक तालाब को नया जीवन मिल सकता है। तो रानी ने मतलब जिस विद्या को प्रश्रय दिया, न सिर्फ प्रश्रय दिया बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया। उनके जो अधीनस्थ थे, जो अधीन उनके काम करते थे, वो भी प्रेरित हुए उनसे।
2: हाँ बिल्कुल, रानी कई मायनों में हमको बहुत प्रभावित करती हैं
1: जी।
2: उन्होंने तो विद्या अध्ययन के लिए भी बहुत काम किया। एक ये वो समय था जबकि जबलपुर लघु काशी के रूप में जाने लगा।
1: अच्छा,
2: विद्या अध्ययन का ये स्तर पाया तो दूर दूर से लोग बाग यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत विद्यापीठ का निर्माण किया गया था। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक राधा बल्लभ पचपटा मंदिर है। पचपटा मंदिर जो है वो गोंड पीरियड की, गोंड काल की खास शैली है मंदिर निर्माण की
1: जी।
2: और ये जैसे कि नाम से पता चलता है कि मठ थे
1: जी, जी।
2: तो मठ में जो है साधु संत या विद्यार्थी रहते हैं और वो सीखते हैं। तो एक राधा बल्लभ पचमठा मंदिर था और इसमें एक अभिलेख आज भी हम देख सकते हैं। अभिलेख कहता है कि 1564 ईस्वी में पुष्टि मार्गीय संत थे एक चतुर्भुजा दास
1: जी,
2: वो यहाँ पर पधारे थे
1: जी।
2: और जब रानी ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने यहाँ पर एक संस्कृत विद्यापीठ की रचना की, और इस विद्यापीठ की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली कि जबलपुर उस समय या गढ़ा राज्य उस समय लघु काशी तक कहलाने लगा। तो आज भी आप देखें तो हम उसी कारण से जबलपुर को संस्कार धानी भी कहते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो क्योंकि जो आपने तालाबों की कहानी बताई तो वो जल संस्कार भी हो गया, ये शिक्षा संस्कार भी हो गया, और जबलपुर में कलाओं का भी आज हम देखें तो बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर मिलता है, चाहे वो संगीत कला हो या चित्रकला हो। इतिहास के पन्नों से एक कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और पूजा जी से हम बात कर रहे हैं, हमारी पुरातत्वविद, और कितनी अच्छी जानकारियां हमें मिल रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो है मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान। तो गोंड जाति, गोंड जनजाति ने जो हमारे लिए काम किया है आज तक, देखिए हमेशा से हम कहते रहे हैं कि पानी के इर्द गिर्द ही, जल के आसपास ही सभ्यताओं का, संस्कृतियों का विकास हुआ है, और जबलपुर, आज का जबलपुर जो है इसकी जीती जागती मिसाल है। पूजा जी ने बताया कि रानी के शासनकाल में और उनके आगे वाली पीढ़ियों के, यहाँ तक कि उनकी दासी तक ने तालाब वहाँ पर बनवाया, तो आज भी उन्हीं तालों के नाम पर जबलपुर के अलग अलग इलाकों के नाम हमें मिलते हैं कालांतर में, भले ही वो तालाब अब नहीं रह गए। पूजा जी, इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपसे आगे भी जारी रहेंगी हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से, लेकिन आज समय पूरा हो चुका है तो हम अपने श्रोताओं से इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल, देश के लिए। इतिहास के पन्नों से,
3: इतिहास के पन्नों से,
4: इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज का विषय था मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला। इस विषय पर जानकारी दी डॉक्टर पूजा सक्सेना ने, और इनसे बातचीत कर रहे थे संदीप शर्मा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहें रेडियो आज़ाद हिंद। हमारा अगला कार्यक्रम योग संवाद आप सुन सकते हैं सुबह 9 बजे, जिसमें आज का विषय है पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद का खंडन। ये कार्यक्रम आप सुबह 9 बजे सुनेंगे, तब तक आप देशभक्ति गीतों का आनंद लें।
5: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीता अभिजीत भट्टाचार्य और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद। इस कार्यक्रम में आज हम योग वशिष्ठ पौरुष की प्रधानता और प्रारब्ध का खंडन विषय पर कार्यक्रम सुनेंगे। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और इनसे बातचीत कर रही हैं सुनीता सिंह।
1: रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, भाग्य और कर्म की लड़ाई शायद मनुष्य के जीवन की सबसे पुरानी उलझन है। एक ओर विश्वास है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, और दूसरी ओर कर्म की पुकार है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपनी राह स्वयं बना सकता है। दो मत हैं, दो धारणाएं हैं, और इनके बीच सदियों से एक प्रश्न खड़ा है कि सच क्या है। क्या भाग्य की लकीरों में ही लिखी होती है जीवन की हर कहानी? क्या प्रारब्ध के आगे मनुष्य का पुरुषार्थ, उसका संकल्प, उसका साहस सब कुछ व्यर्थ हो जाता है? एक प्रश्न मानव मन को मथता रहा है कि क्या जीवन की डोर केवल प्रारब्ध के हाथों में है, या मनुष्य का पौरुष उस डोर को अपने संकल्प से नई दिशा दे सकता है। और यही ज्ञानी जन उपदेश करते हैं कि नहीं, मनुष्य केवल परिस्थितियों की धारा में बहता हुआ एक तिनका नहीं है। उसके भीतर वो चेतना है जो दिशा बदल सकती है, सोए हुए सामर्थ्य को जगा सकती है और असंभव के द्वार पर भी दस्तक दे सकती है। प्रारब्ध यदि बीते हुए कर्मों की छाया है, तो पुरुषार्थ वर्तमान में जलता हुआ वो दीप है जो भविष्य का मार्ग प्रकाशित करता है। यहाँ प्रश्न केवल भाग्य का नहीं, बल्कि उस मनुष्य का है जो अपने पुरुषार्थ से स्वयं को पहचानने और अपने जीवन को रूप देने का साहस करता है। योग वासिष्ठ इसी पुरुषार्थ की महिमा का उद्घोष करता है। उठो, जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जीवन की दिशा केवल भाग्य नहीं जागृत पुरुषार्थ भी तय करता है। तो आइए योग संवाद कार्यक्रम में आज चर्चा करें पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद के खंडन पर। यानी आज की चर्चा में है भाग्य और कर्म की प्रधानता का विश्लेषण। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
1: बहुत ही रोचक सा विषय है आज का
3: जी।
1: और हमारे श्रोता भी जरूर इस विषय पर कभी ना कभी जीवन में उन्होंने सोचा होगा। अक्सर ये होता है कि पुरुषार्थ जब सिद्ध नहीं होता है तो मनुष्य भाग्यवादी हो जाता है। तो मेरे मन में प्रश्न यही है कि मनुष्य के पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होती है?
3: बहुत सुंदर सवाल किया आपने, और यही वशिष्ठ जी श्री राम को समझा रहे हैं
1: जी।
3: कहते हैं रघुनंदन, जैसे नीले पीले आदि विभिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अब यहां पर विचार करने योग्य ये है कि शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर का व्यवहार यानी कर्म। हम लोग मन, वचन, कर्म पर बहुत बात करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा
1: जी जी,
3: लेकिन हम लोग इस पर विचार नहीं करते कि हमारा मन क्या सोचता है, हम अपनी वाणी से क्या बोलते हैं और कर्म क्या करते हैं। यानी इन तीनों में आप देखें तो कहने में, बोलने में और करने में इतना भेद है कि हम मन से कैसी कैसी अपनी कल्पनाएं, कैसी कैसी फैंटेसी क्रिएट करते
1: जी,
3: हैं
1: जी।
3: लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हम सोच रहे हैं उसके अनुसार क्या हम बोल भी रहे हैं। बोलेंगे तभी जब सोच और बोलने में एकता हो
1: जी जी।
3: आजकल तो इस पर आधुनिक जो मोटिवेटर हैं वो बहुत सारी लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो, लेकिन हजारों साल पहले भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋषियों ने वो सूत्र बताए हैं, जब शास्त्र विहित हम कर्म नहीं करते। शास्त्र विहित कर्म का अर्थ ये कदापि नहीं है, कई लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि शास्त्रों को थोपा गया है, क्योंकि शास्त्र जिस समय लिखे गए उस समय की दुनिया अलग थी। आज जो दुनिया है वो डिजिटल दुनिया है, आज लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आज के लिए कैसे वो समीचीन हो सकता है। शास्त्र का मतलब होता है कि जो सत्य है, जो नियम है, वो कभी नहीं बदलेगा। नियमों में नए नए नियम, नई नई जानकारियां जुड़ेंगी। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पुरानी जानकारियां गलत हो गई।
4: जी जी,
3: है ना, पुरानी जानकारियां भी मौजूद हैं।
4: हाँ।
3: अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर न्यूटन ने दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत को आज नकार दिया गया।
4: बिल्कुल,
3: वो ज्ञान है।
4: हाँ।
3: तो ऐसे ही शास्त्र ज्ञान है, जहां पर सत्य को उद्घाटित करने के नियम बताए गए हैं, इसलिए ऋत कहा गया। ऋत मतलब सत्य। सत्य की खोज शास्त्रों में हुई है और ऋषियों ने देखा है, तो इसलिए जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार मन से चिंतन करो, और फिर जो चिंतन करो उसके अनुसार बोलो,
4: बोलो
3: वही आप अपने कर्म में करो। क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आपका मस्तिष्क सुनता है। लैंग्वेज, जैसे मनोविज्ञान में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लैंग्वेज पर काम किया। नोम चोम्स्की नाम का एक दार्शनिक हुआ जिसने ये कहा कि आदमी सिर्फ जो है व्याकरण से चलता है, मतलब अपने मस्तिष्क को देखें तो मस्तिष्क में हर शब्द के भाव हैं। शब्द आते ही वो भाव का
4: एक चित्र बनता
3: चित्र
4: है।
3: बनता है मां शब्द के आते ही हर व्यक्ति के हृदय में जो भाव बनेगा, तो वो मां शब्द के बिना नहीं बनेगा।
4: बिल्कुल,
3: तो अंत में देखें तो उस भाव को ट्रिगर करने वाला वो शब्द है। तो जो आपका मस्तिष्क शब्द सुनता है, आप दूसरों से जो बोलते हैं आप भी सुनते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ऐसे आदती हो जाते हैं गलत बोलने के कि हम लोग 80% ऐसे विचार करते हैं। ये तो शुद्ध सिद्ध है कि जो विचार हमारे किसी काम के नहीं है उन विचारों में हम संलग्न रहते हैं। हम ऐसी भाषा बोलते हैं जिन भाषा को सुन करके हम खुद ही दुखी हो जाएं, खुद ही डिमोरलाइज हो जाएं, हमारा आत्मविश्वास डिग जाए। उस हिसाब से फिर हमारा शरीर का जो हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होगी जब शास्त्र के अनुसार मन विचार करेगा। विचार में यहाँ थोड़ा सा मैं विस्तार दूंगा कि श्रवण मतलब शास्त्र को सुने, फिर मनन करें, फिर उसका निधिध्यासन करें। अद्वैत में ये तीन स्टेप कहा जाता है कि श्रवण मनन निधिध्यासन। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप वैसा बोलने भी लगेंगे, और जो बोलेंगे वही आपका शरीर सुनेगा, फिर उसी अनुसार वो व्यवहार करेगा। और अगर ऐसा आपने किया तो आपका पुरुषार्थ निश्चित ही सिद्ध होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जेहिकर जे पर सत्य स्नेहू तेहिके मिले ही न कछु संदेहू। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने सामान्य शब्दों में कि आपका सत्य स्नेह तो हो, और वो कैसे दिखेगा? मन वचन कर्म से दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप कर्म से कुछ और करें, मन से कुछ और सोचें और से कुछ और बोले, है ना।
4: जी,
3: तो
4: जी,
3: ऐसा
4: जी।
3: ये योग होना चाहिए।
4: जी, जी,
3: इन तीनों का योग, मन वचन कर्म का।
4: जी, अच्छा ये बताएं कि मोह में फंसने का मुख्य कारण क्या है?
3: मोह में फंसने का मुख्य कारण सिर्फ ये है कि मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्र अनुसार कर्म से नहीं। वह पागलों सी चेष्टा करता है। उसकी चेष्टा केवल मोह में डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं।
4: अच्छा,
3: मन से इच्छा करिए और शास्त्रों के अनुसार कर्म न करिए, तो ये चेष्टा जो है वो पागलों की चेष्टा है।
4: जी जी जी जी,
3: लक्षिप्त कर देगी आपको। हा, हा। और आप देखेंगे तो लगभग लोग इसके शिकार हैं।
4: बिल्कुल,
3: है ना। इच्छा हमारी कितनी प्रबल है। राजा बनना किसे नहीं आता, सब चाहते हैं कि राजा बने, लेकिन राजा बनने के लिए जो कर्म है, या राजा बन जाने के बाद जो राजा का कर्म है, क्या हम कर रहे हैं? तो इसी पर तो पूरी परंपरा चल रही है। मुझे एक दृश्य याद आता है, जब राजा और प्रजा की बात आई, समर्थ गुरु रामदास ने छात्रपति शिवाजी को एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे वो, तो उनको लगा कि इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुशल राजा है और प्रजा का भरण पोषण करता है। तो इस भ्रम से मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो ये क्या है। उन्होंने कहा तो पत्थर है, कहा इसको तोड़ो। तो कहते अरे साहब ये क्या तोड़ने का मतलब? तो तोड़ा गया तो उसमें एक कीड़ा निकला।
4: कीड़ा,
3: हाँ। कहते हैं कि तुमने अपने राज्य का भरण पोषण करने के लिए जितने साधन किए हैं, इस कीड़े के लिए तुमने क्या किया है? ये भी तो यहाँ जी रहा है।
4: बिल्कुल।
3: तो ये तुम भ्रम पाल के बैठे हो कि तुम जिंदा रख रहे हो,
4: तुम सबको पाल रहे हो,
3: और ये भ्रम मनुष्य को पल जाता है अपनी बुद्धि के साथ।
4: जी, जी।
3: जबकि वो ये बताना चाहते थे कि इस सृष्टि में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का हक है। मां फलेशु कदाचन, जो कहा भगवान कृष्ण ने, इसका बड़ा गूढ़ अर्थ था। मतलब मैं कहता हूं कि फल के साथ ट्रिगर होने वाले लोग, फल के साथ चलने वाले लोग इस रहस्य को कैसे जानेंगे? वो ये भूल जाते हैं कि फल कुछ और नहीं है, वो कर्म का ही रूपांतरण है। कर्म ही आपका फल बनता है और आप सोचते हैं कि कर्म फल अलग है, इसीलिए भारत में कर्म फल कहलाता है, या आपके कर्म का फल है। ये मत सोचो कि कहीं और से दैवी दैव के साथ मिला हुआ है, आप ही के कर्म का फल है। ये अलग बात है कि आप अपने उस कर्म को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं कि आपके किस कर्म का ये फल है, लेकिन है वो आप ही के कर्म का फल। एक मैं कथा बताऊं आपको, पूछा गया, जिसे आपने प्रारब्ध की बात की, कहते हैं पूछा गया कि प्रारब्ध कैसे व्यक्ति का पीछा करता है, तो इंद्र कहते हैं कि जैसे हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ के स्तन के पास पहुंच जाता है, किसी और के पास नहीं पहुंचता, ऐसे ही आपका प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब आपका पूर्व कृत कर्म, आपका पीछा कर रहा है। प्रारब्ध कोई फल नहीं है। लोगों ने ये बहुत गलत अवधारणा पाल रखी है कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध आपका कर्म है, जिसका कर्म फल आप भोग रहे हैं, वो कर्म का फल है,
4: यही फल की प्राप्ति का कारण है।
3: यही फल की प्राप्ति का कारण है कि शास्त्र के अनुसार मनन करें, चिंतन करें और वैसी ही वाणी बोलें। इसी को हम लोग सदकर्म कहते हैं, सद चिंतन, सद विचार और सदकर्म। जब ये तीनों मिलते हैं तो पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम से।
4: अच्छा, ये बताएं कि पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है?
3: पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। यानी शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ पुण्य कर्म और शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ पाप कर्म है। इन दोनों में से जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण होता है और शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण होता है। परमार्थ वस्तु मतलब परमात्मा की प्राप्ति का कारण होता है, उस परम चेतना को जानने का मार्ग प्रशस्त करता है जिस चेतना पर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना, महासागर के जल में जो उत्ताल तरंगे उठ रही हैं और गिर रही हैं वो सागर में हो रही हैं, ऐसे ही जो परमार्थ सत्य है उस परमार्थ सत्य में इस पूरे जगत की गति चल रही है, चाहे वो उत्पत्ति हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो प्रलय हो। इन तीनों स्थितियों में जो क्रिया है, क्रिया हो रही है, वो उस परमार्थ सत्य की वजह से हो रही है। यद्यपि सत्य के नाते क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया सत्य से बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या समुद्र की तरंगे समुद्र की वजह से हैं?
4: नहीं,
3: समुद्र की वजह से नहीं है। विचार करके देखें तो वो चंद्रमा और सूर्य के एक आकर्षण का प्रभाव है। देखें तो ज्वार भाटा जो आता है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। बृहद ज्वार बृहद भाटा क्यों आता है? क्योंकि उस समय फुलमून होता है, माने पूर्ण चंद्रमा होता है, ठीक है, या चंद्रमा नहीं होता है तो उनका वो आकर्षण है। अगर वो आकर्षण न होता तो समुद्र में लहर नहीं होती, तो लहर समुद्र में नहीं है, लहर चंद्रमा का आकर्षण है।
4: जी जी,
3: तो ऐसे ही प्रकृति में क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया जो है उस परम परमार्थ, जो परम सत्य है, उसके स्थिति में हो रही है, वो स्थित है। हाँ, जो अज्ञेय है, जो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ज्ञेय तो आप जगत को जानेंगे, और हमारे यहाँ ऋषि कहते हैं कि नहीं, ज्ञेय वो परमार्थ सत्य है। देखिए, ये अंतर हो गया पाश्चात्य और भारतीय दर्शन का, कि भारतीय दर्शन ने कभी भी ज्ञेय प्रकृति की शक्ति को नहीं कहा, उसने परमार्थ सत्य को ज्ञेय कहा, वो जानने योग्य है। हाँ। और राम उसको जानने के अधिकारी हो गए हैं, इसलिए उनको ये ज्ञान दिया जाए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रकृति को ही जानने में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हम भगवान के पास भी भगवान के लिए नहीं जाते, संसार के लिए जाते हैं। आप विचार करके देखें कि संसार का कोई कष्ट, संसार की कोई पीड़ा, संसार का कोई सुख पाने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं। अंततः भगवान ने इतना कुछ दिया, उसके बाद हम संतुष्ट नहीं हुए, जो मांग रहे हैं क्या वो पाके संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। या जिनको मिला है वो संतुष्ट हैं? नहीं हैं। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते, क्योंकि शास्त्रानुकूल हम पुरुषार्थ नहीं करते। शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ जब करेंगे तब इस तरह की दृष्टि पैदा होगी और हम बीतराग को समझ पाएंगे और वैराग्य प्रकट होगा। बीतराग में वैराग्य प्रकट होता है।
4: हाँ।
3: और कई बार संसार की विफलताओं से भी वैराग्य प्रकट होता है।
4: जी,
3: वो बीतराग की स्थिति नहीं है।
4: जी जी जी,
3: जी।
4: ये बात हमने निराशा की है। निराशा है, बिल्कुल। अच्छा, हम प्रारब्ध और कर्म की बात कर रहे हैं, तो योग वासिष्ठ क्या कहता है, प्रारब्ध क्या है, और क्या इस जन्म में प्रारब्ध ही भोगता है मनुष्य?
3: प्रारब्ध को लेकर के मैंने भी बहुत सारे लोगों के विचार देखे। कई ऐसी मान्यताएं हैं जहां लोग कहते हैं कि प्रारब्ध हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध को इस रूप में बताया गया कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं। निश्चित ही कभी भी कोई फल बिना कर्म के बनता ही नहीं है, कर्म का ही फल बनता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम से, कहते हैं कि राम, यह पूर्व जन्म का जो पुरुषार्थ है वह प्रारब्ध है। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ, यानी पूर्व जन्म के कर्म का जो फल है वो है प्रारब्ध, यानी वो भी कर्म का ही फल है। प्रारब्ध कुछ और नहीं है, कर्म का फल है, और व्यक्ति जो है प्रयत्न करके अपने कर्म फल को क्षीण कर सकता है।
4: कैसे?
3: हाँ, इसके लिए वो कहते हैं कि ये जो प्रारब्ध है मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थितियों में डाल देता है, इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए। हाँ। ये इशारा है वशिष्ठ जी का
4: जी।
3: कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रारब्ध हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में बलपूर्वक डाल देता है या हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रारब्धावशात है
4: जी जी।
3: तो कहते हैं इसको प्रयत्न पूर्वक कुचल देना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता।
4: अच्छा,
3: प्रारब्ध
4: बड़ी बात हो गई।
3: देखिए ऋषि की घोषणा है, राम जी से कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता। तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए जब तक कि पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष स्वयं पूर्णतः शांत न हो जाए।
4: ये बड़ा सुंदर उत्तर हो गया। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि अगर भाग्य में लिखा है, अगर प्रारब्ध है, तो फिर हम कुछ न करें, क्यों करें, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सुंदर जवाब,
3: भाग्यवाद यही तो पोषित हो रहा है इसी बात के लिए। मुझे रामचरित मानस की पंक्तियां याद आ रही है। रामचरित मानस की दो पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जैसे एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही स्वतः फल चाखा।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो यहाँ पर वही बात कह रही है जो इन्होंने कही है अभी, कि प्रयत्न से अधिक प्रबल प्रारब्ध नहीं हो सकता।
4: अद्भुत बात है, लेकिन मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ इस बात पर कि जब हम योग संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम गीता की भी बात कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस की पंक्तियां आ जाती हैं। मतलब कैसे योगी वो भी थे, कैसी कैसी बातें वो लिख रहे हैं। जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं
3: वो भी कह रहे हैं,
4: तुलसीदास जी कह रहे हैं,
3: नाना पुराण निगमागम संबतम कहा ही उन्होंने।
4: जी जी
3: जी, विभिन्न पुराणों के निगम आगम का संबत बात मैं कर रहा हूँ। इसीलिए कहा गया कि शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ। वही गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं, वही है सोई जो राम
4: रचिरा
3: का तर्क बढ़ाओ इसाखा।
4: बिल्कुल,
3: है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो भाग्यवादी लोग हैं वो सहारा ले लेते हैं,
4: कि
3: भगवान चाहते हैं
4: वही जो राम रचिरा का।
3: क्या वो भूल जाते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर स्वतः पल चाखा। तो ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम ऐसा नहीं है। और सच ये है, जो जहां तक मुझे लगता है सुनीता जी, कि हमारे ऋषि इतने दूरदृष्टा थे कि वो हमारे मन का प्रबंधन करना चाहते थे। वो जानते थे कि जब कभी आपका मन आपके पुरुषार्थ से छीण हो, विकल हो, तब वो इस सहारे से
4: आप रोकें
3: ताकि आपको विचलन न हो। लेकिन अब ये भी आप सहारा लेकर के पलायन न कर जाएं, इसलिए उन्होंने कहा कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर स्वतः पल चाखा। तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी आपके मतलब प्रयत्न से प्रबल नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं कि जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साह पूर्वक साधन करते रहना चाहिए।
4: अच्छा,
3: ये उपदेश है वशिष्ठ जी का हम सभी के लिए।
4: यद्यपि
3: वो राम जी को कह रहे हैं कि जब तक पूर्व जन्म के अशुभ, माने हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो हमें कबूल नहीं हो या स्वीकार नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इस जीवन में पुरुषार्थ इतना प्रबल कर देना चाहिए। मुझे एक कथा आती है, एक भारत के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने 24 बार गायत्री का पुरस्करण किया।
4: अच्छा।
3: और उन्होंने जिस जिस के लिए किया, उनके जीवन में बहुत कष्ट था, तो वो तंग आकर के गुरु ने कह दिया कि गायत्री का पुरस्करण करिए और सब दुख दूर हो जाएगा। 24 बार उन्होंने किया और उनकी पत्नी नहीं रही, बेटा नहीं रहा, सब कुछ संसार का चिंता चला गया
4: जी।
3: लेकिन वो विचलित नहीं हुए, उन्होंने कहा गुरु की बात है, मान लिया। और जब 24 पुरस्करण होने के बाद गायत्री प्रकट हो गई और कहते हैं कि जो मांगो तुम्हारी जो वांछा हो, तो वो हंसने लगे, कहते थे जिनके लिए मांगना था
4: वो चले गए,
3: वो सब चले गए
4: जी।
3: अब तो कोई इच्छा ही नहीं बची, उन्हीं के लिए सब मैं कर रहा था, मेरा तो कोई कभी इच्छा नहीं था,
4: कभी नहीं।
3: मेरा अपनों के साथ जो नाता था उन्हीं के लिए हम बेहोल थे, परेशान थे, और वो सब के सब चले गए। तब तक तो आप आई नहीं, अब जब वो चले गए तो मांगू किसके लिए। तो गायत्री देवी कहती है, ऐसा मतलब ऋषि ने कहलवाया है, कि जरा पीछे मुड़ के देखो। तो जब पीछे देखते हैं वो, तो उनका प्रारब्ध जल रहा था।
4: अच्छा।
3: यही बात है, पीछे आग लगी थी। कहा देखो ये तुम्हारे जो 24 पुरस्करण का फल है, कि हर पुरस्करण ने तुम्हारे प्रारब्ध को जलाया है, तुम्हारे अशुभ फल को मिटाया है, और उसका परिणाम ये है कि तुम आज भी पुरस्करण कर रहे हो, जबकि तुम कब के डिग चुके होते। 24 तक टिकना मामूली बात नहीं है।
4: जी, जी,
3: तो ऐसे में तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, तुम्हारे प्रयत्न से तुम्हारा पुरुषार्थ, जो अशुभ पुरुषार्थ था, जो शास्त्र विरुद्ध था, वो सब नष्ट हो चुका है। अब तुम निर्मल हो गए हो, अब तो तुम्हारे सामने जगत की सारी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे कदमों में झूलेंगी, क्योंकि तुम अब इस योग्य बने हो।
4: बिल्कुल,
3: तो वो गायत्री को प्रणाम कहते हैं, कहते हैं देवी अब क्यों मुझे इस अविद्या के चक्र में पड़ना, अब तो अविद्या का आवरण हट गया आपके आने से, आप तो ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं, अब तो मैं प्रकाशित हो गया, अब मैं क्या फिर मांगू आपसे, तो बड़ी कृपा की आपने मुझे बोल, वो कहते हैं वो मुक्त हो गए। तो ऐसा भी ऋषियों ने दृष्टि दी है, तो प्रयत्न से हम अपने पूर्व के फल को मिटा सकते हैं, लेकिन उसका आधार प्रयत्न है, उसका आधार प्रारब्ध के अधीन होकर के बैठ जाना या पलायन कर जाना नहीं है।
4: अच्छा, एक बात आप बताएं कि इहलोक और परलोक की हमने बात की, इसकी सिद्धि कैसे होती है?
3: इहलोक और परलोक की सिद्धि, इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है, आप जब शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग करते हैं, शास्त्रानुसार जो उद्योग करते हैं
4: जी,
3: उस उद्योग से इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है। शास्त्र यहाँ बार बार इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र जो है हमारे सुधीजन या गुरुजनों का एक पूरा शास्त्र गुरु है, जिसे कथा आती है भागवत में, जब जा रहे हैं भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर, तो उद्धव से कहते हैं कि अब मैं इसी मतलब भागवत महाशास्त्र में रहूंगा, भागवत महापुराण में रहूंगा, यद्यपि उसको लोग कह के वो तत्व नहीं निरूपित करते, भागवत महापुराण कहने का आशय उनका ये था कि शास्त्र में रहूंगा, शास्त्रों में जो वचन है ऋषियों के, उनके द्वारा जो देखे गए दृश्य हैं, वो चाहे जितने पुराने हों लेकिन आज भी वो अर्वाचीन है, नवीन है, प्राचीन नहीं है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, सनातन जो धर्म की बात करते हैं हम लोग, एक्चुअल में सनातन धर्म है, जो सत्य है वो सनातन है और सनातन धर्म है, कोई धर्म सनातन नहीं है,
4: धर्म का नाम सनातन नहीं
3: है, सनातन धर्म है और सनातन की बात शास्त्रों में हुई है, जिस भी शास्त्र में वहां का अध्येता आता है वो सनातन परंपरा की बात करता है,
4: यही सनातन ही धर्म है,
3: सनातन ही धर्म है। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम लोग सनातन धर्म और इन धर्मों की लड़ाई में लग जाते हैं, लेकिन जो सनातन है, जो कभी खंडित नहीं होगा, अखंड ज्ञान जो है, अद्वैय ज्ञान जो है, वो धर्म,
4: वो धर्म है,
3: जिसके सिवाय कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, अद्वैय ज्ञान। और अद्वैय ज्ञान वही ज्ञान है, परमार्थ सत्य, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये है अद्वैय ज्ञान, सर्वम खलविदं ब्रह्म, ये है अद्वैय ज्ञान, सब ब्रह्म में है। लेकिन ये दृष्टि आते ही आप देखिए, मतलब कहता हूं मैं, जो विषम दृष्टि है मनुष्य की, जहां पर हम अपना पराया, मैं और तुम, अहम मम वृत्ति से ग्रसित हो जाते हैं, इस वृत्ति से मुक्ति दिलाती है यही अद्वैय ज्ञान की परंपरा, जहां पर दूसरा कुछ है ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको भी बहुत सुंदर चौपाई में कहा है कि सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुगपानी, यही है अद्वैय ज्ञान कि सी राम में है। अब यहाँ कोई कहे तुलसी के राम, कहां से तुलसी के राम हो गए भाई, जब पूरा जगत ही राम में है, देख रहे हैं वो, तो कहां राम नहीं है
4: जी,
3: जित देखूं तो तू ही तू है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, ये कहने के अलग अलग ढंग हैं, लेकिन सी राम में जिसको जगत दिख गया, अब उसके पास भेद दृष्टि कहाँ रही, राम से अलग कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो ये जब दृष्टि आती है, ये है सनातन धर्म, जहां पर आप सर्वव्यापी उस परम तत्व को, ब्रह्म

0: इच्छा को धिक्कार है और ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। भोगिक्षा, अब आप देखिए भोगों की इच्छाएं शांत नहीं होती, ये हमने आज तक के भोगों से सीखा
1: जी।
0: लेकिन नहीं सीख पाए, अनसुना कर दिया। आप भागवत महापुराण में कथा आती है ययाति का प्रसंग
1: जी,
0: सुना होगा, बहुत सारे श्रोताओं ने सुना होगा कि वो भोगों में इतने संलिप्त थे कि उन्होंने अपने पुत्र से भोगों की इच्छा को शांत करने के लिए जवानी मांगना शुरू कर दिया कि आप अपनी जवानी दे दो। और एक उनका अंतिम जो सबसे छोटा पुत्र था, अपने पिता के भोग की इस विह्वलता को देखकर वो समझ गया कि ये भोग कभी शांत नहीं करते, और उस पुरु ने अपना कहते हैं दे दिया उनको कि ले जाओ। और जब लेकर के फिर कुछ दिन उन्होंने भोग किया तो उन्हें लगा कि अरे मेरे पुत्र को भोगों की नश्वरता का बोध है, लेकिन मैं कितना कृतज्ञ हूं कि मैं उससे मांग रहा हूं, बाकी पुत्रों से मांगा उन्होंने नहीं दिया, छोटे ने दे दिया, कहा कि वो उनका गुरु बन गया। तो कई बार हमारे परंपरा में गुरु परंपरा सुदृढ़ रही है कि पिता का गुरु पुत्र भी बना है, और सबसे छोटा पुत्र जो है वो उनको ज्ञान दे गया, और फिर वो अपने आप को धिक्कारते हैं, वो भोगेच्छा को धिक्कारते हैं और पुरु को उसके यौवन को सौंपते हैं और फिर वो मुक्त हो जाते हैं इससे। तो कहते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। आपको बताऊं, जो लगातार हमेशा विषयों का ही चिंतन कर रहे हैं, विषय विष कहा गया है ऋषियों की दृष्टि में, और हम लोगों के लिए विषय अमृत है, विषय अमृत का पान करते हैं हम लोग, उसी के लिए जी रहे हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि मतलब विषय मारता है, जिसको हमारे भर्तृहरि जी कहते हैं कि भोगम न भुक्ता वय में वो भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वय में वो जीर्णा, कि भोगों को हमने नहीं, भोगों ने हमें भोगा, तृष्णा ने हमें बूढ़ा कर दिया, वो बूढ़ी नहीं हुई, वो तो जवान अभी भी है।
1: जी, जी,
0: और
1: जी,
0: हर वृद्ध आदमी देखिए वो तृष्णा के साथ आने वाली पीढ़ियों की योजनाओं को लेके बैठा है ना, जबकि अब आंखों से देखना बंद हो गया, हाथ पांव कांपने लगे, शरीर नहीं संभल रहा है, लेकिन आज भी परिवार और संसार की चिंता वैसे ही बनी हुई है। तो तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। तो ये कोई भर्तृहरि जैसा आत्मदृष्टा देखेगा, कोई योगी देखेगा, तो इसीलिए राम ये योग जो वासिष्ठ है, ये योगियों का प्रसंग है, और इसके लिए हमारे श्रोताओं को निश्चित ही अच्छी अवधारणा के साथ इस ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए।
1: अच्छा, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातें आप कह रहे हैं
0: जी,
1: कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए, मनुष्य बूढ़ा हो गया, सुना बहुत बार सुना, लेकिन असर तो हम पर भी नहीं है।
0: जी जी, बिल्कुल ठीक है आपने।
1: ये असर कैसे हो?
0: हाँ, अभ्यास वही जो अभी हमने शुरू में ही कहा है कि शास्त्र के अनुसार मन वाणी और शरीर का व्यवहार।
1: जी जी,
0: तो
1: जी,
0: अब जैसे शरीर बूढ़ी होगी ये मानकर हम क्या जवानी में व्यवहार करते हैं। फिर मुझे एक कथा याद आ गई कि एक बूढ़े बाबा जा रहे थे कहीं से, तो वो थोड़ी झुकी कमर थी, हाथ में लाठी लिए थे, तो बच्चों ने उन्हें छेड़ा, कहा कि आप तो धनुष के आकार के हो गए, बाबा ये धनुष कहाँ से लिया? तो बाबा ने कहा कि बेटा समय आने पर तुम्हें भी मिल जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये अगर हम शरीर की दशा देख लें तो निश्चित तौर पर हमें मतलब ये समझ में आ जाएगा, तो हमारा मतलब अनुशासित हो जाएगा, हम उद्दंड नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे।
1: अच्छा, ये बताएं कि जीवन में परम फल की प्राप्ति कैसे होती है?
0: जीवन में परम फल की प्राप्ति परम स्वार्थ रूप परमात्म साक्षात्कार रूपी फल से होती है। परम स्वार्थ रूप कहा वशिष्ठ जी ने उसे, कि आपके जीवन का परम स्वार्थ, जिसे हम संसार में अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, स्वार्थ बहुत प्यारा शब्द है, लेकिन इसके अर्थ इतने बिगाड़ दिए गए कि हम स्वार्थी शब्द का नाम से घृणा करते हैं कि बड़ा स्वार्थी आदमी है, जबकि स्वार्थ शब्द योगियों का शब्द है, कि जो स्वयं के अर्थ को खोजने में तत्पर हो या जिसने स्वयं के अर्थ को जान लिया वो स्वार्थी है।
1: स्व का अर्थ,
0: तो ये कहते हैं कि परम स्वार्थ जो है वह है परमात्मा साक्षात्कार। और जब आप स्वार्थ को सिद्ध करते हैं तो आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, और स्वरूप साक्षात्कार में अयमात्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है, ज्ञान नहीं होता, बोध होता है। जी, तो ये है परम स्वार्थ।
1: ये बोध और ज्ञान की लड़ाई हम लोग के साथ भी चल रही है।
0: हम लोग ज्ञान में सुन ली, हम लोगों ने क्या किया, ऋषियों की भाषा सुन ली, लेकिन न उसका मनन किया, श्रवण तो कर लिया, मनन नहीं किया, मन से विचार ही नहीं करते, और निधिध्यासन तो दूर, तो फिर व्यवहार करने का सवाल ही नहीं होता। तो हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे हो? हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि इसलिए नहीं हो रही। अच्छा, एक बार और विचार करिए कि संसार में कभी किसी के पुरुषार्थ की सिद्धि हुई? पुरुषार्थ का जो परम पुरुषार्थ है वो मोक्ष है
1: जी।
0: संसार में तो बंधन ही मिलता है ना, आप बहुत कुछ अर्जित कर लें तो और बड़ा बंधन खड़ा कर लेंगे, और छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। जितनी आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएं, उतनी ही आप इच्छाओं के बंधन में बंधते चले जाएंगे, उतना ही वो संसार की वस्तु आपको और गहरे में बांधेगी। परम पुरुषार्थ तो मोक्ष है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या, धर्म। इसीलिए भारत का ऋषि अद्भुत था, धर्म धर्म में फिर हमने बात की सनातन धर्म, है ना, जो सनातन है उसके अनुसार व्यवहार करना, उसके अनुसार विचार करना और उसी को बोलना, यह है धर्म। फिर धर्म जब होगा तो जीवन का अर्थ सिद्ध होगा। अर्थ मतलब यहाँ धन ही नहीं है,
1: हाँ।
0: जीवन भी तो एक धन है, जीवन से बड़ा धन क्या है?
1: बिल्कुल।
0: जीवन पर जब संकट आए तो संसार के समस्त धन को क्या हम दांव पर नहीं लगाते?
1: बिल्कुल।
0: तो जीवन से बड़ा कोई धन नहीं है, और उसी जीवन को, संसार के धन को पाने के लिए हम नष्ट करते हैं और बीमार होते हैं, और बीमार होकर फिर बाद में बचाने के लिए धन खर्च करते हैं। ये हम लोगों की मूर्तापूर्ण कहानी है कि पहले हम धन को कमाने के लिए अपने शरीर को बीमार करते हैं और फिर बीमारी से मुक्त होने के लिए कमाए हुए धन को खर्च
1: करते हैं जी,
0: और एक दिन मर जाते हैं। तो हमने कमाया कि खोया, क्या किया? कंकड़ पत्थर इकट्ठा किया
1: जी।
0: तो कहते हैं कि वो तब अर्थ की सिद्धि होती है, और अर्थ जब सिद्ध होता है तब आपके काम की सिद्धि होती है। भारत में पूर्ण काम की बात की गई है। भारत का ऋषि कहता है काम मतलब अधूरी कामनाएं नहीं, पूर्ण काम होना। एक मंत्र बहुत सभी हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, आपको भी शायद स्मृति हो जाए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माने आप देखें तो आपका जो स्वरूप है वो पूर्ण है, और ऐसा पूर्ण है जिसमें से कुछ भी घटा लीजिए उसकी पूर्णता में कमी नहीं होगी। संसार के किसी भी विषय वस्तु को अगर आपसे छीना जाए तो आप अधूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन के अर्थ को प्रकट कर चुके हैं तो वो कभी भी अपूर्ण नहीं होगा। और पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा अवशिष्यते, उस पूर्ण से जो घटा तो भी पूर्ण, जो शेष बचा वो भी पूर्ण। तो ऐसे में पूर्ण को जब हम जान लेते हैं तो हम पूर्ण काम होते हैं, तो काम की सिद्धि होती है। और जब ऐसे पूर्ण काम हम होते हैं तो मोक्ष तो हो ही जाता है। यही तो मोक्ष है। पूर्ण काम होना मतलब मोक्ष होना, अपूर्ण काम होना मतलब अपने ओम पूर्ण मदह, उस पूर्ण ओम स्वरूप को अनाहत जो ध्वनि है उस तरंग के साथ हो जाना है। अपने स्वरूप को ही नहीं जानना बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप, तरंगों की भाषा भी समझना, जिसको क्वांटम फिजिक्स तरंग पदार्थ के रूप में व्यक्त करता है कि एक ही समय में कब कोई वस्तु पदार्थ है कब तरंग है ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही हमारी तरंगों की भी एक दुनिया है, जहां पर वो तरंगों की अनाहत नाद कहा हमारे ऋषियों ने उसे। वो तरंगें दो की वजह से नहीं है, आहत नहीं है, वो अनाहत है, वो ओंग है, अनहद नाद। तो उसके द्वारा हम अपने जीवन को,
1: समय बहुत कम रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत संक्षेप में आप बता दें कि जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि क्या है।
0: सुंदर कहा आपने, जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि है विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: अब देखिए ये भी एक ऋषि का कितना गूढ़ तत्व चिंतन है। हम लोग दोष के साथ गुण को ग्रहण करते हैं। वशिष्ठ जी के ही इस योग वासिष्ठ में एक प्रकरण आता है जिसमें कहते हैं कि शुद्ध गाय का दूध भी अगर चमड़े के थैले में दूहा जाए तो वो अपवित्र हो जाए। तो ऐसे ही दोष के साथ अगर गुण ग्रहण किया गया तो गुण भी दोषपूर्ण हो जाएगा। तो दोष का त्याग कर आप गुणों को ग्रहण करें, और दोष का त्याग कैसे होगा? विचार पूर्वक होगा, क्योंकि बिना विचारे आप दोष के साथ होते हैं, विचार पूर्वक आप दोषों को देख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रतिक्रिया मत करें, आप रिस्पॉन्ड करें। रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्डिंग व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए कि हम रिस्पॉन्स करें। तो इस तरीके से, और वो तभी होगा जब विचार पूर्वक हो। और कहा भी गया हमारे यहाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना। तो पछताने वाली बात तब होती है जब दोष के साथ गुण ग्रहण किया जाता है और विचार पूर्वक दोष को त्याग करके गुणों को ग्रहण किया जाए।
1: तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही शशिकांत जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद के खंडन विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें, नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद, जिसमें आज का विषय था पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद का खंडन। इस विषय पर जानकारी दी जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी ने, और इनसे बातचीत कर रही थी सुनीता सिंह। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है भारत विभूति, इस कार्यक्रम में आज हम पेंटिंग कलाकार के शंकर पिल्ले की जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।
3: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। आज हम आपसे चर्चा करेंगे पद्म भूषण से सम्मानित महान चित्रकार कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई के बारे में। साथियों, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कला समाज का दर्पण है, समय का दस्तावेज है और परिवर्तन का माध्यम है। और जब हम के शंकर पिल्लई के बारे में बात करते हैं तो केवल एक कलाकार के बारे में नहीं बोल रहे होते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक युग के बारे में, एक आंदोलन के बारे में।
1: बिल्कुल, 31 जुलाई 1902 को केरल के छोटे से शहर कायमकुलम में जन्मे के शंकर पिल्लई ने अपने जीवन की शुरुआत बेहद साधारण परिस्थितियों में की थी। उनके पिता एक साधारण डाक कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन इस साधारण परिवार के बच्चे में छिपी थी एक असाधारण प्रतिभा, एक ऐसी प्रतिभा जो आगे चलकर भारत की पहचान बनी।
0: के शंकर पिल्लई ने कभी कोई औपचारिक कला शिक्षा नहीं ली, उनके हाथ में कोई महंगा ब्रश नहीं था, कोई विदेशी डिग्री नहीं थी, लेकिन था तो बस एक अटूट जुनून, चित्रकारी का जुनून, अभिव्यक्ति का जुनून, सच बोलने का जुनून। बचपन में वे दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे, स्कूल की किताबों के हाशिए पर अपने शिक्षकों के कार्टून बनाते थे, और यही शौक, यही जुनून उन्हें मुंबई ले गया, सपनों के शहर में, जहां संघर्ष था, चुनौतियां थीं, लेकिन अवसर भी थे।
1: बिल्कुल, तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं के शंकर पिल्लई की जीवन यात्रा की ओर। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव से और पहुंचती है पूरे भारत के दिलों तक। ऐसी यात्रा जिसमें है संघर्ष के अनगिनत पड़ाव, सपनों की उड़ान, असफलताओं का सामना और अंततः सफलता का वो शिखर जो आज भी हम सबको प्रेरित करता है।
0: केशव शंकर पिल्लई का जन्म 31 जुलाई 1902 को केरल के त्रावणकोर राज्य के कायमकुलम नामक छोटे से शहर में हुआ था। ये स्थान आलप्पुझा जिले में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बैकवाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। उनका जन्म एक परंपरागत नायर परिवार में हुआ था, जो केरल की प्रमुख जातियों में से एक है। उनके पिता केशवर नायर एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, वे डाक विभाग में काम करते थे और परिवार की आय बहुत सीमित थी। माता लक्ष्मी अम्मा एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं, जो घर परिवार की देखभाल करती थीं। परिवार में शंकर के अलावा और भी भाई बहन थे और सभी को एक साथ पालना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था।
1: केरल उस समय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था और शंकर के माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि आर्थिक तंगी थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा पर समझौता नहीं किया। शंकर बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और कल्पनाशील थे। कायमकुलम की हरी भरी प्रकृति, नारियल के पेड़, बैकवाटर्स की नावें और स्थानीय बाजार का रंगीन जीवन, ये सब उनकी कल्पना को उड़ान देते थे। वे घंटों बैठकर लोगों को देखते और उनकी विशेषताओं को अपने दिमाग में उतारते रहते थे।
0: उनकी माँ को याद है कि 5-6 साल की उम्र में ही शंकर घर की दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता का चेहरा दीवार पर बना दिया, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। चेहरे की समानता इतनी सटीक थी कि लोग पहचान गए कि ये किसका चित्र है।
1: बिल्कुल, और माँ अक्सर चिंतित होती थी कि शंकर अपनी पढ़ाई की किताबों में भी चित्र बनाते रहते थे। गणित की किताब के हाशिए पर फूल, पत्ते, चिड़िया और लोगों के चेहरे बने होते थे। कभी कभी तो पूरा पन्ना ही चित्रों से भर जाता था और पाठ पढ़ने के लिए जगह नहीं बचती थी।
0: शंकर की प्रारंभिक शिक्षा कायमकुलम के स्थानीय स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में औसत दर्जे के छात्र थे। गणित उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इतिहास और भूगोल में उनकी रुचि थी, क्योंकि इन विषयों में चित्र और नक्शे होते थे। स्कूल के शिक्षक उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि वे कक्षा में ध्यान ही नहीं देते थे। एक बार संस्कृत के शिक्षक पाठ पढ़ा रहे थे और शंकर अपनी कॉपी में कुछ बना रहे थे। शिक्षक ने गुस्से में कॉपी छीन ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शंकर ने उनका ही एक बेहद सटीक कार्टून बनाया है जिसमें वे संस्कृत श्लोक बोलते हुए दिख रहे हैं, तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। उस दिन के बाद वे शिक्षक शंकर को प्यार से छोटे चित्रकार कहने लगे।
1: जी हाँ, और स्कूल में शिक्षक के कुछ करीबी दोस्त थे जो उनकी कला के बेहद प्रशंसक थे। वे अक्सर शंकर से अपने चित्र बनवाते और अपने घर ले जाकर रखते थे। धीरे धीरे पूरे स्कूल में शंकर की प्रतिभा की चर्चा होने लगी। 10वीं कक्षा में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। स्कूल में वार्षिक उत्सव था और प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें विद्यार्थियों को महात्मा गांधी का चित्र बनाना था। शंकर ने जो चित्र बनाया वो इतना जीवंत था कि देखने वालों को लगा जैसे गांधी जी खुद वहां खड़े हों। उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला और स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, ये लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा।
0: हाई स्कूल पूरा करने के बाद शंकर ने त्रावणकोर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। ये केरल का एक प्रतिष्ठित कॉलेज था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए शंकर को छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं थी और उन्हें बहुत कठिनाई से अपना खर्च चलाना पड़ता था। कॉलेज में शंकर ने बीए में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और चित्रकारी में ज्यादा लगता था। वे कक्षाओं में बैठकर प्रोफेसरों के कार्टून बनाते रहते। एक बार इतिहास के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और शंकर उनका चित्र बना रहे थे। प्रोफेसर ने पूछा, शंकर मैं क्या पढ़ा रहा हूं? शंकर खड़े हो गए और बोले, सर मुगल साम्राज्य के बारे में। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा तो तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? शंकर ने झिझकते हुए अपनी कॉपी दिखाई। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, कला अच्छी है लेकिन परीक्षा में ये नहीं चलेगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, कॉलेज के दिनों में शंकर को अपनी आर्थिक स्थिति से भी बहुत जूझना पड़ा था। कई बार उनके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। वे दोस्तों से किताबें उधार लेते और पूरी रात जाग कर पढ़ते थे। खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ती थी। कभी कभी तो केवल चाय और बिस्किट से ही उनका दिन गुजरता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने शंकर की हिम्मत नहीं तोड़ी। उन्होंने कॉलेज की पत्रिका के लिए चित्र बनाने शुरू कर दिए। कॉलेज के वार्षिक समारोह के पोस्टर भी वे बनाते थे और धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी।
0: एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा, शंकर तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो डिग्री कैसे मिलेगी? शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे लगता है कि कला ही मेरा असली विषय है, मैं इसी में अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। अंततः शंकर ने अपनी डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन उनके मन में स्पष्ट था कि उन्हें एक कलाकार बनना है, किसी ऑफिस में बाबू नहीं। 1920 के दशक के अंत में जब शंकर की उम्र लगभग 25-26 साल की थी, उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गांव और परिवार को छोड़कर मुंबई जाने का फैसला लिया। उस समय मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था और यहाँ अवसरों की कमी नहीं थी।
1: लेकिन ये निर्णय इतना आसान नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि शंकर कोई सरकारी नौकरी कर ले और परिवार को आर्थिक सहारा दे। माँ को डर था कि बड़े शहर में उनका भोला भाला बेटा कैसे रहेगा, लेकिन शंकर ने अपने सपनों को पूरा करने की तो ठान ली थी।
2: है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: मुंबई पहुँचने पर शंकर के पास बहुत कम पैसे थे। वे दादर के एक छोटे से कमरे में रहने लगे जहां तीन और लोग रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि चारों लोगों के बिस्तर फर्श पर एक के बाद एक लगाने पड़ते थे। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। शंकर को रोजगार नहीं मिल रहा था। उन्होंने कई जगहों पर अपने चित्र दिखाए, लेकिन किसी ने भी उन्हें उस वक्त काम नहीं दिया।
0: एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे। उन दिनों की याद करते हुए शंकर ने बाद में कहा था, मुंबई की सड़कों पर मैंने भूख का असली मतलब समझा, लेकिन हर भूखी रात के बाद मुझे लगता था कि अगली सुबह जरूर कुछ बेहतर होगा। जब हालात बहुत बिगड़े तो शंकर को जीवन चलाने के लिए कोई भी काम करना पड़ा। उन्होंने पहले एक कपड़ा मिल में क्लर्क की नौकरी की। काम बहुत नीरस था। रोज लेजर के आंकड़े, रिपीट, रोज लेजर में आंकड़े दर्ज करने होते थे, लेकिन वेतन नियमित मिलता था और कम से कम पेट भर भोजन तो हो ही जाता था।
1: जी हाँ, और मिल में काम करते हुए भी शंकर ने अपनी कला का अभ्यास जारी रखा। शाम को काम के बाद वे अपने छोटे से कमरे में घंटों स्केच बनाते रहते थे। वे मुंबई की सड़कों पर घूमते, लोगों को देखते और उनके चेहरों को अपनी ड्राइंग बुक में उतारते थे। इसके बाद उन्होंने रेलवे में भी कुछ समय काम किया। ये नौकरी थोड़ी बेहतर थी क्योंकि इसमें कभी कभार यात्रा करने का मौका मिलता था। ट्रेन में बैठकर शंकर विभिन्न यात्रियों के चित्र बनाते। किसान, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं, हर चेहरे में एक कहानी होती थी और शंकर उस कहानी को पकड़ने की पूरी कोशिश करते थे।
0: 1932 का साल शंकर के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना। एक दिन उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध अखबार द फ्री प्रेस जर्नल के दफ्तर जाने का साहस किया। उन्होंने अपने कुछ बेहतरीन कार्टून एक फाइल में रखे और संपादक से मिलने की इच्छा जताई।
1: रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वे पूरे दिन वहां बैठे रहे। शाम को जब संपादक बाहर निकले तो शंकर ने उनके सामने अपनी फाइल रख दी। संपादक ने कहा, तुम्हारी कला में दम है, लेकिन कार्टून बनाना सिर्फ अच्छी ड्राइंग नहीं है, इसमें समाज को समझना पड़ता है, राजनीति को समझना पड़ता है और सबसे जरूरी व्यंग को समझना पड़ता है। क्या तुम ये कर सकते हो?
0: शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। संपादक ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगले हफ्ते मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक बैठक है जिसमें पानी की कमी के मुद्दे पर चर्चा होगी, इस पर एक कार्टून बनाकर लाओ। शंकर ने पूरे हफ्ते मेहनत की। उन्होंने अखबार पढ़े, पानी की समस्या को समझा और एक शानदार कार्टून बनाया जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर को प्यासे मुंबई वासियों से घिरे हुए दिखाया गया था, जबकि कमिश्नर खुद नारियल पानी पी रहे थे।
1: क्या बात है। और जब शंकर ये कार्टून लेकर गए तो संपादक बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बधाई हो शंकर, तुम्हारा ये कार्टून कल के अखबार में छपेगा। और अगले दिन जब शंकर ने अपना पहला प्रकाशित कार्टून देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों के संघर्ष के बाद उनकी मेहनत रंग ला रही थी। द फ्री प्रेस जर्नल में शंकर के कार्टून नियमित रूप से छपने लगे। शुरुआत में उन्हें प्रति कार्टून कुछ रुपए मिलते थे, जो उनकी रेलवे की नौकरी से ज्यादा नहीं थे, लेकिन संतुष्टि उन्हें बहुत मिलती थी।
0: धीरे धीरे शंकर के कार्टून मुंबई में चर्चा का विषय बनने लगे। लोग सुबह अखबार खोलते और सबसे पहले शंकर का कार्टून देखते। उनके कार्टूनों में समाज की विसंगतियां, राजनीतिक पाखंड और ब्रिटिश शासन की नीतियों पर तीखा व्यंग होता था। 1930 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। शंकर ने अपनी कला को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को उजागर करते थे।
1: जी हाँ, और एक बार तो उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसमें ब्रिटिश वायसराय को एक विशाल हाथी के रूप में दिखाया गया था जो भारत के गरीब किसानों को कुचल रहा था। ये कार्टून इतना प्रभावशाली था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अखबार के संपादक को धमकी तक दे दी, लेकिन संपादक ने शंकर का साथ दिया और कहा कि कला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कॉमन मैन का जन्म एक ऐतिहासिक पल। 1930 के दशक के मध्य में शंकर ने अपने सबसे प्रसिद्ध कार्टून चरित्र कॉमन मैन की रचना की। ये विचार उन्हें कैसे आया, इसके बारे में भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है।
0: एक दिन शंकर मुंबई की सड़क पर चल रहे थे। उन्होंने देखा एक साधारण आदमी धोती कुर्ता पहने, चश्मा लगाए, थोड़ा गंजा, बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न खुशी न गम, बस एक शांत स्वीकृति कि जो होना है वो होगा। शंकर ने सोचा कि ये चेहरा तो करोड़ों भारतीयों का चेहरा है, वो आम आदमी जो हर रोज संघर्ष करता है, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाता है, महंगाई से परेशान होता है, राजनेताओं के वादे सुनता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता।
1: बिल्कुल। जब शंकर ने पहली बार इस चरित्र को कार्टून में इस्तेमाल किया तो पाठकों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। लोगों ने लिखा, ये तो मैं हूँ, ये मेरे पिता हैं, और कईयों ने लिखा, ये तो हर भारतीय है। कॉमन मैन भारत के आम आदमी का प्रतीक बन गया। शंकर के हर कार्टून में ये चरित्र किसी न किसी रूप में दिखाई देता। कभी महंगाई से परेशान, कभी भ्रष्ट नेताओं से पिसता, कभी सरकारी योजनाओं का इंतजार करता और कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में डूबा हुआ।
0: आज 80 साल बाद भी कॉमन मैन भारतीय कार्टून का सबसे पहचाना जाने वाला चरित्र है। जैसे जैसे शंकर की ख्याति बढ़ी, अन्य अखबारों ने भी उन्हें काम के लिए बुलाया। 1948 से पहले शंकर ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कार्टून बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके कार्टून बहुत चर्चित रहे। हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल सभी शंकर के कार्टूनों में नजर आते थे।
1: बिल्कुल, लेकिन शंकर का असली फोकस भारत की समस्याओं पर था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब उनके कार्टूनों के विषय थे। लेकिन उनके कार्टून कभी नकारात्मक नहीं होते थे। उनमें हमेशा एक आशा की किरण होती थी, एक विश्वास की भारत बेहतर होगा। 1940 के दशक में जब भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था, शंकर के कार्टून और भी तीखे और प्रभावशाली हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मौन लेकिन शक्तिशाली हथियार बन गए थे।
0: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेता शंकर के कार्टूनों की सराहना करते थे। गांधी जी ने एक बार कहा था, शंकर का कार्टून 1000 शब्दों से ज्यादा प्रभावी है।
1: और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये शंकर के जीवन का भी एक नया अध्याय था। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी एक पत्रिका शुरू करनी चाहिए जो पूरी तरह से कार्टून और व्यंग पर आधारित हो। इसके लिए पैसों की जरूरत थी। शंकर ने अपनी कुछ जमा पूंजी लगाई और कुछ मित्रों से उधार ले लिया। 1948 में उन्होंने शंकर्स वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत कर दी। पहला अंक छपा तो शंकर की धड़कनें और तेज हो गईं। क्या लोग इसे पसंद करेंगे? क्या ये बिकेगी? उनकी सारी पूंजी दांव पर लगी थी।
0: लेकिन उनकी चिंता निराधार निकली। पहला अंक हाथों हाथ बिक गया। लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की। अखबारों में समीक्षाएं छपी। एक नई तरह की पत्रिका, व्यंग का अद्भुत नमूना। शंकर ने भारतीय पत्रकारिता में नया अध्याय जोड़ा। शंकर्स वीकली जल्दी ही भारत की सबसे लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक बन गई। हर सप्ताह लाखों लोग इसका इंतजार करते थे। पत्रिका केवल कार्टून नहीं थी, इसमें राजनीतिक व्यंग, सामाजिक टिप्पणी, कहानियां, कविताएं और बच्चों के लिए एक अलग ही सेक्शन होता था।
1: और पत्रिका का एक विशेष आकर्षण यू सेड इट कॉलम था, जिसमें प्रसिद्ध लोगों के विरोधाभासी बयानों को एक साथ रखकर व्यंग किया जाता था। राजनेता जो आज कुछ कहते थे और कल उसके उलट बोलते थे, उनके दोनों बयान को एक साथ छापा जाता था। ये बेहद लोकप्रिय था और राजनेताओं को सावधान रहने पर मजबूर भी करता था। पत्रिका में नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मुरारजी देसाई सभी के कार्टून छपते थे, लेकिन शंकर का व्यंग कभी व्यक्तिगत नहीं होता था। वे नीतियों और कार्यों पर टिप्पणी करते थे, व्यक्तियों पर हमला नहीं करते थे।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू और शंकर पिल्लई के बीच एक अनोखा रिश्ता था। नेहरू शंकर के कार्टूनों के बड़े प्रशंसक थे, हालांकि उनमें अक्सर खुद नेहरू का मजाक बनाया जाता था। एक बार शंकर ने एक कार्टून बनाया जिसमें नेहरू को दिखाया गया था कि वे एक साथ बहुत सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ उनके हाथ से गिर रहा है। ये उनकी अति व्यस्तता पर व्यंग था। जब ये कार्टून छपा तो नेहरू के कुछ करीबी सहयोगियों ने उन्हें शिकायत की कि शंकर बहुत ज्यादा आजादी ले रहे हैं। लेकिन नेहरू ने हंसते हुए कहा, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं वाकई बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कार्टून मुझे याद दिलाता है कि मुझे प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।
1: जी हाँ, और एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार नेहरू ने शंकर को 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री निवास में बुलाया। शंकर घबराए हुए थे कि शायद किसी कार्टून पर आपत्ति होगी, लेकिन नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ कार्टून बहुत पसंद आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मूल प्रतियां मुझे दे दो। मैं उन्हें अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ। क्या था, शंकर हैरान रह गए। प्रधानमंत्री अपने ही मजाक उड़ाने वाले कार्टून अपने कमरे में लगाना चाहते हैं। नेहरू ने समझाया, ये कार्टून मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ और आम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
0: शंकर भी नेहरू के विजन की सराहना करते थे, हालांकि उनके कार्टूनों में नेहरू की आलोचना जारी रहती थी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शंकर ने एक बहुत मार्मिक कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन नेहरू की तस्वीर के सामने सिर झुकाए खड़ा था और आंखों में आंसू थे। कैप्शन था, गुरु चला गया। ये कार्टून देखकर करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो गईं।
1: शंकर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी किताबें प्रकाशित करे। साल 1957 में उन्होंने चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट CBT की स्थापना की। शुरुआत में काफी मुश्किलें आईं। प्रकाशक कहते थे कि बच्चों की किताबों में पैसा नहीं है, लेकिन शंकर ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पैसा लगाया और पहले किताबें प्रकाशित की।
0: CBT की किताबें रंगीन और आकर्षक होती थीं। कहानियां भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित होती थी। कीमत इतनी कम रखी जाती थी कि मध्यम वर्ग का बच्चा भी खरीद सके। धीरे धीरे CBT की किताबें लोकप्रिय हो गईं। आज CBT ने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं और करोड़ों बच्चों तक पहुंची हैं।
1: शंकर खुद भी बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे और चित्र बनाते थे, लेकिन शंकर का सबसे बड़ा सपना था बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां वे अपनी रचनात्मकता को खुलकर अभिव्यक्त कर सकें, जहां वे कला, संगीत, नृत्य, थिएटर सीख सकें, जहां कोई परीक्षा ना हो, कोई नंबर ना हो, बस सीखने का आनंद हो।
0: 1 नवंबर 1961 को बाल भवन का उद्घाटन हुआ। नेहरू खुद इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, शंकर ने जो काम किया है वो केवल एक इमारत बनाना नहीं है, उन्होंने बच्चों के सपनों के लिए एक घर बनाया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: बिल्कुल। और बाल भवन में विभिन्न विभाग थे, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, साइंस और फोटोग्राफी। बच्चे शाम को स्कूल के बाद यहाँ आते और अपनी रुचि की चीजें सीखते थे। शंकर खुद अक्सर बाल भवन आते थे। वे बच्चों से बातचीत करते, उनके चित्र देखते और उन्हें प्रोत्साहित करते। कई बच्चे जो आज सफल कलाकार हैं, उन्हें याद है कि कैसे शंकर अंकल ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे ही बनाते रहो। बाल भवन की ये सफलता के बाद देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन खोले गए। आज भी ये संस्थाएं लाखों बच्चों को कला और शिक्षा दे रही हैं।
0: शंकर ने एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का विचार दिया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में शंकर ने सुझाव दिया, क्योंकि नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और तब से हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
1: शंकर्स वीकली में हर साल बाल दिवस पर एक विशेष अंक निकलता था जिसमें बच्चों की रचनाएं, कहानियां, चित्र छापे जाते थे। देश भर के बच्चे अपनी रचनाएं भेजते थे और चुनी गई रचनाएं पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। किसी बच्चे के लिए शंकर्स वीकली में छपना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। शंकर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वे अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखते थे। उनका विवाह केरल की एक शिक्षित महिला से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत संयमी और समझदार थी, जो शंकर के काम को समझती थी।
0: उनकी बेटियों को याद है कि कैसे पिता रविवार की शाम को उनके साथ बैठते और उन्हें चित्र बनाना सिखाते थे। वे बच्चों को कभी दबाव नहीं डालते थे कि वे भी कलाकार बने, बल्कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने की आजादी देते थे। एक रोचक बात, शंकर घर पर बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके पास महंगी गाड़ी नहीं थी, ना ही बड़ा बंगला। वे दिल्ली के एक साधारण इलाके में मध्यम आकार के घर में रहते थे। उनकी पत्नी रसोई में खुद ही खाना बनाती थीं।
1: शंकर अक्सर देर रात तक काम करते थे और सुबह देर से उठते थे। उनकी पत्नी को ये आदत बहुत परेशान करती थी, लेकिन वो जानती थी कि रात का वो समय जब घर में शांति होती थी, शंकर के लिए सबसे रचनात्मक समय था। शंकर केवल एक कलाकार नहीं थे, वे एक सामाजिक चिंतक भी थे। उन्हें समाज की समस्याओं की गहरी समझ थी। उन्होंने कॉमन मैन को सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए अनगिनत बार देखा था और दिखाया भी था।
0: शंकर जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों ने उन्हें बहुत दुखी किया। उन्होंने कई मार्मिक कार्टून बनाए। महिला सशक्तिकरण में भी उनका विश्वास था। उनकी कार्टूनों में महिलाएं कमजोर नहीं दिखाई जाती थीं। उन्होंने कई बार समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर कार्टून बनाए।
1: व्यक्तिगत रूप से शंकर बेहद विनम्र और सरल इंसान थे। उन्हें कोई अहंकार नहीं था। युवा कलाकार जब उनसे मिलने आते तो वे बहुत प्यार से मिलते और उन्हें मार्गदर्शन देते। 1960 और 70 के दशक में शंकर ने विभिन्न देशों की यात्राएं भी की। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया भी जाता था।
0: उन्होंने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों का दौरा किया। हर जगह उनके कार्टूनों की प्रदर्शनी लगाई गई। विदेशी कलाकार उनकी शैली से बहुत प्रभावित होते थे। एक बार लंदन में एक प्रदर्शनी के दौरान एक अंग्रेज कार्टूनिस्ट ने शंकर से कहा, तुम्हारे कार्टून में जो गर्माहट और मानवीयता है वो पश्चिमी कार्टूनों में नहीं होती। तुम लोगों पर व्यंग करते हो लेकिन नफरत नहीं फैलाते।
1: तब शंकर ने जवाब दिया था, ये भारतीय संस्कृति का असर है। हम समस्याओं को दिखाते हैं लेकिन व्यक्तियों से नफरत नहीं करते। हमारा मकसद सुधार लाना है, ना कि किसी को नीचा दिखाना। विदेश यात्राओं के दौरान शंकर ने कई प्रसिद्ध हस्तियों से मुलाकात भी की। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी, अमेरिकी राष्ट्रपति, विभिन्न प्रधानमंत्रियों और कई प्रसिद्ध कलाकारों से मुलाकात की। लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद उनमें कोई अहंकार कभी नहीं आया।
0: एक दिलचस्प घटना है। 1965 में उन्हें मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टून प्रतियोगिता में जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां दुनिया भर के 50 देशों से कार्टूनिस्ट आए थे। शंकर भारत के प्रतिनिधि थे। प्रतियोगिता में एक युवा रूसी कार्टूनिस्ट ने बहुत प्रभावशाली काम प्रस्तुत किया। जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो कुछ पश्चिमी जजों ने उस रूसी कलाकार को पुरस्कार देने में आपत्ति जताई, क्योंकि वे सोवियत यूनियन के थे और शीत युद्ध का दौर था। बाद में उस कलाकार ने शंकर से मिलकर कहा, आपने मेरे लिए न्याय किया, मैं आपका आभारी हूं। शंकर ने जवाब दिया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ सही किया।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में शंकर ने भारतीय राजनीति पर लगातार व्यंग किए। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आपातकाल तक हर महत्वपूर्ण घटना पर उनके कार्टून छपते थे। 1962 के चीनी आक्रमण पर उनके कार्टून बेहद प्रभावशाली थे। उन्होंने भारत की तैयारियों की कमी और सरकार की लापरवाही को दिखाया, लेकिन साथ ही भारतीय सैनिकों के साहस की भी सराहना की।
0: 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव हुए तो शंकर ने एक यादगार कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन को मतपेटी के सामने खड़े दिखाया गया था और उसके चेहरे पर संकल्प का भाव था। कैप्शन था, अब मेरी बारी है। ये कार्टून लोकतंत्र की विजय का प्रतीक बन गया।
1: बिल्कुल। और आर के लक्ष्मण, जो आगे चलकर भारत के सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों में से एक बने, शंकर के ही मार्गदर्शन में आगे बढ़े थे। लक्ष्मण अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, शंकर मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कार्टून केवल मजाक नहीं है, ये समाज का दर्पण है। अब्बू अब्राहम, मारियो मिरांडा जैसे कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने शंकर से प्रेरणा ली। शंकर का स्टूडियो युवा कलाकारों के लिए हमेशा खुला रहता था। कोई भी आकर अपना काम वहां दिखा सकता था।
0: शंकर अक्सर कहते थे, प्रतिभा तो बहुत लोगों में होती है लेकिन मेहनत और निरंतरता से ही सफलता मिलती है, और सबसे जरूरी है ईमानदारी। अपनी कला के प्रति ईमानदार रहो। शंकर को उनके जीवन काल में कई सम्मान मिले, लेकिन वे इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं बल्कि कला की महत्ता के रूप में देखते थे। 1966 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शंकर से कहा, आपने कला के माध्यम से समाज को दर्पण दिखाया है। यह सम्मान केवल आपकी कला के लिए नहीं बल्कि आपके सामाजिक योगदान के लिए भी है।
1: और तब शंकर ने विनम्रता से जवाब दिया, महोदय ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, ये उन करोड़ों कॉमन मैन का है जिनकी आवाज में अपने कार्टून के जरिए उठाने की कोशिश करता हूँ। साल 1974 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हालांकि उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला लेकिन नामांकन ही उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
0: 1980 के दशक में शंकर की उम्र 80 के पार हो चुकी थी लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। वे अभी भी नियमित रूप से कार्टून बनाते थे, बाल भवन जाते थे और युवा कलाकारों से मिलते थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। 1989 में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन अस्पताल में भी वे अपनी स्केच बुक साथ में रखते। एक बार उनके डॉक्टर ने उनसे कहा, आप अब आराम कीजिए, इतनी उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, कला करना मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरी सांस है, जब तक सांस है तब तक कला रहेगी।
1: और वो दिन 26 दिसंबर 1989 की शाम, जब शंकर ने अपनी अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अखबारों में श्रद्धांजलि छपी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश भर के लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा, शंकर जी ने अपनी कला से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। उनका कॉमन मैन हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि सरकार किसके लिए है। आज देशभर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन हैं, जो लाखों बच्चों को कला की शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली का बाल भवन आज भी सक्रिय है और हर साल हजारों बच्चे वहां आते रहते हैं।
0: CBT आज भी बच्चों के लिए किताबें प्रकाशित कर रहा है। 60 साल में इसने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं, जो 100 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। हालांकि शंकर्स वीकली अब प्रकाशित नहीं होती, लेकिन इसने भारतीय व्यंग पत्रकारिता की नींव रखी। आज के कई व्यंग कार्यक्रम और पत्रिकाएं शंकर्स वीकली से प्रेरित है।
1: आज के कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। उनकी शैली, सरल रेखाएं, गहरा संदेश और मानवीय स्पर्श आज भी कलाकारों को बेहद प्रभावित करता है।
0: के शंकर पिल्लई का जीवन एक साधारण केरल के लड़के से लेकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट और समाज सेवक बनने की अद्भुत यात्रा है। उन्होंने साबित किया कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और बदलाव लाने का शक्तिशाली माध्यम है। बचपन में दीवारों पर कोयले से चित्र बनाने वाला वो बच्चा, जिसकी मां चिंतित रहती थी कि ये शौक पढ़ाई में बाधा ना बन जाए, आखिरकार देश का गौरव बन गया।
1: जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर भूखे पेट घूमने वाला वो युवक, जिसने कभी हार नहीं मानी, आजाद भारत की आवाज बन गया। वो कलाकार जिसने अपने कॉमन मैन के जरिए करोड़ों भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। शंकर पिल्लई केवल एक कार्टूनिस्ट नहीं थे, वे एक दूरदर्शी, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान थे, जो अपने देश और उसके लोगों से बेइंतहा प्यार करते थे।
0: उनका जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखो, मेहनत करो, अपने प्रतिभा को समाज की सेवा में लगाओ और कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करो। आज भी जब हम कॉमन मैन को देखते हैं, हमें शंकर की याद आती है। वो महान कलाकार जिसने अपनी कला से लाखों दिलों को छुआ और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। कला जीवन का दर्पण है और कलाकार समाज का प्रहरी। के शंकर पिल्लई। श्रोताओं, तो आज हमने प्रस्तुत कार्यक्रम भारत विभूति में चर्चा की के शंकर पिल्लई जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखक अखिलेश कुमार वर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा।
1: मैं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती।
0: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।
3: भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हमने कलाकार के शंकर पिल्लई के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुना। इस कार्यक्रम को स्वर दिया था दीपक नेमा और डॉक्टर रानी रैकवार ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
1: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद। इस कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी बाबू वीर कुंवर के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।
1: गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक नई कहानी, इतिहास के एक नए पन्ने की एक नई शुरुआत लेकर मैं तारीख
1: और मैं इतिहास आज फिर से आजाद हिंद के एक नए अध्याय को आपके सामने ला रहे हैं।
0: श्रोताओं, आज हम आपको 1857 की क्रांति के उस नायक से रूबरू करने जा रहे हैं जिनकी ख्याति उस समय तात्या टोपे से कम नहीं थी। इस नायक का नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान सिपाहियों में से एक थे। 80 वर्ष की आयु में सन 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कुंवर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लिया और बहुत से युद्धों में विजय हासिल की। इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में शाही परिवार में सन 1777 में हुआ था।
1: दोस्तों, 1857 का सिपाही विद्रोह महज विद्रोह भर या साधारण घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत थी। मेरठ के बैरकपुर की छावनी में भारतीय सिपाहियों ने क्रांति का जो बिगुल बजाया, उसकी गूंज बिहार के आरा तक भी पहुंची और वहां के बाबू कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। 25 जुलाई को दानापुर में क्रांति का बिगुल बजाकर सिपाही 26 जुलाई को सोन नदी पार कर 27 जुलाई 1857 को आरा पहुंचे। यहां बाबू कुंवर सिंह उनके नेता बने। यही नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कुंवर सिंह जनक्रांति के नेता भी बने। हिंदी भाषी जनता ने उन्हें तेगवा बहादुर की उपाधि से नवाजा, तो वहीं अंग्रेजों ने हीरो ऑफ भोजपुर कहा।
0: तो इतिहास क्यों ना कहानी को उसके आधार से शुरू किया जाए।
1: ठीक है श्रोताओं, कुंवर सिंह के पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो उदार और दानी व्यक्ति थे। अंग्रेजों की नजर में वो एक अच्छे जमींदार शासक थे, जो प्रजा से जोर जबरदस्ती लगान नहीं वसूलते थे। साहबजादा सिंह को 4 पुत्र हुए, कुंवर सिंह, दयाल सिंह, राजपति सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह सबसे बड़े थे और बचपन से ही पढ़ने लिखने से कतराते थे, लेकिन उनका मन खेलकूद, कुश्ती और तलवारबाजी में खूब लगता था।

0: कुंवर सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए बेहतर योद्धा के रूप में चर्चित होने लगे। इस बीच उनके पिता मुकदमे में फंसे और उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। बाबू कुंवर सिंह चापलूसों से दूर रहते थे, इसीलिए उनकी अपने पिता से बिल्कुल नहीं पटती थी। उनके पिता के दरबार में कई चापलूस थे जिन्हें हटाने के लिए कुंवर सिंह ने पिता को सलाह दी थी। जब चापलूसों को नहीं हटाया गया तो वे अलग रहने लगे और जितौरा में अपना आवाज बनाया।
1: वृद्धावस्था के कारण साहबजादा सिंह की मृत्यु 1883 में हो गई। पिता के निधन के बाद बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के स्वामी बने। बाबू कुंवर सिंह गद्दी पर बैठते ही जगदीशपुर के विकास में लग गए। उन्होंने अपने जमींदारी काल में काफी जनसेवा की। जितौरा में तालाब का निर्माण कराया तो वहीं मुसलमानों के लिए मस्जिद और हिंदुओं के लिए मंदिर का निर्माण एक साथ कर कुंवर सिंह ने सर्वधर्म संभाव का बेहतर उदाहरण उस दौर में पेश किया। कुंवर सिंह हिंदू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय थे। अंग्रेजों से भी अच्छी पटती थी। समय समय पर अंग्रेज अफसरों के साथ वे जितौरा के जंगलों में शिकार को जाते थे। अंग्रेज भी उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और आतिथ्य की प्रशंसा करते नहीं थकते थे।
0: कुंवर सिंह ने अपने जमींदारी काल में पैतृक संपत्ति की भी वृद्धि की, लेकिन अधिक खर्च और कुप्रबंधन के कारण जमींदारी की स्थिति दयनीय हो गई। उन पर ऋण भार बढ़ने लगा। वे अपना खर्च कम नहीं करते थे। महाजन और साहूकार उनका शोषण करने लगे। ऐसे में कुंवर सिंह पर 17 लाख ऋण हो गया। महाजनों के चंगुल से मुक्त होने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार को आवेदन दिया। इसी बीच 1857 तक ऋण बढ़कर 20 लाख तक हो गया था। वे चाहते थे कि सरकार इसकी व्यवस्था कर दे जिससे ऋण से मुक्ति मिले।
1: लेकिन तारीख स्थानीय महाजन नहीं चाहते थे कि कुंवर सिंह ऋण से मुक्त हों। वो उनको और फंसाना चाहते थे। कुंवर सिंह को कहीं से ऋण चुकाने के लिए कर्ज नहीं मिल रहा था और अंग्रेज सरकार भी उन्हें मदद नहीं कर रही थी। 25 जून 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने सरकार को आवेदन देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अभी मामला चल ही रहा था कि ठीक एक माह बाद 25 जुलाई को दानापुर छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह ने भी विद्रोह में भाग लिया।
0: 1845-46 में सोनपुर मेले के दौरान एक बैठक में क्रांतिकारियों के साथ उनकी भेंट हुई थी। कुंवर सिंह का संबंध नाना साहब के साथ था और वे कई बार उनसे मिल चुके थे। बहादुर शाह के नेतृत्व में हिंदू मुसलमानों द्वारा एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से निकालने की योजना बनी थी।
1: दानापुर के सैनिकों ने जब नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तब कमिश्नर ने कुंवर सिंह और डुमराव के जमींदार को समझाने के लिए बुलाया। कुंवर सिंह ने स्पष्ट कहा था कि शाहबाद के लोग मेरी बात मान सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह के सिपाही मेरी बात नहीं मानेंगे। इससे कमिश्नर खफा हो गया। कुंवर सिंह देश और बिहार की परिस्थितियों से अवगत थे। पीर अली की फांसी ने उन्हें बेचैन कर दिया था। इधर दिल्ली और मेरठ की घटना से बिहार के अंग्रेज अधिकारी चिंतित थे। दिल्ली पर विद्रोही सिपाहियों का अधिकार हो चुका था। सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर जो बिगुल बजाया, उसकी आवाज बिहार में भी स्पष्ट सुनाई पड़ी।

0: अंग्रेज कुंवर सिंह को गिरफ्तार करने की फिराक में लग गए। वहीं कुछ अंग्रेज अधिकारी इसके बाद के परिणामों से सशंकित थे कि कहीं इसका उल्टा असर ना हो। कमिश्नर टेलर पर पहुंची मजिस्ट्रेट की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने 2 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह के मित्र और रईस डिप्टी कलेक्टर मौलवी सैयद अजीमुद्दीन को बाबू साहब को पटना लाने के लिए भेजा। उस समय कुंवर सिंह जगदीशपुर में थे। कुंवर सिंह ने स्थिति को भांपते हुए अपनी अस्वस्थता जाहिर की और पटना नहीं गए।
1: इसके पूर्व पटना में मौलवियों की फांसी और टेलर के आतंकी कार्य को वे सुन चुके थे। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा हो गई और उन्होंने अपने आप को विद्रोह के लिए तैयार किया। दानापुर के सिपाहियों के विद्रोह को लेकर उन्होंने अपने भाई अमर सिंह और कई ख्याति प्राप्त लोगों के साथ विचार विमर्श कर हालात को जानने का प्रयास किया। सभी दानापुर के सिपाहियों का साथ देने के लिए तैयार थे और अधिकतर लोग कुंवर सिंह को सिपाहियों का नेता बनाना चाहते थे।
0: 29 मार्च 1857 को 34वीं पलटन के विद्रोह की जो आवाज मंगल पांडे की शहादत से उठी, उसका विद्रोही स्वर मेरठ और दिल्ली में सुनाई दिया। इसका प्रभाव दानापुर की छावनी पर भी पड़ा। क्रांतिकारियों की योजना 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने की थी। इसी बीच दिल्ली से खबर आई कि सिपाहियों ने वहां कब्जा जमा लिया है और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शासक बना दिया गया है। चारों ओर संघर्ष का शंखनाद हो गया था।
1: उधर टेलर पटना में लोगों को फांसी देकर आतंक मचा रहा था। कमिश्नर ने हालात देखते हुए सेना को पटना आने को कहा। इस बीच 24 जुलाई को 37 नंबर की यूरोपियन फौज दानापुर पहुंची। अगले दिन देशी फौज अंग्रेज अफसर और सैनिकों से भिड़ गई और मेजर जेम्स होम की हत्या कर दी। देशी सिपाही वर्दी उतार हथियार लेकर आगे बढ़े। सिपाही सोन नदी पार करना चाहते थे, वहीं सिपाहियों का पीछा करने के लिए अंग्रेजी सेना आ गई।
0: हालांकि 26 जुलाई को देशी सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने का काफी प्रयास किया। इधर हरे कृष्ण सिंह और रणदलन सिंह दानापुर जाकर सिपाहियों से बात कर उनको आरा में प्रवेश कराने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि नेतृत्व कुंवर सिंह करेंगे। हरे कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 27 जुलाई को वे सुबह आरा पहुंचे। उसी दिन बाबू कुंवर सिंह भी आरा आए। आरा स्थित बाबू बाजार के मकान पर सिपाही एकत्र हुए। बिहार की धरती पर कुंवर सिंह ने दानापुर के विद्रोही सैनिकों का साथ देकर क्रांति की धारा को तेज कर दिया था।

0: आरा पर कब्जे के बाद बाबू कुंवर सिंह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के करीब 5,000 क्रांतिकारी सिपाहियों के शौर्यमान नेता बन गए। कुंवर सिंह का प्रभाव इतना बढ़ गया कि खेत खलियानों में कुंवर सिंह पर गाने गाए जाने लगे। बिहार में जो विद्रोह हुआ उसका व्यापक प्रभाव पड़ा, इसमें जनता ने खुलकर भाग लिया। पूरे शाहबाद में विद्रोह का क्रांतिकारी तेवर अपना रूप ले चुका था। छोटे मोटे जमींदार और सभी राजपूत कुंवर सिंह के विद्रोह के साथ थे। आरा कब्जे के दौरान जेल को तोड़कर करीब 400 कैदियों को छुड़ा दिया गया था। बाद में सरकारी खजाने से 70,000 रुपए भी लूट लिए गए। इस लूट में अंग्रेजों के नजीर पहरेदारों ने भी साथ दिया।
1: सोन पार कर कुंवर सिंह से मिलने तक बागियों की संख्या 10,000 तक पहुंच चुकी थी, जो शाहबाद के लिए अनोखी बात थी। कुंवर सिंह ने ग्रैंड ट्रंक रोड पर कब्जा जमा लिया था। अंग्रेजों के पास जहां आधुनिक हथियार थे, वहीं कुंवर सिंह और उनके आदमियों के पास बहुत साधारण हथियार थे। ब्यायल कोठी की लड़ाई करीब एक सप्ताह तक चली थी। कहा जाता है कि पानी की कमी होने पर कोठी में तैनात सिख सिपाहियों ने 18 फीट जमीन खोदकर पानी की व्यवस्था की थी। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी। दानापुर से सेना भेजना आसान नहीं था। 27 जुलाई को 37 नंबर की गोरी सेना भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन नदी में पानी कम होने से जहाज रुक गया। बाबू कुंवर सिंह की सेना द्वारा आरा की घेराबंदी और कोठी में घिरे अंग्रेजों की रक्षा का प्रश्न सरकार को परेशान कर रहा था।
0: हालांकि उनकी रक्षा के लिए 500 यूरोपियन सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी गई, जिसका नेतृत्व कैप्टन डनवर ने किया। बाबू कुंवर सिंह के सैनिकों से डनवर की फौज का मुकाबला आरा से 3 मील दूर पर हुआ। रात का फायदा उठाकर काली पोशाक में कुंवर सिंह की सेना ने सफेद पोशाक पहने अंग्रेजों को चांदनी रात में पहचान कर हमला किया। सैनिकों को मरते देख अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। कई अंग्रेज सिपाही लापता हो गए। इस युद्ध में डनवर मारा गया। जो बच गए थे किसी तरह जान बचाकर भागे। ये कुंवर सिंह की अपूर्व विजय थी। दानापुर से सैनिक भेजे नहीं जा सकते थे, क्योंकि कुंवर सिंह के समर्थक सैनिकों की संख्या 10,000 तक हो गई थी। आरा पर कुंवर सिंह का पूर्ण अधिकार हो गया था। इस विजय के बाद कुंवर सिंह को लोगों ने तेगवा बहादुर की उपाधि से नवाजा। बाबू कुंवर सिंह ने अपना राज्य हरे कृष्ण के सहयोग से स्थापित किया। कुंवर सिंह ने बेहतर शासन के लिए कई व्यवस्थाएं की।
1: डनवर की पराजय और आरा में कुंवर सिंह के कार्यों से अंग्रेजों में डर पैदा हो गया था। इस बीच मेजर आयर ने आरा की ओर कूच किया। 2 अगस्त को कुंवर सिंह के सैनिकों के साथ उनका मुकाबला हुआ। अंग्रेजों के पास तोपें थी। कुंवर सिंह के सैनिक पीछे हटे, आयर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर बीबीगंज के पास एक नदी मिली, जहां भीषण संग्राम हुआ। कुंवर सिंह ने पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों पर आक्रमण किया। इस हमले से आयर घबरा गया। घंटों भयंकर संघर्ष जारी रहा। 3 अगस्त 1857 को आयर आरा पहुंचा। इसे गोरों को राहत मिली। आयर ने आरा पहुंचकर 2 दिन के भीतर सभी के हथियार जमा कर लिए और कोर्ट मार्शल कराकर संदिग्ध लोगों को फांसी पर लटका दिया।
0: 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के नजदीक गंगा नदी पार करते समय बाबू वीर कुंवर सिंह को अंग्रेजों की गोली लग गई। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ माँ गंगा को अंतिम दान कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण 24 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई।
1: कुंवर सिंह जब तक जीवित रहे, इस वीर ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और मरते समय तक जगदीशपुर को आजाद रखा। बाबू वीर कुंवर सिंह की याद और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अमूल्य भूमिका के लिए 23 अप्रैल 1966 में भारत सरकार ने 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया। बाबू कुंवर सिंह कहा करते थे, 100 दिन भेड़ की तरह जीने से 2 दिन शेर की तरह जीना ज्यादा अच्छा है, और वो अपनी पूरी जिंदगी उसी वचन के आधार पर जिए।

0: मुकाबला फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र
1: ,90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरसागर। इस कार्यक्रम में आज हम डॉक्टर नीना श्रीवास्तव का शास्त्रीय गायन सुनेंगे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: ये प्रस्तुति उन्होंने दी भारत भवन में आयोजित कजरी झूला गायन महोत्सव में। ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
1: अब एक कजरी में जो ठुमरी नुमा कजरी है वो प्रस्तुत कर रही हूँ। ठुमरी कजरी कई तरह की होती है। मिर्जापुरी कजरी थोड़ी चलत की कजरी होती है, बनारसी में फक्कड़पना होता है, और ये बनारस की हमारी गुरु हैं सरिता देवी, उनकी शिष्या हैं सुचरिता दास गुप्ता, उन्होंने बताई है, तो वो सुनाती हूँ। मिश्र पीलू।

हिंडोला है वो गाऊंगी, और फिर बनारसी का एक थोड़ा सा 3 मिनट का झूला गा के अपनी प्रस्तुति समाप्त करूंगी।

0: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे डॉक्टर नीना श्रीवास्तव का गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीना श्रीवास्तव का शास्त्रीय गायन। इसके साथ ही हमारा आज का सुर सागर कार्यक्रम संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन के मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक।
2: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद भारत यात्रा के दौरान हिमालय, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान होकर गुजरात पहुंचे। वहां उन्हें कई तरह के अनुभव हुए। गुजरात में वे कई जगह गए। लिमड़ी में कुछ दिन बिताकर स्वामी जी ने वहां से जूनागढ़ की यात्रा की। ठाकुर साहब यानी लिमड़ी के महाराजा ने उन्हें विभिन्न स्थानों के अपने मित्रों के नाम परिचय पत्र लिख कर दिया। इन पत्रों के सहारे उन्होंने जूनागढ़ के मार्ग में भावनगर और सीहोर को देख लिया। जूनागढ़ आकर वे उस राज्य के दीवान श्रीयुत हरिदास बिहारीदास देसाई के घर ठहरे।
1: स्वामी जी के वार्तालाप एवं व्यवहार से दीवान जी इतना मोहित हो गए थे कि वे नित्य तीसरे पहर राज्य के उच्च पदाधिकारियों के साथ स्वामी जी के पास बैठकर देर रात तक धर्म चर्चा किया करते। स्वामी जी भी इनके प्रति विशेष श्रद्धावान थे और दोनों में इस प्रकार जो मित्रता स्थापित हुई थी वो आजीवन बनी रही। अमेरिका से भी स्वामी जी उन्हें नियमित रूप से अनेक तथ्यपूर्ण पत्र लिखा करते थे। जूनागढ़ में इन सारी विचार गोष्ठियों में बातचीत के क्रम में धर्म के साथ अनेक सांस्कृतिक विषय में बोलते थे।
0: राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत ज्वलंत भाषा में वे इतिहास द्वारा स्वीकृत तथ्यों के सहारे प्रमाणित करने लगे कि भारतीय भावधारा ने किस प्रकार पश्चिमी जगत में फैलकर उसके धर्म को रूपांतरित किया है। मध्य और पश्चिम एशिया ही इस आदान प्रदान का मुख्य क्षेत्र था। उन्होंने दिखा दिया कि सनातन धर्म कितना प्राचीन, कितना उदार एवं कितना शक्तिशाली था। कितनी ही विभिन्न सभ्यताओं ने इस भावधारा का अनुसरण कर अपना अस्तित्व प्राप्त किया है।
1: दीवान के ऑफिस के मैनेजर श्रीयुत सीएच पंड्या ने उस समय की बातों का स्मरण कर लिखा था,
2: जूनागढ़ में हम सभी स्वामी जी के निश्चल भाव, आडंबर शून्यता, विभिन्न कलाओं और विज्ञानों के गहन ज्ञान, उदार विचार, धर्म प्राणता, मर्म स्पर्शी वाक कला और विलक्षण आकर्षण शक्ति से मुग्ध हो गए थे। इन सब गुणों के अतिरिक्त उनकी संगीत में असाधारण क्षमता तथा भारतीय कला की समस्त विधाओं में पारदर्शिता थी। अरे वे तो पाक कला में भी कुशल थे और बहुत बढ़िया रसगुल्ले बनाते थे। हम सभी उनके अनुरागी हो गए थे।
0: वस्तुतः जूनागढ़ में उन दिनों स्वामी जी के व्यक्तित्व का एक ऐसा अपूर्व विकास हुआ था जो लगता है कि आदर्श की दृष्टि से प्रायः संपूर्ण था। निश्चय ही उनका विराट व्यक्तित्व इसकी अपेक्षा भी विशाल और वैचित्र्यमय था। फिर भी हमें लगता है कि जूनागढ़ में उनकी असाधारण प्रतिभा कारगर ढंग से पूर्ण विकास की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी। वराहनगर में उन्हें अपने अध्ययन आदि में लीन एवं तपस्वी मार्गदर्शक के रूप में देखा था। हिमालय में उन्हें हमने सत्य दृष्टा ऋषि के रूप में देखा है। अलवर में उनका गुरुभाव प्रस्फुटित हुआ था। खेतड़ी में वे धर्म जीवन के साथ पाश्चात्य विज्ञान का समन्वय करने में तत्पर दिखाई पड़ते हैं। जूनागढ़ में वे ये सब तो हैं ही, इनके अतिरिक्त उन्हें हम भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अग्रदूत के रूप में पाते हैं। पूर्व और पश्चिम के आदान प्रदान का इतिहास बताकर, संस्कृति के विजय अभियान की गाथा सुनाकर वे अब श्रोताओं को मोह लेते हैं। अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण के जीवन का वृतांत सुनाकर भारतीय आध्यात्म की चिर नवीनता और अमरता प्रमाणित करते हैं।
1: हम समझ सकते हैं कि अन्य स्थानों की भांति जूनागढ़ में भी उनके गुण ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और यहाँ पुरातन पंथी पंडित तथा नवीन पंथी शिक्षित समाज के सभी लोगों ने उनके उदार धर्म भाव, गहन देश प्रेम, अगाध पांडित्य, तेजोमय भाव प्रकाश इत्यादि से आकृष्ट होकर एक नई प्रेरणा पाई थी। किंतु सहज ही सफलता की प्राप्ति होने पर भी वे संतुष्ट होकर बैठे नहीं रह सके। सुदूर की पुकार उन्हें अन्यत्र ले चली।
0: सुविख्यात गिरनार पर्वत जूनागढ़ शहर से 2 मील दूर पर स्थित है। ये स्थान हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन सभी संप्रदायों की अति प्राचीन एवं पवित्र स्मृतियों और कीर्तियों अथवा खंडहरों को अपने सीने पर लिए सबके लिए आकर्षक हो गया है। यहाँ जगह जगह पर कई सुंदर मंदिर, मस्जिद और समाधि स्थल दिख पड़ते हैं, किंतु कीर्ति के स्मारक के रूप में खपड़ा खोदिया के नाम से अनेक गुफाएं अभी भी हैं। सांप्रदायिक उत्थान पतन के साथ साथ इन सब का विभिन्न युगों में विभिन्न संप्रदायों के मठों के रूप में निर्माण किया गया था। स्वामी जी ने इन सब का उत्सुकता पूर्वक दर्शन किया। वे पहाड़ की चोटी पर चढ़े, इस मार्ग के अगल बगल अनेक मंदिर मिलते हैं। जिस शिलाखंड पर सम्राट अशोक ने अपने 14 अनुशासन खुदवाए थे वो भी दिखाई देते हैं। भवनाथ के नाम से विख्यात शिव मंदिर में सदैव अनेक सन्यासियों का आगमन होता है। ऊपर जाकर रास्ता बहुत संकीर्ण हो गया है।
1: 1500 फुट ऊपर भैरव झंपा नामक एक जगह है। ऐसी जनश्रुति है कि वहाँ से कूदकर कई हजार फुट नीचे गिरकर अनेक लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए हैं। इसके और भी ऊपर 2370 फुट ऊपर किले की भांति दीवार से घिरे स्थान पर 16 जैन मंदिर मिलते हैं। यहाँ आकर स्वामी जी ने कुछ देर तक विश्राम किया और मंदिरों के अपूर्व शिल्प तथा तीर्थकरों की मणिरत्न विभूषित मूर्तियों का निरीक्षण किया। फिर और भी ऊपर 3300 फुट की ऊंचाई पर पर्वत शिखर पर चढ़कर उस क्षेत्र के दूर दूरांतर के मंदिर आदि से सुशोभित पवित्र स्थानों को देखकर उन्होंने तृप्ति पाई।
0: उस शिखर से उतरकर दूसरे शिखर पर चढ़कर उन्होंने अवधूत दत्तात्रेय के चरणों के चिन्ह का दर्शन किया। उस शिखर के नीचे बहुत दूर तक फैली हुई शैल श्रृंखला देखी जा सकती है। निकट ही चार अक्षर की विशिष्ट आकृति वाली या ब्रह्मा के कमंडल के आकार की एक झील भी पाई जाती है। सब कुछ विचार कर गिरनार पर्वत स्वामी जी को तपस्या के उपयुक्त मनोरम स्थान प्रतीत हुआ।
1: इसके लिए उन्होंने एक निर्जन गुफा भी खोज ली और कुछ दिन वहाँ ध्यान में व्यतीत होकर फिर जूनागढ़ मित्रों के पास आ गए। फिर शीघ्र ही उन लोगों से विदा ली और कच्छ राज्य के उच्च पदाधिकारियों के नाम जूनागढ़ के दीवान जी द्वारा दिए गए परिचय पत्र लेकर उन्होंने कच्छ राज्य की ओर प्रस्थान किया।
0: कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता रहता है कि स्वामी जी तो सर्वत्यागी सन्यासी थे, फिर उन्हें हमेशा धनवान शक्तिशाली और राजा महाराजाओं से दोस्ती करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब हमें अनेक परवर्ती काल के एक कथन से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा था,
3: जिसके हाथों में क्षमता ऐश्वर्य एवं हजारों व्यक्तियों पर शासन करने की शक्ति रही है, उन लोगों को यदि मैं अपने भाव में भावित कर सकूं तो मेरे जीवन का व्रत और अधिक सफल होगा। मात्र एक महाराजा को अपने मत में ला सकने पर मैं हजारों व्यक्तियों का उपकार कर सकता हूं।
1: भुज पहुंचकर स्वामी जी राजा के दीवान जी के अतिथि बने। दीवान जी उनके अगाध पांडित्य, मनोहर व्यक्तित्व एवं अत्यंत दुरूह विषयों को सामान्य लोगों के समझने योग्य भाषा में व्यक्त करने की क्षमता को देखकर उनकी ओर आकृष्ट हुए। बहुत दिनों बाद भी ये सारी बातें दीवान जी को याद थी। उन्होंने ये सारी बातें स्वामी जी के एक शिष्य को सुनाई थी। जूनागढ़ की ही भांति यहाँ भी दीवान जी के घर पर स्वामी जी को केंद्रित कर विचार गोष्ठी आयोजित होती। धर्म चर्चा के साथ ही शिल्प, कृषि, आर्थिक समस्या आदि की बातें भी आ जाती और स्वामी जी सबको समझा देते कि इन सब दिशाओं में भी भारत की उन्नति की आवश्यकता है तथा उसका उपाय भी भारत की क्षमता से परे नहीं है। गुणग्राही दीवान जी ने कच्छ महाराजा से स्वामी जी का परिचय करा दिया और महाराजा भी लंबे अरसे तक होने वाली चर्चाओं से विशेष आनंदित हुए।
0: कच्छ की राजधानी भुज से लौटकर स्वामी जी फिर जूनागढ़ पहुँचे। वही मानो उस समय उनके काठियावाड़ भ्रमण का मुख्य केंद्र था। इस बार जूनागढ़ लौटकर उन्होंने कुछ दिन वहीं व्यतीत किए और फिर वेरावल एवं सोमनाथ बंदरगाह यानी पाटन सोमनाथ की यात्रा की। पाटन सोमनाथ ही पुराणों में प्रसिद्ध प्रभास तीर्थ है। सोमनाथ का मंदिर अनेक बार विधर्मियों के द्वारा विध्वस्त एवं भक्तों के द्वारा पुनर्निर्मित हुआ है। एक समय मंदिर में प्रचुर धन था। कहा जाता है कि देवोत्तर संपत्ति के रूप में 10,000 गांव मंदिर के व्यय के लिए रख छोड़े गए थे और 300 गायक उस मंदिर से जुड़े थे। इसी प्रभास क्षेत्र में आंतरिक कलह के कारण यदुवंश का विनाश हो गया और इस दुर्भाग्य के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक व्याध के तीर से विद्ध होकर योग मार्ग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया।
1: सोमनाथ के मंदिर का दर्शन करने के उपरांत स्वामी जी ने सूर्य मंदिर और रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया एवं त्रिवेणी संगम में स्नान किया। प्रभास में कच्छ के महाराज से उनकी पुनः भेंट और वार्तालाप आदि होने पर स्वामी जी के अगाध पांडित्य और विविध विषयों में नवीन एवं सरल ज्ञान को देखकर महाराजा ने कहा, स्वामी जी एक साथ कई पुस्तकों को पढ़ने पर जिस प्रकार मस्तिष्क चकरा जाता है, उसी प्रकार आपसे वार्तालाप करने पर मेरा मस्तिष्क कूल किनारा खो बैठता है। इतनी प्रतिभा का प्रयोग कहाँ किस प्रकार होगा? कुछ एक अत्यंत आश्चर्यपूर्ण घटना के नहीं घटित होने तक आप रुकेंगे नहीं। महाराज ने उन्हें राज्य देखने के लिए निमंत्रित किया।
0: प्रभास से थोड़े ही दिनों के बाद वे जूनागढ़ लौट आए और वहाँ कुछ दिन विश्राम करने के बाद पोरबंदर पहुँचे। पुराण प्रसिद्ध इस सुदामापुरी में आकर उन्होंने सुदामा जी के मंदिर में दर्शन किया। उस राज्य के राजा उन दिनों अल्प वयस्क थे, इसलिए दीवान श्रीयुत शंकर पांडुरंग राज्य का संचालन करते थे। स्वामी जी अखंडानंद की स्मृति कथा के मतानुसार स्वामी जी यहाँ शंकर पांडुरंग के घर में अतिथि थे। वे पोरबंदर यानी सुदामापुरी के शासक थे। स्वामी जी कहा करते थे कि उनके समान वेद का पंडित उन्होंने भारत में नहीं देखा। अथर्ववेद का भाष्य सहज प्राप्त नहीं होने से उन्होंने स्वयं भाष्य प्रकाशित किया। स्वामी जी इनसे संस्कृत में वार्तालाप करने का अभ्यास कर थोड़े दिनों में ही परिपक्व हो गए। दीवान जी उन दिनों वेद का अनुवाद करने में लगे थे।
1: स्वामी जी के पांडित्य का परिचय पाकर इस कार्य में सहायता के बहाने ही विशेष अनुरोध कर उन्हें कुछ दिनों तक अपने घर में रखे रहे। वेद के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा और अनुराग के कारण स्वामी जी इस कार्य की ओर आकर्षित हुए। इसके अतिरिक्त वहाँ पाणिनी के पातंजल भाष्य को समाप्त करने का उन्होंने सुयोग भी पाया। शंकर पांडुरंग महोदय के परामर्श पर उन्होंने फारसी भाषा पर भी काफी अधिकार प्राप्त कर लिया। स्वामी जी की मेधा, उदारता और मौलिक विचारधारा का परिचय पाकर पांडुरंग जी ने कहा था,
4: मुझे लगता है कि आप इस देश में कुछ अधिक नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपके लिए पश्चिमी देशों में जाना उचित है। वहां के लोग आपके विचारों एवं व्यक्तित्व की वास्तविक मर्यादा समझ पाएंगे। सनातन धर्म का प्रचार कर निश्चय ही आप पाश्चात्य संस्कृति को आलोक प्रदान कर सकेंगे।
1: ये बातें सुनकर स्वामी जी प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वयं उनके मन में भी इस प्रकार की परिकल्पना प्रस्फुटित हो रही थी और इस अस्फुट इच्छा का आभास उन्होंने इसके पूर्व जूनागढ़ के पंड्य महोदय को भी दिया था।
0: इन दिनों वे अपने भीतर एक विचित्र तरह की विकलता का अनुभव करते। उन्हें प्रतीत होता कि श्री राम कृष्ण ने एक बार जो बात कही थी, नरेन के भीतर ऐसी शक्ति है जिससे वो संसार को उलट पलट कर रख दे सकता है, वो वस्तुतः सच है। उन्होंने भारत के जितने स्थानों का भ्रमण किया था, जितने राज दरबारों या पंडितों के समाज में अपने वक्तव्य आदि दिए थे, सर्वत्र ही लोगों को ऐसा अनुभव हुआ था कि वे महाशक्तिधर महाप्राण पुरुष स्वदेश के कल्याण के लिए किसी एक स्थान में कोई एक विशेष कार्य करने के लिए भगवान के द्वारा मनोनीत हुए हैं। आध्यात्मिक पुनरुत्थान की बात ही उन दिनों उनके चिंतन का प्रथम और प्रधान विषय थी।
1: उन्होंने कट्टर धर्मांधों की संकीर्णता और सुधारवादियों के भ्रम दोनों को ही देखा था और उन्होंने देखी थी साधारण जनों की ईर्ष्या परायणता, कलह विलगाव तथा लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्तता का अभाव, जिन सब ने पराधीन जाति के जीवन में प्रबल आकार धारण कर लिया था। भारत अपनी अंतर्निहित शक्ति के बूते पर तथा सनातन धर्म और आर्य संस्कृति के प्रभाव से अभूतपूर्व मान और ऐश्वर्य का अधिकारी हो सकता है, तथापि जो तथाकथित नेता और मुट्ठी भर भ्रांत समाज सुधारक हैं, वे अपने जीवन में अपने ही उपदेशों का प्रतिपालन करने से विमुख होकर व्यर्थ की बातों में दिन बिताते हैं।
0: भारत अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को भूल गया है, ये देखकर स्वामी जी के प्राण रो उठते थे। जो उन्हें चाहते और श्रद्धा करते, उन लोगों से वे साफ साफ कहते थे, इस अवस्था का परिवर्तन अत्यावश्यक है। राजाओं, महाराजाओं और विभिन्न राज्यों के शासन अधिकारियों को वे अपना ये सिद्धांत सुनाते और उनकी प्रतिभा का परिचय पाकर वे उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनते। परंतु उन्होंने देखा कि इस नवीन वाणी को रूप आकार प्रदान करने के लिए उस समय भी कोई अग्रसर नहीं हो रहा है। कहीं मानो एक अभाव रह गया है जिसके कारण आदर्श यथार्थ में परिणित नहीं हो पा रहा है। यही स्वामी जी के क्षोभ और चिंता का कारण था। इसके बाद मार्ग किधर है? स्वामी जी की चिंता इस समस्या के समाधान में ही लगी रही।
1: स्वामी जी जब पोरबंदर में थे तब एक मजेदार घटना घटी। स्वामी त्रिगुणातीत उस समय पैदल तीर्थ दर्शन करते करते पोरबंदर में आकर अन्य कई सहयात्रियों के साथ ठहरे थे। सहयात्री साधुओं की इच्छा थी कि वे लोग मरुतीर्थ हिंगलाज जाएंगे। वो स्थान काफी दूर था। पैदल रास्ता तय करना असंभव नहीं होने पर भी समय साक्षेप और अत्यंत कष्टमय मार्ग था। अतएव उन लोगों ने करांची तक जहाज से जाकर वहां से ऊंट पर चढ़कर हिंगलाज जाना ही उचित समझा। किंतु इतने पैसे कहाँ थे? सभी चिंता मग्न थे। तभी एक साधु ने कहा, दीवान जी के मकान में एक विद्वान परमहंस है। वे अंग्रेजी बोलते हैं और पंडितों के समाज में विशेष समादृत हैं। ये महात्मा संभवतः हम लोगों के लिए दीवान जी से कहकर रुपयों की व्यवस्था कर दे सकते हैं।
0: तदनुसार छोटी सी साधु मंडली के आगे आगे स्वामी त्रिगुणातीत राजभवन की ओर चले। उस समय स्वामी जी महल के ऊपरी बरामदे में टहल रहे थे। इसी से दूर से ही उन्होंने साधु मंडली को देख लिया। इस दल में अपने गुरु भाई त्रिगुणातीत को देखकर विस्मित होने पर भी वे अत्यंत उदासीनता पूर्वक नीचे उतरकर अपने कमरे में बैठ साधुओं के आने की प्रतीक्षा करने लगे। द्वार पर नियुक्त पहरेदारों ने पहले उन लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया। अंत में परमहंस का दर्शन करने जाएंगे आदि कहकर त्रिगुणातीत ने एक अन्य साधु के साथ जाने की अनुमति पाई। स्वामी जी के कमरे में आते ही गुरु भ्राता को अचानक इस अप्रत्याशित स्थान पर देखकर वे अत्यंत आनंदित और आश्चर्यचकित हुए। इधर स्वामी जी ने दृढ़ स्वरों में कहा, इस प्रकार दूसरे लोग उनका पीछा करें इसे वे पसंद नहीं करते। त्रिगुणातीत ने तब उन्हें बता दिया कि स्वामी जी के पोरबंदर में रहने की बात वे रंच मात्र भी नहीं जानते थे। हिंगलाज के दर्शनार्थी संगी साधुओं के अनुरोध पर अर्थ भिक्षा करने आकर दैव संयोग से भेंट हो गई है। इसके बाद स्वामी जी ने उन लोगों की याचना पूरी करने की व्यवस्था करने के बाद त्रिगुणातीत को सावधान कर दिया कि वे फिर उनके पीछे न चले।
1: स्वामी जी से विदा लेकर त्रिगुणातीत अपने निवास स्थान हटकेश्वर मंदिर लौट आए। दूसरे दिन तड़के भोर में वे अन्यत्र जाने के लिए गठरी पोटली बांध ही रहे थे। उसी समय वहां आकर स्वामी जी उन्हें अपने निवास स्थान ले गए। त्रिगुणातीत की गठरी वे स्वयं ही ढोकर ले चले। वहां उन्हें दो दिन रखकर विदा करते समय कहा, मैं यहां रह रहा हूं, ये समाचार मठ में खासकर अखंडानंद को किसी भी स्थिति में नहीं बताना।
0: पोरबंदर में कुछ दिन और बिताकर अंत में स्वामी जी ने मित्रों से विदा ली और भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि द्वारका चले आए। प्राचीन कीर्तियों में से कुछ भी वर्तमान द्वारका में नहीं पाया जाता। जहां भगवान श्री कृष्ण का अट्टालिकाओं से सजा वो पौराणिक नगर था, वो आज अतल समुद्र के गर्भ में निमज्जित है।
1: वे श्री शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित शारदा पीठ की ओर चिंताकुल हृदय से धीरे धीरे चल पड़े। मठ के महंत ने उनका सादर स्वागत किया। यादवों द्वारा अवस्थित उस प्राचीन महानगरी के अवशिष्ट एक हिस्से में स्थित उस मठ के एक नीरव कमरे में बैठकर स्वामी जी एकांत मन से भावी भारत के पुनरुत्थान के विषय में सोचने लगे और अपने मानस नेत्रों से भारत के समुज्वल दैदीप्यमान भविष्य का चित्र देखते रहे। द्वारका और भेंट द्वारका के दर्शन के उपरांत वे कच्छ के महाराजा के आमंत्रण अनुसार फिर उस राज्य को देख आए।
0: स्वामी जी के बार बार मना करने पर भी अखंडानंद को उनसे मिलने की इच्छा हुई। वे स्वामी जी की तलाश में निकल पड़े। स्वामी जी की तलाश में विभिन्न जगहों पर घूमने के बाद स्वामी अखंडानंद को बंधवा आने पर ज्ञात हुआ कि स्वामी जी वहां थे अवश्य, किंतु अभी वे जूनागढ़ में हैं। फिर जूनागढ़ पहुंचने पर उन्हें समाचार मिला कि स्वामी जी वहां से पोरबंदर होते हुए द्वारका धाम गए हैं। द्वारका से वे बेट द्वारका जाएंगे। उसी मार्ग से बेट द्वारका आने पर अखंडानंद ने सुना कि स्वामी जी ने पहले ही वेरावल में कच्छ भुज के राजा का आमंत्रण पाया था, उसी के अनुसार वे मांडवी चले गए हैं। मांडवी से स्वामी जी राजकीय गाड़ी से राजा के ही लोगों के साथ नारायण सरोवर गए और वहां से वे आशापुरी चले गए।
1: उन्हें पकड़ पाने के लिए स्वामी अखंडानंद ने बहुत दिनों तक उनका पीछा किया, फिर भी वे सफल नहीं हुए। मांडवी आकर उन्होंने तय किया कि चाहे जैसे भी हो उनके पास पहुंचना ही होगा। अतएव हर प्रकार का कष्ट झेलते हुए वे स्वामी जी की खोज में शीघ्र ही आशापुरी आ गए। परंतु यहाँ आकर उन्हें ज्ञात हुआ कि स्वामी जी उनके आने से पहले ही 100 मील दूर स्थित मांडवी की ओर चले गए हैं। और अंत में मांडवी पहुँचने पर ये खबर पाई कि स्वामी जी एक भाटिया सेठ के घर में ठहरे हैं। तुरंत वहाँ जाकर उन्होंने स्वामी जी से भेंट की। स्वामी जी ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हुए कहा,
5: क्यों रे गंगा, तू यहाँ कैसे आ गया?
0: अखंडानंद ने अब तक जयपुर से मांडवी तक स्वामी जी के पीछे कैसे धावा किया सब कह सुनाया। सुनकर स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों व्यक्तियों ने एक साथ इसी मकान में कुछ दिन व्यतीत किए। इसी से कुछ दिनों बाद जब स्वामी जी ने उनसे खुले शब्दों में कहा,
5: ओरे गंगा, मैंने अपना एक जीवन लक्ष्य निर्धारित किया है। तुम में से किसी के साथ रहने पर उसे कार्य में परिणित नहीं कर सकूंगा। देख, मैं दुश्चरित्र हो गया हूँ, मेरा साथ छोड़ दो।
2: यदि तुम दुश्चरित्र हो गए हो तो इससे क्या, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे चरित्र से उसका क्या संबंध। किंतु तुम्हारे कार्य में विघ्न बाधा उपस्थित नहीं करूंगा भाई। तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो गया था और वो लालसा भी पूरी हो गई, अब तुम अकेले जा सकते हो।
1: दूसरे दिन ही स्वामी जी मांडवी छोड़कर भुज चले गए। इधर अखंडानंद अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए एक दिन और मांडवी में रहकर वहां गए। इससे स्वामी जी को ये विश्वास हो गया कि अखंडानंद उनकी स्वाधीनता में बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे। इसी से दोनों व्यक्ति भुज में दो दिन एक साथ बिताकर मांडवी लौटे और वहां एक पखवाड़े तक साथ साथ रहे। यथा समय स्वामी जी ने पोरबंदर के लिए प्रस्थान किया। इसके 5-7 दिनों बाद ही अखंडानंद भी वहां उनसे मिले। यहां भी कई दिन एक साथ परमानंद में व्यतीत हुए। इसी के बाद स्वामी अकेले जूनागढ़ चले गए।
0: कच्छ राज्य में परिभ्रमण करने के समय की एक कहानी स्वामी जी ने कही थी। एक समय वे मरुभूमि होकर जा रहे थे। सूर्यदेव आग बरसा रहे हैं और प्यास के मारे कंठ सूख रखा है। फिर कहीं भी जल या गांव घर का चिन्ह मात्र नहीं दिख रहा है। इस तरह कष्ट से चलते चलते अचानक उन्होंने देखा कि आगे पेड़ झाड़ियां और फूस से आच्छादित एक सुंदर गांव है और उस गांव में निर्मल जल से भरा हुआ एक सरोवर है। 2-4 डग जाने पर ही प्यास बुझ जाएगी, इसी आशा से वे जितना ही आगे बढ़ने लगे वो मरुवाटिका भी जैसे उतनी ही दूर हटने लगी। किसी तरह भी दूरी कम नहीं हो पा रही थी। तभी उन्हें वेदांत का सिद्धांत स्मरण हो आया, जीवन इसी प्रकार की पहेली के पीछे चलने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अपूर्व माया का कैसा इंद्रजाल है। इसके बाद भी उनकी आंखों के आगे बार बार निहारिका का आगमन होता रहा, परंतु वे फिर विभ्रांत नहीं हुए। उस समय उनके ज्ञान नेत्र का उन्मीलन हो गया था, वे सत्य का साक्षात्कार कर चुके थे।
1: जूनागढ़ के बाद स्वामी जी का परवर्ती दर्शनीय स्थान था पालीटाना। यही जैनों का पवित्र स्थान शत्रुंजय पर्वत स्थित है। पर्वत पर हनुमान जी का एक मंदिर भी विराजमान है। इसके अलावा हेंगर नामक एक मुसलमान साधु का समाधि स्थल भी यही है। शत्रुंजय पर्वत से इन सभी आकर्षक दृश्यों का अवलोकन कर पुरातन भारत की आश्चर्यकारक गरिमा का स्मरण कर स्वामी जी का हृदय एक साथ ही आनंद और गहन चिंता से भर उठा। इस लुप्त गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का क्या उपाय है।
0: चिंता मग्न हृदय से पर्वत शिखर से उतरकर वे पालीटाना के मंदिर आदि का दर्शन करते करते अपने गंतव्य पथ पर चढ़ चले और कभी पैदल कभी ट्रेन से चलकर नाडियाड स्टेशन पहुंचे। नाडियाड से वे बड़ौदा आए। वहां गायकवाड़ राज्य के दीवान श्रीयुत मणिभाई के यहाँ आतिथ्य ग्रहण किया। बड़ौदा से स्वामी जी ने 26 अप्रैल को श्रीयुत हरिदास बिहारी दास को लिखा था,
5: आपके मित्र मणिभाई ने मेरे लिए सभी सुविधाएं प्रदान की हैं। जहां तक उनके सत्संग का प्रश्न है, केवल मैं उनसे 2 बार मिला, एक बार 1 मिनट के लिए और दूसरी बार ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के लिए, जब उन्होंने यहां की शिक्षा पद्धति पर बातचीत की। पुस्तकालय और रवि वर्मा के चित्र तो खैर देख ही लिए, यहां केवल यही दर्शनीय वस्तुएं हैं। अतः आज शाम को मैं बंबई जा रहा हूं।
0: बड़ौदा छोड़ने के बाद स्वामी जी मुंबई और पुणे होकर गर्मी के दिनों में महाबलेश्वर चले गए। उनका गुजरात भ्रमण समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। अब हमें आगे दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे प्रत्येक बुधवार और रविवार इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 PM कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ, जिसमें आप वैदिक ऋचाओं का पाठ सुनते हैं। 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। 6:00 महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम। आज हम सुनेंगे स्वाधीनता संग्राम सेनानी वामन राव बलिराम लाखे के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम। 6:30 पर इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम का विषय होगा मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला। 7:00 योग संवाद विषय में योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय होगा पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद का खंडन। जानकारी देंगे जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी। 7:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम में आज हम कलाकार के शंकर पिल्लई के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। और 8:30 पर आज़ाद हिंद कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। रात्रि के 9:00 सोर सागर कार्यक्रम में सुने डॉक्टर नीना श्रीवास्तव का शास्त्रीय गायन। और 9:30 पर स्वामी विवेकानंद के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आज़ाद हिंद है। 12:12 अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। 5:00 हमारी सांध्यकालीन सेवा आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत और आंचलिक संगीत का आनंद लेते रहें।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायन फूल सिंह मांडरे और साथी कलाकारों का।
1: इजाजत चाहता हूं, जैसा कि सबसे पहले कोई शुभ कार्य होता है, गणेश जी को मनाते हैं, तो एक दोहा इसके बाद गीत प्रारंभ करूंगा।

एक होली पेश कर रहा हूं कि राग रंग में डूब कर देहातों में अनरन बोला जाता है, अनरे पे जाते हैं।

श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं पंजाबी गायन निषाद बानो और उनके साथी कलाकारों का।

थैंक यू सो मच, इतना प्यार सत्कार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो लीजिए आपकी इन्हीं तालियों के बीच पंजाब की फोक आवाज की मलिका, पंजाबी देसी क्वीन निशा बानो।

हाँ जी, सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पंजाब के फोक रंग आपको सुनाएंगे, होप आप सब लोग लाइक करेंगे, और उसमें से कुछ गाने मेरे, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। रहिंदा चढ़दी कला जी नहीं खार रखदा, थले रखी

तो मैं इस तरह गाँवी रहूँगी। उम्मीद करती हूँ तुम सारे जने लाइक करोगे। अगली गल जी सूहे वे जीरे वाले पंजाब का एक फोक रंग सूहे वे जीरे वाले

अगे की कहती है एक बड़ी कॉमन जी गल होंगी अपने पंजाबियों की जो कोई घरे आता तो उन्होंने शगन देता होंगे 100-150-500 जिनी अपनी गुंजाइश होंगी है तो जे किसी कुड़ी का भरा या कोई रिश्तेदार घरे आ जाए तो वो सासू शगन ना दे इस तो माड़ा काम तो कोई हो ही नहीं सकता की कहती है

0: जुग जुग जीवे माना माण पंजाबी बोली दा, जुग जुग जीवे माना माण पंजाबी बोली दा, माण पंजाबी बोली दा।
1: हेलो
2: पंजाबियां दा माण गुरदास मान, मान साहब दी शान च लिखना जां गाउणा मेरे वर्गे नाचीज बंदे लई बड़ी औखी गल है, पर फिर भी अपनी तुश बुद्धि अनुसार तुहाडे छोटे वीर गिल हरदीप ने कोशिश की है। उम्मीद है माण बख्शोंगे।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम अतुल्य भारत।
2: अतुल्य भारत।
1: और आज अतुल्य भारत में हम बात कर रहे हैं भारत के दर्शनीय स्थल कोलकाता के बारे में।
3: जी हाँ श्रोताओं, कोलकाता है भी बहुत बड़ा और यहाँ की संस्कृति भी बहुत बड़ी है।
1: दुनिया में कई देश तो इससे भी बहुत छोटे हैं, तो चलिए इसी चर्चा को आज हम इस एपिसोड में बात रिपीट तो चलिए इसी चर्चा को इस एपिसोड में हम आगे बढ़ाते हैं।
3: श्रोताओं, चाहे खान पान हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे नाटक हो या संगीत, हर क्षेत्र में यह शहर अपनी खास पहचान रखता है। तो चलिए शुरुआत खान पान से ही करते हैं। बंगाली का नाम आए और माछी भात छूट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बंगाल में कहावत भी है कि बंगाली आदमी दो ही चीजों से प्रेम करता है, एक तो मछली और दूसरा हास परिहास से। एक खाए बिना नहीं रह सकता और दूसरा चुलबुलाए बिना नहीं रह सकता।
1: श्रोताओं, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। यानी ये शरीर पांच तत्वों पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु से मिलकर बना है।
3: लेकिन श्रोताओं, अगर पूछा जाए कि बंगाली लोगों को क्या प्रिय है तो उत्तर यही मिलता है कि बंगाली लोगों को तो केवल दो ही चीज बहुत प्रिय है, माछी और भात।
1: तो श्रोताओं, मछली बंगाल की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। बंगालियों के लिए ये कोई मांसाहार नहीं बल्कि जल सिंघाड़ा है, बिल्कुल शाकाहारी व्यंजन, हर मौके पर जरूरी चीज। शादी ब्याह हो तो दूल्हा और दुल्हन के घर मछली भेजी जाएगी, मंदिर में पूजा हो तो मछली चढ़ाई जाएगी। यहाँ तक कहते हैं कि जब दुल्हन शादी के बाद पहली बार अपने पति के घर आती है तो वो अपने पति के साथ हाथ में मछली लिए घर में प्रवेश करती है।
3: हाँ श्रोता, बंगाली के लिए तो ये बात मशहूर है कि अगर उनकी जेब परमिशन दे तो वह हर दिन मछली खाए। हमारे यहाँ जैसे कहीं कोई जाते हैं तो मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं, वैसे बंगालियों में मछली लेकर जाने का रिवाज है। और औरतें जब ससुराल से मायके आती हैं या मायके से ससुराल जाती हैं तो मछली अपने साथ लेकर के चलती हैं।
1: यहाँ तक कि अगर किसी का श्राद्ध करना हो तो उसे भी मछली ही चढ़ाई जाती है। यानी मरने के बाद भी एक बंगाली मछली खाकर ही तृप्त होता है। लेकिन अगर कहीं शोक मनाना हो तो बंगाली लोग अन्य चीजों के साथ मछली का भी परित्याग करते हैं। दूसरे शब्दों में मछली न खाकर वे जताते हैं कि हम आपके दुख से दुखी हैं।
3: श्रोताओं, अगर देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाना हो तो बंगाली लोग हिलसा मछली को ज्यादा शुभ मानते हैं, इसे पूजा में चढ़ाते हैं और भक्त लोग प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। कुछ जगहों पर तो यह भी रिवाज है कि ऐसे मौकों पर हिलसा मछली की एक जोड़ी घर में लाई जाए तो उस वक्त औरतें घर के भीतर उलू उलू की आवाज निकालती हैं।
1: बहरहाल श्रोताओं, आपको बता दें कि हिलसा मछली बंगालियों की सबसे पसंदीदा मछली है और ये बांग्लादेश में भी खूब लोकप्रिय है। बंगाली लोग इसे लिश कहते हैं और इसकी खासियत ये होती है कि ये होती तो समुद्र की मछली है पर अपने अंडे नदियों में देती है।
3: अब चर्चा बंगाली रसगुल्ले की जाए। आहा, आज भारत के हर शहर में आपको बंगाली रसगुल्लों की दुकान जरूर मिलेगी। जब तक रसगुल्ले के साथ बंगाली शब्द न जुड़ा हो तब तक तो खरीदार इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। कहते हैं बिल्कुल रुई का फोहा जैसा होता है यह, आप इसे निचोड़ दे तो इससे पूरा शीरा निकल जाएगा, बिल्कुल मुलायम। नाम सुनकर ही आहा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है और पचने में बिल्कुल हल्का है ये।
1: श्रोताओं, आप जरूर सोचते होंगे कि इसे सबसे पहले बंगाल में बनाया गया होगा, तभी तो इसका नाम बंगाली रसगुल्ला है।
3: भाई हम तो ऐसा ही सोचते हैं।
1: तो फिर आप गलत सोचते हैं।
3: अच्छा,
1: सच्चाई इससे थोड़ी हटकर है।
3: वो क्या है?
1: ये हम आपको बताते हैं। आपको रसगुल्ले की कहानी सुनाते हैं रेडियो आजाद हिंद की जुबानी।
3: चलिए इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आम तौर पर माना जाता है कि रसगुल्ले के जन्मदाता कोलकाता के एक कन्फेक्शनर नोबिन दास थे। बंगाली लोग उन्हें फादर ऑफ रसगुल्ला भी कहा करते थे, रसगुल्ला नोबिन दास। लेकिन सच्चाई यह है कि नोबिन दास द्वारा कोलकाते में रसगुल्ला इंट्रोड्यूस करने से पहले यह उड़ीसा के पुरी व भुवनेश्वर में एक ट्रेडिशनल मिठाई के रूप में लोकप्रिय हो चुका था।
1: और इसके बाद रसगुल्ले की रेसिपी उड़ीसा के ब्राह्मण रसोइयों के माध्यम से बंगाल पहुंची। इन रसोइयों को अमीर बंगालियों ने अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। ये 1868 की बात है। नोबिन दास ने पाया कि उड़ीसा का रसगुल्ला बहुत जल्द ही खराब हो जाता है, तो इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उन्होंने इसकी रेसिपी में कुछ बदलाव किया। अब ये नया रसगुल्ला पुराने वाले से ज्यादा चलता था और ज्यादा स्पंजी भी था।
3: रसगुल्ले की लाइफ बढ़ जाने से नोबिन दास के लिए इसकी मार्केटिंग करना सरल हो गया, साथ ही स्पंजी होने के कारण इसके कदरदान भी बढ़ गए।
1: श्रोताओं, इस तरह पुरी और भुवनेश्वर का रसगुल्ला कोलकाता के रास्ते से पूरे भारत में फैला। आज ये न केवल हमारे देश बल्कि विदेशों में भी एक बहुत ही लोकप्रिय मिठाई है और इसकी कई सारी वैरायटीज भी मौजूद हैं। मसलन उड़ीसा का पहाला रसगुल्ला गर्मा गर्म परोसा जाता है, दूसरी ओर बंगाल का खीर मोहन बड़े साइज का होता है,
3: और इसी तरह रस मलाई, रस कदम, चम चम, मलाई चाप, खीर सागर वगैरह छेने से बनी दूसरी मिठाइयों का नाम आज हम सुनते हैं, वो सब रसगुल्ले से ही पैदा हुई हैं।
1: जब बात कोलकाता की चल रही है और बंगाली साड़ियों का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो चलिए बात करते हैं बंगाली साड़ियों की।
3: बिल्कुल।
1: वैसे तो साड़ी भारतीय स्त्रियों का एक परंपरागत परिधान है और इसका जिक्र पुराने से पुराने काल में भी मिलता है। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जमाने में भी भारत की महिलाएं साड़ी ही पहनती थीं। यहाँ तक कि आज से 5000 साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिलते हैं।
3: पूरी दुनिया की स्त्रियों के लिए भारत की यह साड़ी संस्कृति एक झिलमिलाते सपने की तरह है। आज से लगभग 2000 साल पहले उल्लेख मिलता है कि भारत की साड़ी पहनकर रोम की औरतें यहाँ की गलियों में इतराती फिरती थीं।
1: लेकिन साड़ी इतनी पुरानी होने पर भी नित नवीन है। ये ग्रामीण महिला की भी पसंद है, एक एयर होस्टेस की भी और एक राजकुमारी की भी। ये नारी की गरिमा को उभारती है। कहते हैं कि दुनिया का कोई भी परिधान स्त्री को वो गौरव, वो रुतबा, वो स्त्रीत्व और वो सौंदर्य नहीं दे पाता जो साड़ी देती है।
3: हाँ श्रोता, जहां तक सवाल बंगाली साड़ियों का है तो ये अपनी भरपूर लंबाई और एक खास तरीके से पहनने की स्टाइल के कारण ही अपनी अलग पहचान रखती है। एक व्यक्ति ने अपने ब्लॉग पर रीजंस दिए कि क्यों वह किसी बंगाली लड़की से शादी करना चाहता है, तो इन रीजंस में उसने यह भी बताया कि बंगाली लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और साड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ पहनती हैं।
1: बंगाल के बुनकर हैंडलूम पर बिल्कुल हल्की और ट्रांसपेरेंट तांत की साड़ियां बुनते हैं जो गर्म मौसम में भी आराम के साथ पहनी जा सकती हैं। क्योंकि बंगाल की खाड़ी के कारण बंगाल का क्लाइमेट गर्म और नम होता है, इसलिए कॉटन की बनी ये तांत साड़ियां यहाँ के माहौल में औरतों को बहुत सुकून देती हैं। इनके चौड़े बॉर्डर पर बेहतरीन सिल्क वर्क होता है और इनका पल्लू बेहद खूबसूरत होता है।
3: बंगाली साड़ियों की अगली खास वैरायटी है जन्मदानी साड़ी। हैंडलूम पर बुनी ये साड़ियां जन्मदानी इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इन पर एक खास तरह का थ्रेड वर्क होता है जिसे जामेद कहा जाता है। इन साड़ियों पर मोर बनाने का विशेष चलन है। जन्मदानी साड़ियां भी दो तरह की होती हैं, ढकाई जमदानी और गैर ढकाई जमदानी।
1: ढकाई जमदानी साड़ियां बांग्लादेश में बनती हैं। इन्हें बनाने के लिए यहाँ के बुनकर इजिप्शियन हाई क्लास कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। ये मलमल की तरह फाइन टेक्सचर वाली होती हैं, लेकिन काम बहुत होता है। इनका पल्लू बहुत ही ऑर्नामेंटल होता है और ये पार्टी ओकेजंस के लिए ही फिट मानी जाती हैं।
3: हाँ, और दूसरी ओर गैर ढकाई जमदानी साड़ियां ढकाई जमदानी साड़ियों की तुलना की तरह पार्टी अफेयर ना होकर के वर्किंग वुमेन की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली होती हैं।
1: श्रोताओं, बंगाली साड़ियों के इस क्रम में एक नाम और आता है और वो नाम है बालूचरी साड़ियाँ। सिल्क के धागों से हैंडलूम पर बुनी जाने वाली ये साड़ियाँ ज्यादातर मुर्शिदाबाद में बनती हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद जिले के बालूचर गांव में पहले पहल ये साड़ियाँ बुनी गई थी, इसलिए इन्हें बालूचरी साड़ियाँ कहते हैं। और ये इतनी नाजुक होती हैं कि एक साड़ी बनाने में एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय लग जाता है।
3: बालूचरी साड़ियों के पल्लू पर रामायण व महाभारत के सीन अंकित करने का चलन है। इनके चौड़े बॉर्डर वाले फीचर पल्लू पर दोहराए जाते हैं। इन साड़ियों को ज्यादातर जमींदार घराने की स्त्रियां ही पहनती हैं।
1: बंगाली साड़ियों में अगला नाम आता है कंठा साड़ियों का, और ये साड़ियां अपनी नाजुक गिलकारी के लिए जानी जाती हैं। ज्यादातर बंगाली ग्रामीण स्त्रियों द्वारा शौकिया तौर पर बनाई जाने वाली ये साड़ियां बहुत मेहनत और वक्त लेती हैं।
3: श्रोताओं, हम बंगाली साड़ियों का नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, मगर अफसाना खत्म नहीं हो पाएगा। चलिए कुछ दो चार नाम हम आपको और गिना करके इस साड़ी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बंगाल में गरज सिल्क साड़ियां भी बहुत रुतबा रखती हैं। इनकी खासियत है नेचुरल बैकग्राउंड पर प्लेन रेड बॉर्डर गरज साड़ियों में ही मिलते हैं। गरज साड़ियों से ही मिलती जुलती एक और बंगाल की साड़ी है, उसे कहते हैं कोरियल लाल पार। ये साड़ियाँ दुर्गा पूजा के अवसर पर पहनने के लिए खास तौर से बनाई जाती हैं।
1: मित्रों, जब बंगाली साड़ियों की बात चल ही रही है तो आपको बता दें कि हाल ही में आई फिल्म बर्फी में तेलुगु फिल्मों की हीरोइन इलियाना डिक्रूज ने एक बंगाली पत्नी का किरदार निभाया है और बंगाली साड़ियाँ ही पहनी है।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद,
1: और आज अतुल्य भारत में हम बात कर रहे हैं भारत के दर्शनीय स्थल कोलकाता के बारे में,
3: और अब हम बात करते हैं मलमल की।
1: श्रोताओं, आजादी से पहले ढाका बंगाल का ही एक हिस्सा था और भारत का ही एक शहर हुआ करता था। ढाका की मलमल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसके बारे में कहावत है कि ये इतना महीन होता है कि इसकी पूरी साड़ी आप एक अंगूठी से निकाल दें। अंग्रेज इस कपड़े को मसलिन कहा करते थे, और एक जमाने में यूरोप में इसकी इतनी भारी डिमांड थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने का एक कारण ये भी रहा।
3: यूरोप की औरतें भारतीय मलमल का ड्रेस पहनने में फख्र महसूस करती थीं। यहाँ तक कि उनकी फ्रांस की बहुत सी खूबसूरत रानी मैरी एंटवानेट भी मसलिन का ड्रेस पहनने के लिए ललायित रहती थी। ये ड्रेस पहन करके उन्होंने अपने पोर्ट्रेट तक बनवाए, और आज वो पोर्ट्रेट्स म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं।
1: श्रोताओं, खादी के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं। गांधी जी ने इसके जरिए भारत की आर्थिक आजादी का सपना देखा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि खादी का मतलब क्या। खादी का मतलब वो कपड़ा जो चरखे पर हाथ से बुना जाता है। ये कॉटन भी हो सकता है, सिल्क भी और वूल भी। शर्त केवल ये है कि इसे चरखे पर हाथ से बुना जाना चाहिए।
3: श्रोताओं, मलमल व खादी को मिलाकर के कपड़े की एक वैरायटी बनती है और उसे कहते हैं मलमल खादी, यानी कि मसलीन खादी। यह खादी की सभी वैरायटीज में सबसे उम्दा मानी जाती है। कारण यह होता है कि इसमें मलमल की नजाकत व खादी का कूल कंफर्ट एक साथ मिलता है। इसका शर्ट व कुर्ता बनवा करके पहनना आराम व फैशन का एहसास एक साथ होता है।
1: क्योंकि बात बंगाल के संदर्भ में चल रही है, इसलिए ये बात स्पष्ट कर दें कि बंगाल का बुना मलमल खादी पूरे भारत में सराहा जाता है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि गर्मियों में आप एसी शर्ट पहनने के बजाय मलमल खादी की शर्ट पहनिए, आपका बॉडी टेम्परेचर 3 डिग्री तक नीचे आ जाएगा।
3: श्रोताओं, हमने बंगाल के कल्चर के बारे में आपसे चर्चा की, पहले खान पान के बारे में, फिर वहाँ के पहनावे के बारे में। चलिए अब आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं वहाँ के रीति रिवाज, यानी बंगाल की शादियों के बारे में।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं,
3: श्रोताओं, भारत की शादियों के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं। हमारे यहाँ विवाह को पश्चिम की तरह कॉन्ट्रैक्ट ना कहकर के संस्कार कहते हैं, लेकिन बंगाली शादियों में कुछ खास बातें होती हैं जो बाकी शादियों से इसे थोड़ा सा विशिष्ट बनाती हैं। श्रोताओं, अगर आप किसी बंगाली शादी में जाएं तो उसमें उनकी रस्मों को समझें। इसके लिए हम आपको बंगाली शादियों के कुछ शब्दों के मायने बता रहे हैं।
1: सबसे पहली रस्म के बारे में आपको बताते हैं, आई बुदो भात। शादी से पहले दुल्हन के रिश्तेदार उसे एक दावत देते हैं जिसे आई बुदो भात कहते हैं, और इस दावत का मतलब ये होता है कि उसके रिश्तेदारों ने उसे शादी करने की इजाजत दे दी है। दूसरी रस्म है गायर होलुद। हमारे यहाँ जैसे दुल्हन को हल्दी लगाने की रस्म होती है, वैसे ही बंगाल में शादी के एक दिन पहले की रात दुल्हन का गायर होलुद होता है, और इस रस्म का मतलब होता है शरीर को हल्दी से पीला करना, और इस रस्म की शुरुआत दूल्हे के घर से आए लोग ही करते हैं।
3: श्रोताओं, ऐसी रस्मों में एक नाम है दूधी मोंगोल। इस रस्म के अंतर्गत शादी वाली सुबह सात सुहागने दुल्हन को ट्रेडिशनल बंगला चूड़ियां शाखा और पावला पहनाती हैं। इसमें एक जोड़ी चूड़ी सफेद और एक जोड़ी लाल रंग की होती है।
1: बंगाली शादियों में सफेद और लाल रंग के कॉम्बिनेशन का काफी इस्तेमाल होता है। देखा जाए तो सफेद रंग शांति, सादगी, सरलता और सदाचार का द्योतक होता है, जबकि लाल रंग प्रेम और उमंग का। इसीलिए सफेद और लाल रंग के कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि हे दुल्हन, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और उमंग का समावेश तो करो, पर सरलता और सादगी को कभी ना भूलो।
3: श्रोता, बंगाली लोगों का यह जीवन दर्शन शादी के वक्त दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले साड़ी के कलर में दिखता है। बंगाली दुल्हने शादी के मौके पर ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी पहनती हैं, जिस पर गहरे लाल रंग का खूबसूरत बॉर्डर होता है। दूसरी ओर दूल्हा सफेद रंग का धोती कुर्ता पहनता है। दूल्हा दुल्हन दोनों के सिर पर सफेद रंग का एक मोर होता है, जो सामान्यतः समुद्र की फैनी से बना होता है। यह फैनी बंगाली लोगों का समुद्र के प्रति जुड़ाव दिखाता है।
1: बोर यात्री का मतलब होता है बारात का प्रस्थान करना। जैसे हमारे यहाँ शादी के कार्डों पर बारात प्रस्थान का समय लिखते हैं, वैसे ही बंगाली लोग बोर यात्री का समय लिखते हैं।
3: बोर बोरन। जब बारात कन्या पक्ष के घर पहुंचती है तो दुल्हन की माँ मिट्टी के दिए वगैरह जला करके वर पक्ष के लोगों का स्वागत करती है। यह रस्म बोर बोरन कहलाती है।
1: चंदन टोला, यानी कि शादी के मंडप में जिस जगह पर दूल्हे को बिठाया जाता है उसे चंदन टोला कहते हैं।
3: पोटो बस्त्रा। जब दूल्हा चंदन टोला पर बैठ जाता है तो कन्यादान करने वाला व्यक्ति उसे नए कपड़े भेंट करता है, और यह रस्म पोटो बस्त्रा कहलाती है। सात पाग। दूल्हे दुल्हन द्वारा सात फेरे लेने की क्रिया बंगालियों के यहाँ सात पाग कहलाती है। अब अगर आप इस शब्द का मतलब नहीं समझते हैं तो आप तो यही समझेंगे कि आपको सात तरह के पकवान खिलाने के लिए कोई रस्म होगी मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: अगली रस्म है माला बदल। ये और कुछ नहीं, हमारे यहाँ का जय माला ही है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते हैं। एक और रस्म है जिसे शुभो दृष्टि कहते हैं। जब माला बदल की रस्म पूरी हो जाती है तो सभी लोगों के सामने ही दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये क्रिया शुभो दृष्टि कहलाती है, और इसका मतलब ये होता है कि अब समाज ने उन दोनों को परमिशन दे दी है कि वो एक दूसरे को प्यार से देख सकते हैं।
3: श्रोताओं, बंगाली कल्चर में मछली कितनी महत्वपूर्ण होती है यह अभी अभी हमने आपको बताया। अब चलिए यह भी देखते हैं कि बंगाली शादियों में मछली के कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। उनके कुछ नाम हम आपको बताते हैं।
1: पहला नाम है चिंगरी माछेर मलाई करी, और माछेर मुरोदिये मुगेर दाल। एक और पकवान है जिसका नाम है आलू दम चिंगरीर कटलेट।
3: श्रोताओं, आपको एक सलाह हम जरूर देते हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं और किसी बंगाली शादी में जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपने वेजिटेरियन होने की सूचना आप पहले से ही दे दें, नहीं तो आपको मात्र बंगाली रसगुल्ले खाकर ही अपना पेट भरना पड़ेगा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद,
1: और आज अतुल्य भारत में हम बात कर रहे हैं भारत के दर्शनीय स्थल कोलकाता के बारे में। श्रोताओं, बात बंगाल की हो रही है और बंगाल के सिनेमा की बात ना हो तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। कला के क्षेत्र में बंगाल बहुत ही समृद्ध है, चाहे वो सिनेमा हो, नाटक हो या फिर संगीत हो। सबकी फसल बंगाल की उपजाऊ जमीन पर खूब लहलहाई है। यहाँ तक कि बंगाल का साहित्य भी भारतीय साहित्य में एक लीडिंग रोल रखता है। हमें तो लगता है कि बंगाल की धरती में इंटेलेक्चुअल संतानों को जन्म देने की क्षमता कुछ ज्यादा ही है। पता नहीं ये माछी भात का असर है या बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवा का। बंगाल में जन्मे लोगों ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है।
3: तो चलिए श्रोताओं, आज बंगला सिनेमा की बात करते हैं। बंगला सिनेमा के दो सेंटर हैं, कलकत्ता व ढाका, लेकिन यहाँ हमारी चर्चा का विषय है कोलकाता। यहाँ का सिनेमा निर्माण क्षेत्र टालीगंज कहलाता है।
1: बंगला सिनेमा की शुरुआत 1890 से होती है, जबकि कोलकाता के थिएटरों में पहले पहल बायोस्कोप दिखाए गए। ये बायोस्कोप वास्तव में मूवी कैमरा होते थे, जिनमें एक फिल्म स्ट्रिप पर ढेर सारे फोटोग्राफ्स एक सीक्वेंस में चलते थे। वीडियो कैमरे इसके बाद आए। बंगाल में पहले दशक की फिल्म इंडस्ट्री बायोस्कोप वाली ही थी, जिसे विक्टोरियन एज का सिनेमा भी कहते हैं। कोलकाता में इस सिनेमा का बीज बोने वाले शख्स का नाम था हीरा लाल सेन।
3: श्रोताओं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सन 1919 में बंगला सिनेमा की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित हुई, जब पहली बंगला फीचर फिल्म बिल्वा मंगल मदन थिएटर के बैनर तले बनी। यह एक ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट फिल्म थी। यह प्रसंगवश आपको स्पष्ट कर दें, फीचर फिल्म फुल लेंथ वाली रनिंग फिल्म को ही कहते हैं। ज्यादातर ऐसी फिल्में 80 मिनट से ज्यादा समय की होती हैं।
1: श्रोताओं, बात टॉलीगंज की। आपने बॉलीवुड और टॉलीवुड का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल बॉलीवुड नाम हॉलीवुड से उधार लिया हुआ है और टॉलीवुड नाम टॉलीगंज के टॉली और बॉलीवुड के वुड को लेकर बनाया गया है। ये टॉलीगंज दक्षिण कोलकाता में एक जगह है और इसका नाम मेजर विलियम टॉली के नाम पर पड़ा है।
3: टॉलीगंज भारत के पैरेलल सिनेमा के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसने एक से बढ़कर एक 8 फिल्मों का निर्माण किया। इसने सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे जीनियस डायरेक्टर दिए। इस हिसाब से 1952 से लेकर के 1975 तक का पीरियड बंगाली सिनेमा के इतिहास में गोल्डन एज कहलाता है।
1: श्रोताओं, भारतीय पैरेलल सिनेमा में सत्यजीत रे का नाम रोशनी के समंदर से झांकते सूरज की तरह है। ऑस्कर, भारत रत्न और फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान लीजन द ऑनर से नवाजे गए सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित पहली फिल्म पाथेर पांचाली 1955 में रिलीज हुई। मात्र 1,50,000 रुपयों में बनी इस फिल्म ने कुल 11 इंटरनेशनल अवार्ड जीतकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। कोलकाता में जन्मे सत्यजीत रे को इस फिल्म ने रातों रात इंटरनेशनल पर्सनालिटी बना दिया।
3: श्रोताओं, बंगला सिनेमा की बड़ी खासियत यह है कि यह जमीन से जुड़ा हुआ सिनेमा है। यह बॉलीवुड की तुलना में हकीकत के ज्यादा निकट है। हालांकि बॉलीवुड के प्रभाव में अब ग्लैमर का तड़का इसमें भी लग चुका है और यह तेजी से तरक्की भी कर रहा है। इसके दर्शक केवल पश्चिम बंगाल तक ही नहीं सीमित हैं, बल्कि बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा में भी इसका अच्छा खासा मार्केट है। 70 से अधिक फिल्में हर साल बनती हैं, जो बहुत खूब चलती हैं।
1: बॉलीवुड की जगमगाती अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी हीरोइनें भी बंगाली सिनेमा में काम करने में फख्र महसूस करती हैं। उदाहरण के लिए 2003 में बनी फिल्म चोखेर बाली को ही ले ले। रविंद्रनाथ टैगोर जी के नॉवेल चोखेर बाली पर आधारित इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने बिनोदिनी की भूमिका निभाई है और इस फिल्म ने ढेरों पुरस्कार भी हासिल किए हैं।
3: श्रोताओं, अब बात करते हैं रविंद्र संगीत की। श्रोताओं, रविंद्रनाथ टैगोर वह शख्सियत हैं जिन्हें पाकर कोलकाता क्या, बंगाल क्या और भारत क्या, पूरा संसार धन्य हो गया। अक्सर लोग महात्मा गांधी से उनकी तुलना करते हैं, पर महात्मा गांधी से वे कई मायने में अलग थे। जी हाँ, जहां गांधी का दृष्टिकोण नेशनल था, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी का दृष्टिकोण इंटरनेशनल था। और इसी तरह गांधी को एक संत पॉलिटिशियन कहा जाता है, पर रविंद्रनाथ टैगोर शुद्ध संत थे। वे देश व राजनीति नहीं समझते थे, वे समझते थे केवल मानवता और विश्व बंधुत्व।
1: वे इतने जीनियस थे कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें उन्होंने काम न किया हो। वैसे पहले गैर यूरोपियन थे जिन्हें साहित्य के एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उनके द्वारा लिखे गए दो गीत आज भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं, जन गण मन जो कि आज भारत का राष्ट्रगान है, और आमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इन्हें भी रविंद्रनाथ जी द्वारा ही लिखा गया था।
3: श्रोताओं, हम यह चर्चा करना चाहेंगे उनके द्वारा प्रतिपादित म्यूजिकल स्टाइल रविंद्र संगीत की, यानी रविंद्र संगीत की।
1: वास्तव में रविंद्र संगीत का एक सामान्य अर्थ है स्वयं टैगोर जी द्वारा लिखे गए एवं कंपोज किए गए गीत। इसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और ट्रेडिशनल लोक संगीत का मिश्रण देखने को मिलता है। बंगाल का तो ये विशिष्ट संगीत है ही, जो बांग्लादेश में भी पूजा और सराहा जाता है। स्वयं रविंद्र जी के शब्दों में कहें, यदि लोग मेरे द्वारा लिखी गई सभी कविताओं को भूल जाएं, तो भी वे मेरे गीतों को नहीं भूल पाएंगे।
3: श्रोताओं, रविंद्र संगीत एकदम से दिल को छू जाता है। इसमें प्यार, प्रकृति, सर्वव्यापी, ईश्वर व मनुष्य की दुर्बलता, इन सब का मिश्रण है। यह भारत की मिट्टी का संगीत है जो सुनने वाले को एक अपूर्व शांति के लोक में ले जाता है।
1: रविंद्र संगीत का कुछ ऐसा जादू है कि बंगाल के बाहर के लोग भी इसे गाना फक्र की बात समझते हैं। हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायक किशोर कुमार, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति इसमें अच्छी पकड़ रखते हैं।
3: श्रोताओं, चलते चलते अब हम आपको ये भी बता दें कि कोलकाता जाने के लिए सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है। कोलकाता जाने के लिए सबसे अच्छा सीजन होता है जाड़ों का समय। इस समय वहाँ ना तो ज्यादा जाड़ा होता है और ना ही ज्यादा गर्मी। हम तो आपसे अनुरोध करते हैं कि कलकत्ता आप एक बार अवश्य जाएं। श्रोताओं, अब अपने कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। आप सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से अतुल्य भारत, और हमारी चर्चा का विषय था कोलकाता। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने, और स्वर थे प्रमोद शर्मा और कंचन राजानी के। अब हमें आगे दीजिए, नमस्कार। अतुल्य भारत।
0: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन गौरव अभ्यंकर का, और इसके बाद प्रस्तुति होगी रघुनंदन पंचीकर के गायन की। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गौरव अभ्यंकर का गायन।
4: गायन का प्रारंभ एक स्वर रचित शिव वंदना से करूंगा, जो कि याग रमन राग यमन में एक ताल में निबद्ध है, मध्य लय की रचना है।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपके लिए लेकर आए हैं कजरी झूला गायन, जिसे पेश कर रहे हैं शशि कुमार पांडे।

एके बाद हमरे हियाँ बघेलखंड में बरसात केर सामन केर एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकगीत है, ओका कहा था हिंदुली। हिंदुली अपना वचन का सुनाई थे। हिंदुली बड़ा महत्वपूर्ण गीत है हमारे यहाँ के।

यह हिंदुड़ी के बाद अपना पचन का कजरी सुनाई थे। जौन कजरी हमारे यहाँ बघेल खंड में गाई जाए थे, वह कजरी अपना पचन को सुनाई थे।

कजरी अपना वचन के सुनाए थे, और कजरी के बाद यह कजरी लगभग अंतिम प्रस्तुति है। कजरी विशेष रूप से हमारे यहाँ बघेलखंड में औरे अंचलन के मेरे गाई जाती, वह कजरी बघेलखंड के अपना वचन का सुनाए थे।

हमारे यहाँ के एक बड़ा महत्वपूर्ण गीत है, हम ओका अपने चाह सुनावा चाहे ला है, भूल दनिया ओका कहा था, तो दुई लाइन एक वर्षा गीत केर, ओके बाद बीच में भोले बाबा केर गीत, और ओके बाद फिर वही वर्षा गीत से समापन, माने एमा हम दुई ठो गीत इकट्ठा अपना बचन के सुनाई ला है।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज आपने सुना कजरी झूला गायन, जिसे पेश कर रहे थे शशि कुमार पांडे। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब हमारी आज की शाम की सभा आरंभ होती है। हमारा ये प्रसारण रात्रि 10 बजे तक यूं ही निरंतर जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज शाम की सभा में श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं अग्नि और छंद है जगती।
3: दानो अग्ने बृहतो दाह सहस्रिणो दुरो नवाजम श्रुत्या अपावृधि प्राची द्यावा पृथ्वी ब्रह्मणा कृधि स्वर्ण शुक्र मुषसो विद्युतुः। हे अग्निदेव, आप हमें हजारों तरह की विभूतियां प्रचुर मात्रा में प्रदान करें। कीर्तिदायी अन्न प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। उषाएं आपको आदित्य के समान प्रकाशित करती हैं, अतः द्युलोक तथा पृथ्वी लोक को ज्ञान के सहारे हमारे अनुकूल बनाएं। स इधान उषसो राम्या अनुस्वर्ण दीदे दरुषेण भानुना होत्राभिरग्निर्मनुषः स्वध्वरो राजा विषामतिथिश्चा रुरायवे। उषा की समाप्ति के बाद प्रज्वलित अग्निदेव अपने उज्ज्वल तेज से प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठ याज्ञिक प्रजाधिपति वे अग्निदेव मनुष्यों की स्तुतियों से प्रशंसित होते हुए प्रिय अतिथि की तरह पूज्य होते हैं। एवा नो अग्ने अमृतेषु पूर्व्या धीष पीपाय बृहद्दिवेषु मानुषा दुभाना धेनुर्व्रजनेषु कारवेत्मना शतिनम पुरुरूपमिषणि। हे अग्निदेव, आप अत्यंत तेजस्वी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। मानव समुदाय के बीच में आप स्तुतियों से तृप्त होते हैं। याजकों को आप कामधेनु के समान असंख्य प्रकार का धन प्रदान करते हैं। वयमग्ने अर्वता वा सुवीर्यम् ब्रह्मणा वा चितयेमा जनाम अति अस्माकम् द्युम्नमधि पंच कृष्टिशुच्चा स्वर्ण शुशुचीत दुष्टरम्। हे अग्निदेव, हम पराक्रम तथा ज्ञान के द्वारा सामर्थ्यशाली बनकर मानव समुदाय में श्रेष्ठ बने। हमारा उच्च स्तरीय अनंत तथा दूसरों के लिए अप्राप्त धन समाज के सभी वर्गों में सूर्य की तरह प्रकाशित हो। स नो बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन् सुजाता इशयन्त सूरयः यमग्ने यज्ञमुपयन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्वेदमे। हे बलशाली अग्निदेव, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ज्ञानी जन यज्ञ में अन्न की कामना करते हैं तथा धन धान्य से संपन्न मनुष्य हमारी इच्छाओं को जानने वाले आपको प्रशंसनीय पूजनीय तथा तेजस्वी रूप में अपने घरों में प्रज्वलित करते हैं। उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च शर्मणि वस्वो रायः पुरुषचंद्रस्य भूयसः प्रजावतः स्वपत्यस्य शक्धिनः। हे ज्ञानोत्पादक अग्निदेव, ज्ञानी स्तोताओं सहित हम दोनों सुख की कामना से आपके आश्रित हों। आप हमारे लिए उत्तम संतति रहने के योग्य ग्रह आदि तथा श्रेष्ठ संपत्ति प्रदान करें। ये स्तोत्रिभ्यो गोवग्रामश्व पेश समग्ने राति मुपसृजन्ति सूरयः अस्मांच तांश्च प्रहिनेषि वस्य आ बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे अग्निदेव, जो ज्ञानी जन स्तोताओं को श्रेष्ठ गौएं तथा बलशाली घोड़ों से युक्त धन प्रदान करते हैं, आप उन्हें तथा हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें। यज्ञों में वीर संतति से युक्त होकर हम आपकी स्तुति करें।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

यदि हम दूसरों से अपने प्रति अच्छे व्यवहार की आशा करते हैं, तो सबसे पहले हमें ही दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को सुधारना होगा। यही सच्ची मानवता है।

बाहरी दुश्मनों से लड़ने और उन पर विजय पाने से अधिक जरूरी यह है कि मन के अंदर उपस्थित विकृतियों और पापों से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि इनसे छुटकारा पाने में ही मनुष्य की असल विजय है।

उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे जायन्ते मृगा। यानी बिना मेहनत के कभी भी कार्य सफल नहीं हो सकते। जैसे कि यदि एक सिंह सोया रहे तो उसके मुख में मृग स्वयं नहीं जाएगा। यानी सफलता के लिए मेहनत अनिवार्य है।

धन की वर्षा होने से भी हमारी कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान मनुष्य को ये जानना चाहिए कि सभी कामनाओं की पूर्ति असंभव है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती।

दयाला। अकुशल कर्म तथा अहितकर कर्म करना बहुत आसान है, कुशल कर्म तथा हितकर कर्म करना कठिन है। मगर जो कठिनाई के रास्ते पर चलते हुए सदा दूसरों का भला करता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यदि हम चाहते हैं कि हमारा चित्त और हमारी आत्मा सच्चे रूप में जागृत हो, तो इसके लिए हमें खुद ही प्रयास करने होंगे। कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमें जागृत नहीं करेगा।

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किम् करिष्यसि। यानी जिस मनुष्य के पास स्वयं का विवेक ही नहीं है उसका शास्त्र कुछ भी भला नहीं कर सकते। जैसे कि एक नेत्रहीन के लिए दर्पण किसी काम का नहीं है।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भुइया के चूंदी कस कोदो के पान, तेल कोरत है किसान, ककवा कस धर के नतारी, चटनी सनबासी ला लकर धकर खा के, हता तता आगू आगू बैला ला रेंगा के, रेंगत है पाछू पाछू कमेला किसान, जब ले होइस रे बिहान, सूरज के निकले सवारी। डॉक्टर जीवन यदुराही की ये पंक्तियाँ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन, उनकी परंपराओं और खेती किसानी की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करती है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ अपनी इन्हीं छवियों के साथ भारत के नक्शे पर मुस्कुराता है। यूं तो ग्रामीण अंचल के ये मनोहारी रंग, खेतों में दूर तक फैली हरियाली, बैलों के गले में बंधी घंटी की आवाज, ये सभी कुछ मन को अपने रंग में रंग लेता है। लेकिन जब संवेदनाएं इन किसानों के साथ नंगे पांव धान के इन खेतों में उतरती हैं, तब ग्रामीण जीवन के श्रम और कठिनाई का गहराई से अनुभव करती हैं। ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सघन प्रयास किए। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में किसानों के हित में सहकारिता आंदोलन चलाने वाले एक ऐसे ही महानायक थे, माटीपुत्र वामन राव बलिराम लाखे। वो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वामन राव बलिराम लाखे का जन्म 17 सितंबर 1872 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके पिता पंडित बलिराम गोविंद राव लाखे एक निर्धन किंतु परिश्रमी व्यक्ति थे। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने अपने जीवन की दशा बिल्कुल ही बदल दी। जब बालक वामन राव का जन्म हुआ तब तक ये परिवार समृद्ध हो चुका था। वामन राव लाखे की आरंभिक शिक्षा रायपुर में ही हुई। माधवराव सप्रे उनके साथ पढ़ा करते थे। यहीं से दोनों की मित्रता आरंभ हुई, जिसने आगे चलकर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की नींव रखी। बहरहाल, रायपुर से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने नागपुर से बीए की परीक्षा पास की और सन 1904 में कानून की पढ़ाई पूरी कर वो रायपुर वापस आ गए। इसी बीच उनका विवाह जानकी बाई के साथ संपन्न हुआ। रायपुर से उन्होंने वकालत आरंभ की। वो कई वर्षों तक रायपुर के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन वकालत के पेशे को उन्होंने मात्र धन अर्जन के लिए आरंभ नहीं किया था। उनका मुख्य उद्देश्य जनसेवा था। वो हमेशा ही लोगों के दुख दर्द दूर करना चाहते थे। उनका यही लक्ष्य था कि किसी भी तरह आम जन की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार हो, वंचितों के हिस्से भी सुख सुविधाएं पहुंचें। इस लक्ष्य में उनकी पत्नी सदा उनके साथ रहीं और इसी बड़े उद्देश्य को लेकर वो लगातार

वामन राव बलिराम लाखे के सामाजिक सरोकार सदा ही बहुत गहरे थे। यही कारण है कि वो आरंभ से ही सार्वजनिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्यों में संलग्न रहे। आम लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने पत्रकारिता के विकल्प को भी देखा। सन 1900 में जब माधवराव सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका की शुरुआत की तो वामन राव लाखे इसके प्रकाशक हुए और पंडित माधवराव सप्रे और उनके सहयोगी रामराव चिंचोलकर ने इसके संपादन का दायित्व संभाला। ये छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका थी। मात्र 3 साल ही इसका प्रकाशन हुआ लेकिन इसका प्रभाव व्यापक था। इस पत्रिका ने युवाओं को एक नई दिशा दी और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के एक युग का आरंभ हुआ। सामाजिक सहकार को वो अनेक समस्याओं के समाधान की तरह देखते थे। सन 1913 में उन्होंने सहकारिता आंदोलन को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता और सहकारी संगठनों की मजबूती के लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया। सन 1913 में उन्होंने कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की। सन 1936 तक उन्होंने इस बैंक में बिना वेतन लिए सचिव के पद पर कार्य किया। उनकी लगन और मेहनत का ही परिणाम था कि ये संस्था अपने शिखर तक पहुंची। सन 1937 से 1940 तक वो इसके अध्यक्ष रहे। लाखे जी के प्रयास से ही सन 1930 में बैंक का अपना भवन भी तैयार हुआ। आगे चलकर उन्होंने बलौदा बाजार में सहकारी किसान राइस मिल की भी स्थापना की। इस तरह किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। इसे देखते हुए उन्हें राय साहब की उपाधि से अलंकृत किया गया। आज भी छत्तीसगढ़ के अनगिनत किसानों को सहकारिता के क्षेत्र में किए गए उनके प्रयासों का लाभ प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि उन्हें छत्तीसगढ़ अंचल में सहकारिता का जनक माना जाता है। वामन राव लाखे का जीवन देश और समाज को ही समर्पित रहा। होम रूल लीग के माध्यम से जब भारत में स्वशासन की मांग उठ रही थी तब वामन राव लाखे भी इस मुहिम से जुड़े। जब रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई तब लाखे जी ही इसके संस्थापक थे। उस दौर में छत्तीसगढ़ में राजनैतिक चेतना का जो भी प्रसार हुआ उसमें वामन राव लाखे का महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी उपस्थिति से जहां सहकारी संगठनों का अप्रतिम उत्कर्ष हुआ वहीं देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से छत्तीसगढ़ का आम जन जुड़ने लगा।

वामन राव बलिराम लाखे गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। सन 1920 में गांधी जी के आह्वान पर वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने खादी को अपनाया और खादी के प्रचार के लिए रायपुर में खादी सप्ताह के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और खादी के स्वीकार्य हेतु वो संकल्पित हुए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना के विकास और विस्तार में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके भाषणों का लोगों पर व्यापक प्रभाव होता था। 29 अप्रैल सन 1920 को उन्होंने रायपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि लोग कानून भंग कर अंग्रेजी राज को समाप्त करने की मुहिम में शामिल हों। 18 मई को उन्होंने अफसरशाही के सामाजिक बहिष्कार की अपील की। किसान सम्मेलन हो, राजनैतिक गतिविधियों का आयोजन हो या गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी जैसे शीर्ष नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन, हर जगह वामन राव लाखे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छत्तीसगढ़ में आयोजित सम्मेलन हो या गांधी जी के आंदोलन, वामन राव लाखे तन मन धन से इन गतिविधियों में सक्रिय रहते। सन 1920 में जब गांधी जी रायपुर आए तब उनके रहने ठहरने की व्यवस्था देखने वालों में वामन राव लाखे भी शामिल थे। नागपुर अधिवेशन में तो वो गांधी जी के साथ ही गए। गांधी जी के व्यक्तित्व का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय साहब की उपाधि लौटा दी। 1930 में जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो रायपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, मौलाना रऊफ, महंत लक्ष्मी नारायण दास और शिवदास डांगा ने मिलकर किया। इस प्रकार रायपुर में ये स्वाधीनता आंदोलन के 5 पांडव के नाम से विख्यात हो गए। जन जन के मुख पर यही पंक्तियां थीं कि भैया पांचों पांडव कहिए जिनको नाम सुनाऊं, लाखे वामन राव हमारे धर्मराज को हैं अवतार, भीमसेन के अवतारी जानो लक्ष्मी नारायण जिनको नाम, डागा सहदेव नाम से जाहिर रऊफ नकुल को हैं अवतार, ठाकुर अर्जुन के अवतारी योद्धा प्यारे लाल साकार। इस तरह अंग्रेजों के विरुद्ध जारी महाभारत में रायपुर के ये पांचों पांडव निर्भय हो हुंकार उठे थे। 28 मई को आरंग में वामन राव लाखे ने गरजते हुए कहा कि अंग्रेजों के गुंडा राज को अब और चलने नहीं दिया जाएगा। अंग्रेज इस घोषणा से तिलमिला उठे। 25 जून 1930 को उन्हें दोषी ठहराया गया और 3,000 रुपये जुर्माना अथवा 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। वामन राव लाखे ने देश के लिए लगातार संघर्ष किया। 1941 में भी उन्होंने सत्याग्रह किया। सिमगा में उन्हें सत्याग्रह के दौरान ही गिरफ्तार किया गया और 4 महीने के कारावास का दंड देकर नागपुर जेल में रखा गया। रायपुर में शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। रायपुर में एवीएम स्कूल की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु के बाद इस स्कूल का नाम श्री वामन राव लाखे उच्चतर माध्यमिक शाला कर दिया गया। वामन राव लाखे 2 बार रायपुर नगरपालिका के अध्यक्ष भी चुने गए थे। उनका जीवन इतना सरल था कि वो नगरपालिका कार्यालय तक पैदल ही आया जाया करते। वो सदा लोगों से जुड़े रहना चाहते थे। कार्यालय आते जाते समय आम लोग अपनी समस्याएं लेकर उनसे मिलते। वो सबकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते और उनके निराकरण के त्वरित प्रयास में जुट जाते। एक विराट व्यक्तित्व था उनका और देश समाज के लिए समर्पित एक आदर्श जीवन। स्वाधीनता संग्राम हो या किसानों के कल्याण का प्रयास, खादी का प्रचार प्रसार हो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, इन सभी आयामों के साथ वामन राव लाखे जी की एक ऐसे महान राष्ट्रभक्त की छवि बनती है जो जिए तो देश के लिए और मरे तो देश के लिए। उनकी हर सांस देश को समर्पित रही। सतत राष्ट्र सेवा करते हुए 21 अगस्त 1948 को उनका दुखद निधन हुआ। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
1: इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर और प्रस्तुतकर्ता यानी कि मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। और इतिहास के पन्नों से में हम पिछले अपनी दो कड़ियों में सुन रहे हैं मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनके योगदान के बारे में। पिछली बार हमने आपको बताया कि मध्य भारत वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में 16वीं सदी में गोंड राजा संग्राम शाह का राज्य था। उनके कुल 52 गढ़ थे। राजा संग्राम शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दलपत शाह ने गोंड राज्य गढ़ा की राजगद्दी संभाली, लेकिन 1550 ईस्वी में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। तब उनका बेटा वीर नारायण लगभग 4-5 वर्ष का बालक था। दलपत शाह की रानी दुर्गावती ने राजकुमार वीर नारायण को गढ़ा के गोंड राज्य का अगला शासक घोषित किया और मंत्री आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर स्वयं उनके संरक्षक बनी। 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी यानी अगले 14 वर्ष उन्होंने गढ़ा के गोंड राज्य पर सफलतापूर्वक राज्य किया। सबसे पहला उनका युद्ध हुआ मियाना अफगानों से। उन्हें उन्होंने पराजित किया और इन लड़ाकों को अपनी ही सेना में भर्ती भी किया। इसके उपरांत मुख्य रूप से उनका युद्ध मांडू के सुल्तान बाज बहादुर से हुआ, जिसमें रानी दुर्गावती ने अनेक बार बाज बहादुर को शिकस्त दी। और इसके आगे की बातचीत के लिए हमारे साथ फिर एक बार स्टूडियो में मौजूद हैं पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: पूजा जी, रानी दुर्गावती जी जिन्होंने 1550 ईस्वी यानी 473 वर्ष पहले इतिहास रचा था, एक ऐसी रानी, एक ऐसी शासिका जो आज भी 500 वर्ष बाद लोक स्मृति में है, वो निश्चित ही अत्यधिक लोकप्रिय रही होंगी तब भी। तो रानी की लोकप्रियता के क्या मुख्य कारण है?
2: आपने बिल्कुल सही कहा, हजारों साल के इस लंबे इतिहास में न जाने कितने ही शासक हुए होंगे
1: जी,
2: लेकिन लोग उसे ही याद करता है जिसने लोगों के लिए काम हुआ, बाकी को तो भूल जाता है। उसके कामों से लोगों के जीवन में यदि सकारात्मक प्रभाव हुए हों तो वो उसे अपने दिल में बसा के रखता है। उसकी कहानियों में, किस्सों में, आख्यानों में वो राजा या रानी बार बार दोहराए जाते हैं
1: जी।
2: गोंड रानी दुर्गावती भी ऐसी ही एक रानी थी जिन्हें 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी भुलाया नहीं जा सका है। आज भी वह महाकौशल के अनेक आख्यानों में गाई जाती हैं। गांव-गांव में लोग उनके आख्यान गाते हैं, उनकी वीरता के किस्से, उनके लोक निर्माण के जो कहानी किस्से हैं वो गाते हैं। उनकी अनेक कहानियां और किस्से हैं, उन्हें लोग बहुत सम्मान के साथ आज भी याद करते हैं
1: जी। पूजा जी, जैसे आपने कहा कि लोग उन्हें बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं, तो ऐसे अनेक उन्होंने काम किए। जैसे आपने पिछली बार बताया कि उन्होंने जो गढ़ा का किला था वो इतना अभेद्य बनाया था कि बड़े से बड़े आक्रमणकारी भी वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। इसके अलावा एक और उनकी कला थी पानी से संबंधित, उन्होंने बहुत सारे तालाब बनाए। यहाँ तक कि उनकी जो विरासत को जिन्होंने संभाला, उनकी दासियों तक का ये आता है कि रानी दुर्गावती की जो दासियां थी, तो कहते हैं कि जबलपुर में कुल 56 ताल थे।
2: बिल्कुल सही, रानी दुर्गावती ने अनेक तालाबों का निर्माण कराया और जबलपुर जो उनकी राजधानी था, गढ़ामंडला में जो मदन महल की हम बात करते हैं वो तो जबलपुर में ही है। तो मुख्य केंद्र तो हमेशा गोंड राजाओं का वही रहा। हाँ, हालांकि राजधानियां उनकी लगातार बदलती चली गई। रानी दुर्गावती के समय में भी राजधानी चौरागढ़ रही, पर गढ़ामंडला यानी कि मदन महल उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो जबलपुर में ही कहते हैं कि उनके बनाए हुए 56 तालाब थे
1: जी।
2: कुछ आज भी हैं और कुछ पूर गए समय के साथ में, लेकिन अब जहां तालाब नहीं भी हैं उन जगहों पर बस्तियां बस गई और आज भी वो तालाब के नाम से ही जानी जाती हैं,
1: जैसे कि आधार ताल।
2: हाँ, आधार ताल
1: जी।
2: इस तरीके के अनेक नाम जबलपुर में मिलेंगे। तो जहां कहीं भी पानी का स्रोत होता, भरपूर पानी होता, वहां संस्कृति पनपती ही है
1: जी। हाँ,
2: तालाब बनने का अर्थ से केवल इतना नहीं होता कि तालाब बन गया और पानी की आपूर्ति हो गई
1: जी।
2: आप अगर ध्यान से देखें तो जहां पानी का स्रोत होता है वहां संस्कृति और सभ्यता पनपती है।
1: बिल्कुल,
2: गांव बसते हैं, शहर बसते हैं, उद्योग धंधे पनपते हैं, धन संपदा बढ़ती है और कला और शिक्षा का भी विकास होता है।
1: लेकिन पूजा जी, ये भी तो एक कला ही हुई ना कि कहाँ पानी निकलेगा ये मालूम होना, तो ज्ञान की बात हुई। तो ये कौशल, ये प्रबंधन किस तरह था उनके पास?
2: बिल्कुल सही। गोंड जनजाति या अन्य जनजातियों, क्योंकि वनों वन क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानती हैं
1: जी,
2: और परंपरागत रूप से उन्हें इस ज्ञान और विज्ञान, मैं तो इसे विज्ञान भी कहूंगी, इसकी बहुत अच्छी जानकारी है कि वह यह जान लेते हैं कि भूमिगत जल कहाँ मिलेगा। हर कहीं आप तालाब नहीं बना सकते, जहां जल होगा वहीं ना बनाएंगे। तो वे इस परंपरागत ज्ञान को जानते हैं, चलते फिरते वनस्पतियों पेड़ पौधों को देखकर बता सकते हैं कि कहां से पानी की भूमिगत शिराएं हैं, तो तालाब या जल स्रोत कहां खोदना चाहिए
1: जी।
2: ये उनका ज्ञान सदियों हजारों वर्षों से हमारे बीच में है। इसलिए आप मध्य भारत में जहां कहीं भी तालाबों के किस्से कहानी सुनेंगे, तो उसमें कोई ना कोई कहानी किस्सा ऐसा होगा जिसमें कि किसी गोंड का योगदान आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत ही आम बात रही कि हमने देखा है कि जो प्राचीन जो शास्त्र हमें मिलते हैं
1: जी,
2: उसमें एक दकारगल विद्या का वर्णन आता है। दकारगल विद्या उसे कहते हैं जिसमें पानी, भूमिगत पानी के बारे में आपकी कितनी जानकारी है। तो ऐसे हमें उल्लेख भी मिला है, और उन उल्लेखों को पढ़कर भी हमें ये समझ में आता है कि हजारों साल से ये विद्या इनके बीच में थी। हम ये भी शास्त्रों से जानते हैं कि हमारी प्राचीन ज्ञान विज्ञान में ये भी शामिल था कि आप कहाँ तालाब बनाएं, यानी कौन सी भूमि ऐसी है जो पानी को रोक सकेगी वर्ष भर
1: जी।
2: नहीं तो तालाब सूख जाएगा या भूमि उसको सोख लेगी पानी को। तो उसकी कई सारी विधियां हमको मिलती हैं जो आज भी गोंड जनजाति प्रयोग में लाती है।
1: अच्छा।
2: जैसे मैंने कुछ देखा प्रैक्टिकली भी गोंड जनजाति के बीच में जब काम किया, और मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा कि मान लीजिए कि आपको पता करना है कि ये भूमि तालाब बनाने के लिए अच्छी है या नहीं। तो मैंने देखा कि जैसे आप एक पर्टिकुलर साइज का एक छोटा सा गड्ढा करना है, और आपको वहाँ खड़े होकर एक तीर आसमान की तरफ फेंकना है।
1: अच्छा।
2: हाँ, और जब वो तीर नीचे आएगा, उस बीच में उस गड्ढे में कितना पानी कम हुआ, यानी कुछ एमएम में भी होगा, एमएम में ही हो पाएगा, पर उसको निशान लगाना है आपको, उससे पता चल जाता है कि ये भूमि पानी को रोक पाएगी कि नहीं। इसी तरीके से मैंने एक और देखा था जब मैं जनजातियों के बीच में काम कर रही थी कि आपने एक गड्ढा खोदा जहाँ पे आपको तालाब की संभावना है कि यहाँ तालाब बनाना चाहिए
1: जी।
2: और उसमें पानी भर दिया मैन्युअली, है ना, खुद पानी भर दिया, और फिर आपको 100 कदम जाना है और 100 ही कदम लौट के आना है। अगर इस बीच में पानी वो सोख लेता है या फिर पानी का स्तर काफी नीचे हो जाता है तो फिर उस जगह तालाब नहीं बनाएंगे
1: जी।
2: हाँ, तो ये सारी विद्याएं भी जो परंपरागत रूप से सीखी गई थी वो आज तक परंपरा में है। सिर्फ जरूरत इतनी है कि कुछ कम हो रही है और हमें उसे संभालना है।
1: हमें उन्हें संभालना होगा, उनसे सीखना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ी को देना होगा। निश्चित रूप से संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो श्रोताओं, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, और पूजा जी ने कितनी अच्छी जानकारी बताई। डॉक्टर पूजा सक्सेना हमारे साथ स्टूडियो में है कि दकारकल विद्या, इस विद्या का नाम, इस विज्ञान का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं ने भी, ज्यादातर लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा कि भूमिगत जल के बारे में ये जो जानकारी दी आपने, आगे भी हम इस बारे में कुछ और आपसे जानना चाहेंगे।
2: जी हाँ, हमने पिछले बार जब चर्चा की थी राजा संग्राम शाह की
1: जी,
2: तो संग्राम शाह ने संग्राम सागर बनवाया था, और उसी के पास में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, टेकरी के ऊपर बाजना मठ भी बनवाया था।
1: अच्छा।
2: तो रानी दुर्गावती उनकी वंशज है, और उन्होंने संग्राम शाह के काम को आगे बढ़ाया। तो रानी दुर्गावती ने भी बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया, और खास बात यह रही कि उन तालाबों के आसपास मठ मंदिर भी बनवाए
1: जी।
2: तो अगर हम जबलपुर में ही देखें तो एक बहुत लंबी सूची है तालाबों की। जैसे नाम आते हैं रानी ताल, आधार ताल, चेरी ताल, मड़ा ताल, गंगा सागर, फूटा ताल, भंवर ताल, सूपा ताल, गलवा ताल, ऐसे बहुत से नाम है, और इस यही सूची खत्म नहीं होती, आगे भी है बहुत सारे ताल तलैया, जो छोटी तलैया हैं, है ना। तो जैसे भान ताल, श्रीनाथ जी की तलैया, हाथी ताल, महानंदी ताल, और भी आगे कोला ताल, बघा ताल, उगरी ताल, कदम तलैया, भान तलैया, तिलक भूमि, बैनी सिंह की तलैया, लोको तलैया, ककरैया और जुड़ी तलैया, इतने अभी तो सूची खत्म नहीं हुई है, पर ये कुछ एक महत्वपूर्ण नाम है जो हम देखते हैं कि गोंड काल में ये तालाब बने।
1: श्रोताओं, कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है हमें अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। जैसे कि पूजा जी, आपने बताया कि आधार ताल जैसा एक, जैसे कि जबलपुर का एक बड़ा इलाका है आधार ताल, या रानी ताल या चेरी ताल, लेकिन आधार ताल मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार आपने हमें बताया था कि रानी के एक मंत्री का नाम आधार कायस्थ था, तो क्या इस ताल का उनसे कुछ संबंध है?
2: एक अच्छा राजा या रानी केवल खुद ही अच्छा काम नहीं करता
1: जी।
2: वो दूसरों को भी प्रभावित करता है कि उसकी प्रजा, उसके सहायक भी अच्छा काम करें।
1: बिल्कुल।
2: तो हम जबलपुर में पाते हैं एक आधार ताल
1: जी।
2: तो जैसा आपने कहा कि उनके मंत्री का नाम था आधार कायस्थ, तो उन्होंने भी एक तालाब बनवाया, और ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं था, बहुत बड़ा तालाब था। आधार तालाब बनाने के बाद उन्होंने उसके पास एक पचमठा मंदिर भी बनाया। पचमठा एक अपनी शैली है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे
1: जी।
2: तो ये जो पचमठा मंदिर है या मठ है, इसमें महालक्ष्मी का मंदिर है और इसकी आज भी बड़ी मान्यता है, काफी लोग यहाँ आते हैं। खास बात यह है कि अगर आप इस पचमठा मंदिर को देखेंगे तो इसका जो प्लान है या जो भूविन्यास है वो श्री यंत्र पर आधारित है। जैसे हम पेन कागज पे श्री यंत्र बनाते हैं, ऐसा ही पूरा की पूरा मंदिर ही श्री यंत्र पर आधारित है। तो इसके अंदर मंदिर में शिव है, हनुमान है, ब्रह्मा, सूर्य, लक्ष्मी, तो गोंड काल में इन सभी की प्रतिमाएं यहाँ पर उत्कीर्ण की गई, और बहुत खूबसूरत द्वार शाखा है, द्वार शाखा पर युद्ध का चित्र भी अंकित है
1: जी। पूजा जी, ऐसे ही किसी और तालाब के बारे में कोई दिलचस्प कहानी बताइए हमें।
2: जरूर, एक तालाब जरूर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। जैसे हमने सुना कि रानी ताल का निर्माण रानी दुर्गावती ने करवाया
1: जी।
2: एक बिल्कुल उसके पास में ही एक और तालाब है चेरी ताल
1: जी।
2: तो चेरी का अर्थ है दासी।
1: अच्छा,
2: यानी कि रानी की दासी
1: है ना।
2: तो एक कहानी आती है कि रानी और उनकी जो चेरी थी, वो दोनों रानी तालाब का काम होते देखने जाया करती थी
1: जी।
2: तो चेरी के मन में भी आया कि मैं भी एक तालाब बनवाऊं, लेकिन उसके पास तो इतनी धन संपदा थी नहीं। तो उसने क्या किया कि जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उनसे ये कहा कि जब भी आप लोग घर वापस जाया करो शाम को, तो ये पास में जो खाली पड़ी जमीन है इसमें से एक पत्थर अपने साथ रोज ले जाया करो
1: जी।
2: तो मजदूरों ने उनकी बात मान ली और वो रोज एक पत्थर अपने साथ, हर एक मजदूर एक पत्थर अपने साथ ले जाने लगा। और धीरे धीरे देखते हैं कि वहां पर तो एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, बारिश आई, पानी भर गया, तो बन गया चेरी ताला। तो यदि किसी में इच्छा है तो काम हो सकता है।
1: क्या बात है, देखिए मिलजुल कर काम किया जाए तो कोई भी काम संभव। और इससे श्रोताओं में एक बहुत बड़ी सीख ये भी मिलती है कि आपके पास सिर्फ मन में लगन होनी चाहिए, कोई काम करने की इच्छा होनी चाहिए, भले ही कोई सुविधा हो, कोई संसाधन हो या नहीं हो। इतनी अच्छी लोक कथाएं या कथाएं कहें, हम कहानियां कहें, जो इन तालाबों के निर्माण के साथ जुड़ी हुई हैं, राजवंशों का जो मध्य भारत के जो राजवंश थे उनके इतिहास से कितनी सुंदर ये कथाएं जुड़ी हुई हैं, और इतने 56 तालाब बनाए। निश्चित रूप से हम 56 तालाबों की बात तो समय अवधि के कारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप संक्षिप्त में कुछ और तालों के बारे में ज़रूर बताएं।
2: गढ़ा के गोंड राज्य में यानी जबलपुर में एक और तालाब है देवताल, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गढ़ा के जो तालाब हैं या कहीं पर भी तालाब होते हैं वो तो धार्मिक आस्थाओं के भी बड़े केंद्र होते हैं। तो ऐसा ही एक तालाब है देवताल, जो गोंड काल में विष्णु देवताल के नाम से भी जाना जाता था।
1: अच्छा।
2: और जब 1563 ईस्वी में पुष्टि मार्गीय संत गोस्वामी विट्ठल दास जी ब्रज से गढ़ा पधारे, तब वे देवताल के निकट ठहर गए और वो स्थान तो पवित्र मान लिया गया। तो उनके अनुयायियों ने उस स्थान को बैठक जी का नाम दे दिया
1: जी।
2: और इसके उपरांत देवताल के निकट अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और यहाँ राधा बल्लभ संप्रदाय का ये बहुत बड़ा केंद्र बन गया, और यहाँ पर भी एक पचमठा मंदिर हम देख सकते हैं।
1: क्या बात है। तो देखिए, हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि संस्कारधानी जबलपुर का कोई संबंध ब्रजभूमि से भी हो सकता है जी।
2: जी हाँ, बड़ा गहरा संबंध रहा है ब्रजभूमि से, हम उसको अगली बार लेंगे
1: जी।
2: लेकिन एक और तालाब है गंगा सागर। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उससे और दूसरे भी प्रभावित होते हैं। तो रानी दुर्गावती के वंशज बाद में जो शासक हुए गढ़ा के, वो हैं हृदय शाह। तो हृदय शाह ने भी एक तालाब का निर्माण कराया जिसका नाम है गंगा सागर। तो यह जबलपुर नगर का एक विशाल तालाब है और आज भी अस्तित्व में है, और इसमें अब तो सिंघाड़े की खेती होती है, तो ये कई लोगों की आजीविका का साधन भी है।
1: तब के लगाए पेड़ देखिए आज भी फल दे रहे हैं।
2: जी हाँ, एक और तालाब है हनुमान ताल
1: जी,
2: तो ये लगभग वर्गाकार आकार का है और इस में जबलपुर में ये ठाकुरवाड़ी के पास स्थित है। ये तालाब 1794 में बना। यहाँ पर पहले कोई एक छोटा तालाब रहा होगा गढ़ा के गोंड राज्य का, लेकिन बाद में जब भोंसलों का शासन हुआ तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बनाया चौकोर, जिसे हनुमान ताल के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के चारों तरफ सीढ़ियाँ भी हैं। एक और तालाब है फूटा ताल
1: जी
2: क्योंकि कुछ हिस्सा इसका जो आसपास का किनारा होता है वो फूट गया, तो लोगों ने नाम रख दिया फूटा ताल
1: जी।
2: तो एक जगह है घमापुर, वहाँ पर जब हम सराफा बाजार की तरफ जाते हैं तो फिर ये तालाब पड़ता है और इस तालाब के आसपास अब तो बड़ी घनी बस्ती बस गई है, लेकिन किसी समय ये पानी की आपूर्ति का बड़ा मुख्य स्रोत रहा होगा। ऐसे ही है एक भंवर ताल नाम का तालाब
1: जी,
2: और यहाँ पर भी ये भी बड़ा काफी गहरा तालाब रहा होगा, अब काफी हिस्सा इसका खत्म सा हो गया है
1: और अब वहाँ पर एक उद्यान है जो जबलपुर का सबसे खास उद्यान है, जिसे भंवरताल गार्डन कहते हैं और अक्सर लोग जबलपुर की शामें गुजारने के लिए। तो देखिए रानी के वंशजों ने उस समय जो तालाब बनाए, ताल तलैये बनाए, आज भी कितना सुख दे रहे हैं सबको।
2: ऐसा ही एक और तालाब है सूपा ताल, उसका आकार कुछ सूप की तरह दिखाई देता है तो लोगों ने उसका नाम रख दिया सूपा ताल, और अब तो उसके पास भी बड़ी घनी बस्ती बस गई है। एक और बड़ा नाम आपने सुना होगा मढ़ो ताल
1: जी,
2: है ना, तो मढ़ो ताल भी जो है बस स्टैंड के पास में है और यहाँ पर अब तो ये व्यवसायिक केंद्र बन गया है,
1: जिसे आज हम जबलपुर का मुख्य हृदय स्थल भी कह सकते हैं, सिविक सेंटर के नाम से जानते हैं।
2: जी हाँ, सिविक सेंटर के नाम से जानते हैं। ऐसा ही है गुलाउआ ताल भी, और इसके पास में भी अब अभी है तो अस्तित्व में, लेकिन किसी समय ये सारे ही तालाब बड़े महत्वपूर्ण रहे होंगे और व्यवसायिक गतिविधियों के केंद्र रहे होंगे।
1: जी हाँ,
2: एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है जो पब्लिश्ड है जबलपुर के जो ये गोंडकालीन तालाब हैं इनके ऊपर, और इसमें उन्होंने बड़ा शानदार ये बताया है कि किस तरीके से उस काल में, यानी कि आज से 500 साल पहले जब हमारे पास मशीनें नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस समय भी जो उन्होंने लैंडस्केप का की स्टडी की और उन्होंने जो भूमिगत शिराओं का अध्ययन किया, कौन से तालाब का पानी रिसके भूमिगत होते हुए कहाँ किस तालाब में जाएगा
1: जी।
2: कोई भी तालाब सूखा नहीं रहेगा, है ना। ढलान को समझना, कहाँ पर पथरीली जमीन आ रही है, कहाँ पर किस तरीके का पानी का बहाव होगा, ये सब आजकल हम टोपो शीट के थ्रू करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं टोटल स्टेशन जैसी, और या सैटेलाइट इमेज के थ्रू होता है। बहुत विज्ञान विकसित हो गया, लेकिन उस समय भी उन्होंने उस पूरे, आप समझिए कि अंडरग्राउंड सिस्टम को समझा और कहाँ तालाब होगा उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में प्लेस किया। तो ये पूरा एक विज्ञान है जिसका कि हमको संरक्षण करना चाहिए था,
1: निश्चित रूप से करना चाहिए। आज जब मशीनों और पूरे संसाधनों के साथ हमें मुश्किलें पेश आती हैं, चुनौतियां होती हैं, तो तब तो कितनी सारी रही होंगी। ये सिर्फ उनका कौशल ही था, प्रबंधन था, कि उनके पास उनका अपना विज्ञान था, कि आपने जैसे बताया कि वो महज पानी के आसपास की जगह की वनस्पतियां देखकर बता देते थे कि यहाँ पे पानी कहाँ होगा, कितना गहरा होगा। और ये एक और आश्चर्यजनक बात आपने हमें पूजा जी बताई कि किस तालाब का पानी अंदर से रिसकर किस जगह पर और जा सकता है और फिर से एक तालाब को नया जीवन मिल सकता है। तो रानी ने मतलब जिस विद्या को प्रश्रय दिया, न सिर्फ प्रश्रय दिया बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया, उनके जो अधीनस्थ थे, जो अधीन उनके काम करते थे, वो भी प्रेरित हुए उनसे।
2: हाँ बिल्कुल, रानी कई मायनों में हमको बहुत प्रभावित करती हैं
1: जी।
2: उन्होंने तो विद्या अध्ययन के लिए भी बहुत काम किया। एक ये वो समय था जबकि जबलपुर लघु काशी के रूप में जाने लगा।
1: अच्छा,
2: विद्या अध्ययन का ये स्तर पाया तो दूर दूर से लोग बाग यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत विद्यापीठ का निर्माण किया गया था। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक राधा बल्लभ पचपटा मंदिर है। पचपटा मंदिर जो है वो गोंड पीरियड की, गोंड काल की खास शैली है मंदिर निर्माण की
1: जी।
2: और ये जैसे कि नाम से पता चलता है कि मठ थे
1: जी, जी।
2: तो मठ में जो है साधु संत या विद्यार्थी रहते हैं और वो सीखते हैं। तो एक राधा बल्लभ पचपटा मंदिर था और इसमें एक अभिलेख आज भी हम देख सकते हैं। अभिलेख कहता है कि 1564 ईस्वी में पुष्टि मार्गीय संत थे एक चतुर्भुजा दास
1: जी,
2: वो यहाँ पर पधारे थे
1: जी।
2: और जब रानी ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने यहाँ पर एक संस्कृत विद्यापीठ की रचना की, और इस विद्यापीठ की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली कि जबलपुर उस समय या गढ़ा राज्य उस समय लघु काशी तक कहलाने लगा। तो आज भी आप देखें तो हम उसी कारण से जबलपुर को संस्कार धानी भी कहते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो क्योंकि जो आपने तालाबों की कहानी बताई तो वो जल संस्कार भी हो गया, ये शिक्षा संस्कार भी हो गया, और जबलपुर में कलाओं का भी आज हम देखें तो बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर मिलता है, चाहे वो संगीत कला हो या चित्रकला हो। इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और पूजा जी से हम बात कर रहे हैं, हमारी पुरातत्वविद, और कितनी अच्छी जानकारियां हमें मिल रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो है मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान। तो गोंड जाति, गोंड जनजाति ने जो हमारे लिए काम किया है आज तक, देखिए हमेशा से हम कहते रहे हैं कि पानी के इर्द गिर्द ही, जल के आसपास ही सभ्यताओं का, संस्कृतियों का विकास हुआ है, और जबलपुर, आज का जबलपुर जो है इसकी जीती जागती मिसाल है। पूजा जी ने बताया कि रानी के शासनकाल में और उनके आगे वाली पीढ़ियों के, यहाँ तक कि उनकी दासी तक ने तालाब वहाँ पर बनवाया, तो आज भी उन्हीं तालों के नाम पर जबलपुर के अलग अलग इलाकों के नाम हमें मिलते हैं, कालांतर में भले ही वो तालाब अब नहीं रह गए। पूजा जी, इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपसे आगे भी जारी रहेंगी हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से, लेकिन आज समय पूरा हो चुका है तो हम अपने श्रोताओं से इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो शहीद

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, भाग्य और कर्म की लड़ाई शायद मनुष्य के जीवन की सबसे पुरानी उलझन है। एक ओर विश्वास है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, और दूसरी ओर कर्म की पुकार है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपनी राह स्वयं बना सकता है। दो मत हैं, दो धारणाएं हैं, और इनके बीच सदियों से एक प्रश्न खड़ा है कि सच क्या है। क्या भाग्य की लकीरों में ही लिखी होती है जीवन की हर कहानी? क्या प्रारब्ध के आगे मनुष्य का पुरुषार्थ, उसका संकल्प, उसका साहस सब कुछ व्यर्थ हो जाता है? एक प्रश्न मानव मन को मथता रहा है कि क्या जीवन की डोर केवल प्रारब्ध के हाथों में है, या मनुष्य का पौरुष उस डोर को अपने संकल्प से नई दिशा दे सकता है। और यही ज्ञानी जन उपदेश करते हैं कि नहीं, मनुष्य केवल परिस्थितियों की धारा में बहता हुआ एक तिनका नहीं है, उसके भीतर वो चेतना है जो दिशा बदल सकती है, सोए हुए सामर्थ्य को जगा सकती है और असंभव के द्वार पर भी दस्तक दे सकती है। प्रारब्ध यदि बीते हुए कर्मों की छाया है, तो पुरुषार्थ वर्तमान में जलता हुआ वो दीप है जो भविष्य का मार्ग प्रकाशित करता है। यहाँ प्रश्न केवल भाग्य का नहीं, बल्कि उस मनुष्य का है जो अपने पुरुषार्थ से स्वयं को पहचानने और अपने जीवन को रूप देने का साहस करता है। योग वासिष्ठ इसी पुरुषार्थ की महिमा का उद्घोष करता है, उठो, जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जीवन की दिशा केवल भाग्य नहीं जागृत पुरुषार्थ भी तय करता है। तो आइए योग संवाद कार्यक्रम में आज चर्चा करें पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद के खंडन पर, यानी आज की चर्चा में है भाग्य और कर्म की प्रधानता का विश्लेषण। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: बहुत ही रोचक सा विषय है आज का
1: जी।
0: और हमारे श्रोता भी जरूर इस विषय पर कभी ना कभी जीवन में उन्होंने सोचा होगा। अक्सर ये होता है कि पुरुषार्थ जब सिद्ध नहीं होता है तो मनुष्य भाग्यवादी हो जाता है। तो मेरे मन में प्रश्न यही है कि मनुष्य के पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होती है?
1: बहुत सुंदर सवाल किया आपने, और यही वशिष्ठ जी श्री राम को समझा रहे हैं
0: जी।
1: कहते हैं रघुनंदन, जैसे नीले पीले आदि विभिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अब यहां पर विचार करने योग्य ये है कि शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर का व्यवहार यानी कर्म, हम लोग मन, वचन, कर्म पर बहुत बात करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा
0: जी जी,
1: लेकिन हम लोग इस पर विचार नहीं करते कि हमारा मन क्या सोचता है, हम अपनी वाणी से क्या बोलते हैं और कर्म क्या करते हैं। यानी इन तीनों में आप देखें तो कहने में, बोलने में और करने में इतना भेद है कि हम मन से कैसी कैसी अपनी कल्पनाएं, कैसी कैसी फैंटेसी क्रिएट करते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हम सोच रहे हैं उसके अनुसार क्या हम बोल भी रहे हैं। बोलेंगे तभी जब सोच और बोलने में एकता हो
0: जी, जी।
1: आजकल तो इस पर आधुनिक जो मोटिवेटर हैं वो बहुत सारी लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो, लेकिन हजारों साल पहले भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋषियों ने वो सूत्र बताए हैं, जब शास्त्र विहित हम कर्म नहीं करते। शास्त्र विहित कर्म का अर्थ ये कदापि नहीं है, कई लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि शास्त्रों को थोपा गया है, क्योंकि शास्त्र जिस समय लिखे गए उस समय की दुनिया अलग थी, आज जो दुनिया है वो डिजिटल दुनिया है, आज लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आज के लिए कैसे वो समीचीन हो सकता है। शास्त्र का मतलब होता है कि जो सत्य है, जो नियम है, वो कभी नहीं बदलेगा। नियमों में नए नए नियम, नई नई जानकारियां जुड़ेंगी, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पुरानी जानकारियां गलत हो गई
0: जी जी,
1: है ना, पुरानी जानकारियां भी मौजूद हैं।
0: हाँ।
1: अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर न्यूटन ने दिया तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आज नकार दिया गया,
0: बिल्कुल
1: वो ज्ञान है।
0: हाँ।
1: तो ऐसे ही शास्त्र ज्ञान है, जहां पर सत्य को उद्घाटित करने के नियम बताए गए हैं, इसलिए रित कहा गया। रित मतलब सत्य, सत्य की खोज शास्त्रों में हुई है और ऋषियों ने देखा है, तो इसलिए जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार मन से चिंतन करो, और फिर जो चिंतन करो उसके अनुसार बोलो,
2: बोलो
1: वही आप अपने कर्म में करो, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आपका मस्तिष्क सुनता है। लैंग्वेज, जैसे मनोविज्ञान में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लैंग्वेज पर काम किया, नोम चोम्स्की नाम का एक दार्शनिक हुआ जिसने ये कहा कि आदमी सिर्फ जो है व्याकरण से चलता है, मतलब अपने मस्तिष्क को देखें तो मस्तिष्क में हर शब्द के भाव हैं, शब्द आते ही वो भाव का
2: एक चित्र बनता
1: है। माँ शब्द के आते ही हर व्यक्ति के हृदय में जो भाव बनेगा तो वो माँ शब्द के बिना नहीं बनेगा।
2: बिल्कुल।
1: तो अंत में देखें तो उस भाव को ट्रिगर करने वाला वो शब्द है। तो जो आपका मस्तिष्क शब्द सुनता है, आप दूसरों से जो बोलते हैं आप भी सुनते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ऐसे आदती हो जाते हैं गलत बोलने के कि हम लोग 80% ऐसे विचार करते हैं, ये तो शुद्ध सिद्ध है कि जो विचार हमारे किसी काम के नहीं है उन विचारों में हम संलग्न रहते हैं
2: जी।
1: हम ऐसी भाषा बोलते हैं जिन भाषा को सुन करके हम खुद ही दुखी हो जाएं, खुद ही डिमोरलाइज हो जाएं, हमारा आत्मविश्वास डिग जाए
2: जी।
1: उस हिसाब से फिर हमारा शरीर का जो हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होगी जब शास्त्र के अनुसार मन विचार करेगा। विचार में यहाँ थोड़ा सा मैं विस्तार दूंगा कि श्रवण मतलब शास्त्र को सुने, फिर मनन करें, फिर उसका निधिध्यासन करें। अद्वैत में ये तीन स्टेप कहा जाता है कि श्रवण मनन निधिध्यासन। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप वैसा बोलने भी लगेंगे और जो बोलेंगे वही आपका शरीर सुनेगा, फिर उसी अनुसार वो व्यवहार करेगा। और अगर ऐसा आपने किया तो आपका पुरुषार्थ निश्चित ही सिद्ध होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहि कर जे पर सत्य स्नेहु तेहिके मिले ही न कछ संदेहु। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने सामान्य शब्दों में कि आपका सत्य स्नेह तो हो, और वो कैसे दिखेगा? मन वचन कर्म से दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप कर्म से कुछ और करें, मन से कुछ और सोचें और से कुछ और बोले, है ना?
2: जी,
1: तो
2: जी,
1: ऐसा
2: जी।
1: ये योग होना चाहिए
2: जी, जी,
1: इन तीनों का योग, मन वचन कर्म का
2: जी। अच्छा ये बताएं कि मोह में फंसने का मुख्य कारण क्या है?
1: मोह में फंसने का मुख्य कारण सिर्फ ये है कि मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्र अनुसार कर्म से नहीं। वह पागलों सी चेष्टा करता है, उसकी चेष्टा केवल मोह में डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं।
2: अच्छा,
1: मन से इच्छा करिए और शास्त्रों के अनुसार कर्म न करिए, तो ये चेष्टा जो है वो पागलों की चेष्टा है।
2: जी जी जी जी,
1: विक्षिप्त कर देगी आपको। हा, हा। और आप देखेंगे तो लगभग लोग इसके शिकार हैं।
2: बिल्कुल,
1: है ना? इच्छा हमारी कितनी प्रबल है। राजा बनना किसे नहीं आता, सब चाहते हैं कि राजा बने, लेकिन राजा बनने के लिए जो कर्म है या राजा बन जाने के बाद जो राजा का कर्म है क्या हम कर रहे हैं? तो इसी पर तो पूरी परंपरा चल रही है। मुझे एक दृश्य याद आता है जब राजा और प्रजा की बात आई, समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे वो, तो उनको लगा कि इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुशल राजा है और प्रजा का भरण पोषण करता है। तो इस भ्रम से मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो ये क्या है, उन्होंने कहा तो पत्थर है, कहा इसको तोड़ो। तो कहते अरे साहब ये क्या तोड़ने का मतलब, तो तोड़ा गया तो उसमें एक कीड़ा निकला।
2: कीड़ा?
1: हाँ। कहते हैं कि तुमने अपने राज्य का भरण पोषण करने के लिए जितने साधन किए हैं, इस कीड़े के लिए तुमने क्या किया है? ये भी तो यहाँ जी रहा है।
2: बिल्कुल।
1: तो ये तुम भ्रम पाल के बैठे हो कि तुम जिंदा रख रहे हो,
2: तुम सबको पाल रहे हो,
1: और ये भ्रम मनुष्य को पल जाता है अपनी बुद्धि के साथ।
2: जी, जी।
1: जबकि वो ये बताना चाहते थे कि इस सृष्टि में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का हक है। माँ फलेशु कदाचन जो कहा भगवान कृष्ण ने, इसका बड़ा गूढ़ अर्थ था। मतलब मैं कहता हूँ कि फल के साथ ट्रिगर होने वाले लोग, फल के साथ चलने वाले लोग इस रहस्य को कैसे जानेंगे? वो ये भूल जाते हैं कि फल कुछ और नहीं है, वो कर्म का ही रूपांतरण है। कर्म ही आपका फल बनता है, और आप सोचते हैं कि कर्म फल अलग है, इसीलिए भारत में कर्म फल कहलाता है, या आपके कर्म का फल है। ये मत सोचो कि कहीं और से दैवी दैव के साथ मिला हुआ है, आप ही के कर्म का फल है। ये अलग बात है कि आप अपने उस कर्म को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं कि आपके किस कर्म का ये फल है, लेकिन है वो आप ही के कर्म का फल। एक मैं कथा बताऊं आपको, पूछा गया, जिसे आपने प्रारब्ध की बात की, कहते हैं पूछा गया कि प्रारब्ध कैसे व्यक्ति का पीछा करता है, तो इंद्र कहते हैं कि जैसे हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ के स्तन के पास पहुंच जाता है, किसी और के पास नहीं पहुंचता, ऐसे ही आपका प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब आपका पूर्व कृत कर्म, आपका पीछा कर रहा है। प्रारब्ध कोई फल नहीं है। लोगों ने ये बहुत गलत अवधारणा पाल रखी है कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध आपका कर्म है जिसका कर्म फल आप भोग रहे हैं वो कर्म का फल है,
2: यही फल की प्राप्ति का कारण है।
1: यही फल की प्राप्ति का कारण है कि शास्त्र के अनुसार मनन करें, चिंतन करें और वैसी ही वाणी बोलें। इसी को हम लोग सदकर्म कहते हैं, सद चिंतन, सद विचार और सदकर्म। जब ये तीनों मिलते हैं तो पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम से।
2: अच्छा ये बताएं कि पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है?
1: पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। यानी शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ पुण्य कर्म और शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ पाप कर्म है। इन दोनों में से जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण होता है और शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण होता है। परमार्थ वस्तु मतलब परमात्मा की प्राप्ति का कारण होता है, उस परम चेतना को जानने का मार्ग प्रशस्त करता है जिस चेतना पर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना, महासागर के जल में जो उत्ताल तरंगें उठ रही हैं और गिर रही हैं वो सागर में हो रही हैं, ऐसे ही जो परमार्थ सत्य है उस परमार्थ सत्य में इस पूरे जगत की गति चल रही है, चाहे वो उत्पत्ति हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो प्रलय हो। इन तीनों स्थितियों में जो क्रिया है, क्रिया हो रही है, वो उस परमार्थ सत्य की वजह से हो रही है। यद्यपि सत्य के नाते क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया सत्य से बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या समुद्र की तरंगे समुद्र की वजह से हैं?
2: नहीं,
1: समुद्र की वजह से नहीं है। विचार करके देखें तो वो चंद्रमा और सूर्य के एक आकर्षण का प्रभाव है। देखें तो ज्वार भाटा जो आता है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। बृहद ज्वार बृहद भाटा क्यों आता है? क्योंकि उस समय फुलमून होता है, माने पूर्ण चंद्रमा होता है, ठीक है, या चंद्रमा नहीं होता है तो उनका वो आकर्षण है। अगर वो आकर्षण न होता तो समुद्र में लहर नहीं होती। तो लहर समुद्र में नहीं है, लहर चंद्रमा का आकर्षण है।
2: जी जी।
1: तो ऐसे ही प्रकृति में क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया जो है उस परम परमार्थ जो परम सत्य है उसके स्थिति में हो रही है, वो स्थित है। हाँ, जो अज्ञेय है, जो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ज्ञेय तो आप जगत को जानेंगे, और हमारे यहाँ ऋषि कहते हैं कि नहीं, ज्ञेय वो परमार्थ सत्य है। देखिए ये अंतर हो गया पाश्चात्य और भारतीय दर्शन का, कि भारतीय दर्शन ने कभी भी ज्ञेय प्रकृति की शक्ति को नहीं कहा, उसने परमार्थ सत्य को ज्ञेय कहा, कहा वो जानने योग्य है। हाँ। और राम उसको जानने के अधिकारी हो गए हैं, इसलिए उनको ये ज्ञान दिया जाए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रकृति को ही जानने में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हम भगवान के पास भी भगवान के लिए नहीं जाते, संसार के लिए जाते हैं। आप विचार करके देखें कि संसार का कोई कष्ट, संसार की कोई पीड़ा, संसार का कोई सुख पाने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं। अंततः भगवान ने इतना कुछ दिया, उसके बाद हम संतुष्ट नहीं हुए, जो मांग रहे हैं क्या वो पाके संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। या जिनको मिला है वो संतुष्ट हैं? नहीं हैं। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते, क्योंकि शास्त्रानुकूल हम पुरुषार्थ नहीं करते। शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ जब करेंगे तब इस तरह की दृष्टि पैदा होगी और हम बीतराग को समझ पाएंगे और वैराग्य प्रकट होगा। बीतराग में वैराग्य प्रकट होता है।
2: हाँ।
1: और कई बार संसार की विफलताओं से भी वैराग्य प्रकट होता है।
2: जी,
1: वो बीतराग की स्थिति नहीं है।
2: जी जी जी
1: जी,
2: ये बात निराशा है। निराशा है बिल्कुल। अच्छा, हम प्रारब्ध और कर्म की बात कर रहे हैं, तो योग वासिष्ठ क्या कहता है, प्रारब्ध क्या है, और क्या इस जन्म में प्रारब्ध ही भोगता है मनुष्य?
1: प्रारब्ध को लेकर के मैंने भी बहुत सारे लोगों के विचार देखे। कई ऐसी मान्यताएं हैं जहां लोग कहते हैं कि प्रारब्ध हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध को इस रूप में बताया गया कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं। निश्चित ही कभी भी कोई फल बिना कर्म के बनता ही नहीं है, कर्म का ही फल बनता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम से, कहते हैं कि राम, यह पूर्व जन्म का जो पुरुषार्थ है वह प्रारब्ध है। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ, यानी पूर्व जन्म के कर्म का जो फल है वो है प्रारब्ध, यानी वो भी कर्म का ही फल है। प्रारब्ध कुछ और नहीं है, कर्म का फल है। और व्यक्ति जो है प्रयत्न करके अपने कर्म फल को क्षीण कर सकता है।
2: कैसे?
1: हाँ, इसके लिए वो कहते हैं कि ये जो प्रारब्ध है मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थितियों में डाल देता है, इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए। ये इशारा है वशिष्ठ जी का कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रारब्ध हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में बलपूर्वक डाल देता है या हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रारब्धावशात है, तो कहते हैं इसको प्रयत्न पूर्वक कुचल देना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता।
2: अच्छा,
1: प्रारब्ध
2: बड़ी बात हो,
1: बड़ी बात हो गई। देखिए ऋषि की घोषणा है, राम जी से कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता। तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए जब तक कि पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष स्वयं पूर्णतः शांत न हो जाए।
2: ये बड़ा सुंदर उत्तर हो गया। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि अगर भाग्य में लिखा है, अगर प्रारब्ध है, तो फिर हम कुछ न करें, क्यों करें, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सुंदर जवाब,
1: भाग्यवाद यही तो पोषित हो रहा है इसी बात के लिए। मुझे रामचरितमानस की पंक्तियां याद आ रही हैं। रामचरितमानस की दो पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जैसे एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सोतस फल चाखा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर वही बात कह दी इन्होंने, जो इन्होंने कही है अभी, कि प्रयत्न से अधिक प्रबल
2: फल नहीं हो सकता। अद्भुत बात है, लेकिन मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ इस बात पर कि जब हम योग संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम गीता की भी बात कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस की पंक्तियां आ जाती हैं। मतलब कैसे योगी वो भी थे, कैसी कैसी बातें वो लिख रहे हैं। जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं
1: वो भी कह रहे हैं,
2: तुलसीदास जी कह रहे हैं,
1: नाना पुराण निगमागम संबतम कहा ही उन्होंने।
2: जी जी जी,
1: विभिन्न पुराणों के निगम आगम का संबत बात मैं कर रहा हूँ। इसीलिए कहा गया कि शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ। वही गोस्वामी जी एक जो लिखते हैं, वही है सोई जो राम
2: रचिरा
1: का तर्क बढ़ाओ ईसा का,
2: बिल्कुल
1: है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो भाग्यवादी लोग हैं वो सहारा ले लेते हैं,
2: ले हैं
1: कि भगवान चाहते हैं
2: वही जो राम रचिरा का,
1: क्या वो भूल जाते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सोतस पल चाखा। तो ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम ऐसा नहीं है। और सच ये है, जो जहां तक मुझे लगता है सुनीता जी, कि हमारे ऋषि इतने दूरदृष्टा थे कि वो हमारे मन का प्रबंधन करना चाहते थे। वो जानते थे कि जब कभी आपका मन आपके पुरुषार्थ से छीण हो, विकल हो, तब वो इस सहारे से आप उसे अपने आप को रोकें, वही है सोई जो राम, ताकि आपको विचलन न हो। लेकिन अब ये भी आप सहारा लेकर के पलायन न कर जाएं, इसलिए उन्होंने कहा कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही स्वतः फल चाखा। तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी आपके मतलब प्रयत्न से प्रबल नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं कि जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साह पूर्वक साधन करते रहना चाहिए।
2: अच्छा,
1: ये उपदेश है वशिष्ठ जी का हम सभी के लिए, यद्यपि वो राम जी को कह रहे हैं कि जब तक पूर्व जन्म के अशुभ, माने हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो हमें कबूल नहीं हो या स्वीकार नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इस जीवन में पुरुषार्थ इतना प्रबल कर देना चाहिए। मुझे कथा आती है, एक भारत के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने 24 बार गायत्री का पुरस्करण किया।
2: अच्छा।
1: और उन्होंने जिस जिस के लिए किया, उनके जीवन में बहुत कष्ट था, तो वो तंग आकर के गुरु ने कह दिया कि गायत्री का पुरस्करण करिए और सब दुख दूर हो जाएगा। 24 बार उन्होंने किया और उनकी पत्नी नहीं रही, बेटा नहीं रहा, सब कुछ संसार का चिंता चला गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा गुरु की बात है, मान लिया। और जब 24 पुरस्करण होने के बाद गायत्री प्रकट हो गई और कहते हैं कि जो मांगो, तुम्हारी जो वांछा हो, तो वो हंसने लगे, कहते थे जिनके लिए मांगना था
2: वो चले गए,
1: वो सब चले गए
2: जी।
1: अब तो कोई इच्छा ही नहीं बची, उन्हीं के लिए सब मैं कर रहा था, मेरा तो कोई कभी इच्छा नहीं था,
2: कभी नहीं।
1: मेरा अपनों के साथ जो नाता था, उन्हीं के लिए हम बेहोल थे, परेशान थे, और वो सब के सब चले गए। तब तक तो आप आई नहीं, अब जब वो चले गए तो मांगू किसके लिए। तो गायत्री देवी कहती है, ऐसा मतलब ऋषि ने कहलवाया है, कि जरा पीछे मुड़ के देखो। तो जब पीछे देखते हैं वो, तो उनका प्रारब्ध जल रहा था।
2: अच्छा।
1: यही बात है, पीछे आग लगी थी। कहा देखो ये तुम्हारे जो 24 पुरस्करण का फल है, कि हर पुरस्करण ने तुम्हारे प्रारब्ध को जलाया है, तुम्हारे अशुभ फल को मिटाया है, और उसका परिणाम ये है कि तुम आज भी पुरस्करण कर रहे हो, जबकि तुम कब के डिग चुके होते। 24 तक टिकना मामूली बात नहीं है।
2: जी, जी,
1: तो ऐसे में तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, तुम्हारे प्रयत्न से तुम्हारा पुरुषार्थ, जो अशुभ पुरुषार्थ था, जो शास्त्र विरुद्ध था, वो सब नष्ट हो चुका है। अब तुम निर्मल हो गए हो, अब तो तुम्हारे सामने जगत की सारी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे कदमों में झूलेंगी, क्योंकि तुम अब इस योग्य बने हो।
2: बिल्कुल।
1: तो वो गायत्री को प्रणाम करते हैं, कहते हैं देवी अब क्यों मुझे इस अविद्या के चक्र में पड़ना। अब तो अविद्या का आवरण हट गया आपके आने से, आप तो ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं, अब तुम्हें प्रकाशित हो गया, अब मैं क्या फिर मांगू आपसे। तो बड़ी कृपा की आपने मुझे कहते वो मुक्त हो गए। तो ऐसा भी ऋषियों ने दृष्टि दी है। तो प्रयत्न से हम अपने पूर्व के फल को मिटा सकते हैं, लेकिन उसका आधार प्रयत्न है, उसका आधार प्रारब्ध के अधीन होकर के बैठ जाना या पलायन कर जाना नहीं है।
2: अच्छा, एक बात आप बताएं कि इहलोक और परलोक की हमने बात की, इसकी सिद्धि कैसे होती है?
1: इहलोक और परलोक की सिद्धि, इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है, आप जब शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग करते हैं, शास्त्रानुसार जो उद्योग करते हैं
2: जी,
1: उस उद्योग से इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है। शास्त्र यहाँ बार बार इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र जो है हमारे सुधीजन या गुरुजनों का एक पूरा, शास्त्र गुरु है, जिसे कथा आती है भागवत में, जब जा रहे हैं भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर, तो उद्धव से कहते हैं कि अब मैं इसी मतलब भागवत महाशास्त्र में रहूंगा, भागवत महापुराण में रहूंगा। यद्यपि उसको लोग कह के वो तत्व नहीं निरूपित करते, भागवत महापुराण कहने का आशय उनका ये था कि शास्त्र में रहूंगा, शास्त्रों में जो वचन है ऋषियों के, उनके द्वारा जो देखे गए दृश्य हैं, वो चाहे जितने पुराने हों लेकिन आज भी वो अर्वाचीन है, नवीन है, प्राचीन नहीं है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, सनातन जो धर्म की बात करते हैं हम लोग, एक्चुअल में सनातन धर्म है, जो सत्य है वो सनातन है और सनातन धर्म है। कोई धर्म सनातन नहीं है,
2: धर्म का नाम सनातन नहीं
1: है, सनातन धर्म है। और सनातन की बात शास्त्रों में हुई है, जिस भी शास्त्र में वहां का अध्येता आता है वो सनातन परंपरा की बात करता है,
2: यही सनातन ही धर्म है,
1: सनातन ही धर्म है। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम लोग सनातन धर्म और इन धर्मों की लड़ाई में उलझ जाते हैं, लेकिन जो सनातन है, जो कभी खंडित नहीं होगा, अखंड ज्ञान जो है, अद्वैय ज्ञान जो है, वो धर्म है जिसके सिवाय कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, अद्वैय ज्ञान। और अद्वैय ज्ञान वही ज्ञान है, परमार्थ सत्य, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये है अद्वैय ज्ञान। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये है अद्वैय ज्ञान, सब ब्रह्म में है। लेकिन ये दृष्टि आते ही आप देखिए, मतलब कहता हूं मैं, जो विषम दृष्टि है मनुष्य की, जहां पर हम अपना पराया, मैं और तुम, अहम मम वृत्ति से ग्रसित हो जाते हैं, इस वृत्ति से मुक्ति दिलाती है यही अद्वैय ज्ञान की परंपरा, जहां पर दूसरा कुछ है ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको भी बहुत सुंदर चौपाई में कहा है कि सी राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुगपान। यही है अद्वैय ज्ञान कि सी राम में है। अब यहाँ कोई कहे तुलसी के राम, कहां से तुलसी के राम हो गए भाई, जब पूरा जगत ही राम में है, देख रहे हैं वो, तो कहां राम नहीं है
2: जी।
1: जित देखूं तो तू ही तू है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये कहने के अलग अलग ढंग हैं, लेकिन सी राम में जिसको जगत दिख गया, अब उसके पास भेद दृष्टि कहाँ रही, राम से अलग कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो ये जब दृष्टि आती है, ये है सनातन धर्म, जहां पर आप सर्वव्यापी उस परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को सब में देख सके, इसको कहते हैं ब्राह्मी दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया, अद्वैय ज्ञान योग कहा गया, इसी योग का उपदेश वशिष्ठ जी कर रहे हैं राम जी को।
2: अच्छा, अक्सर लगता है कि जो जीवन है वो व्यर्थ बीत गया है ना
1: जी,
2: जन्म तेरा बातों ही बीत गया
1: जी।
2: तो मैं जानना चाह रही थी कि किन लोगों का जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है।
1: इसके लिए वशिष्ठ जी कहते हैं, जो शास्त्र के अनुसार अपनी श्रवण मनन आदि चेष्टाओं का साधन नहीं करते और चित्त में विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, उन मूढ़ पुरुषों की अत्यंत दूषित भोगेच्छा को धिक्कार है और ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। भोगेच्छा, अब आप देखिए, भोगों की इच्छाएं शांत नहीं होती, ये हमने आज तक के भोगों से सीखा
2: जी।
1: लेकिन नहीं सीख पाए, अनसुना कर दिया। आप भागवत महापुराण में कथा आती है ययाति का प्रसंग
2: जी,
1: सुना होगा, बहुत सारे श्रोताओं ने सुना होगा कि वो भोगों में इतने संलिप्त थे कि उन्होंने अपने पुत्र से भोगों की इच्छा को शांत करने के लिए जवानी मांगना शुरू कर दिया कि आप अपनी जवानी दे दो। और एक उनका अंतिम जो सबसे छोटा पुत्र था, अपने पिता के भोग की इस विह्वलता को देखकर वो समझ गया कि ये भोग कभी शांत नहीं करते, और उस पुरु ने अपना कहते हैं दे दिया उनको कि ले जाओ। और जब लेकर के फिर कुछ दिन उन्होंने भोग किया तो उन्हें लगा कि अरे मेरे पुत्र को भोगों की नश्वरता का बोध है, लेकिन मैं कितना कृतज्ञ हूं कि मैं उससे मांग रहा हूं, बाकी पुत्रों से मांगा उन्होंने नहीं दिया, छोटे ने दे दिया, कहा कि वो उनका गुरु बन गया। तो कई बार हमारे परंपरा में गुरु परंपरा इतनी सुदृढ़ रही है कि पिता का गुरु पुत्र भी बना है, और सबसे छोटा पुत्र जो है वो उनको ज्ञान दे गया, और फिर वो अपने आप को धिक्कारते हैं, वो भोगेच्छा को धिक्कारते हैं और पुरु को उसके यौवन को सौंपते हैं और फिर वो मुक्त हो जाते हैं इससे। तो कहते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। आपको बताऊं, जो लगातार हमेशा विषयों का ही चिंतन कर रहे हैं, विषय विष कहा गया है ऋषियों की दृष्टि में, और हम लोगों के लिए विषय अमृत है, विषय अमृत का पान करते हैं हम लोग, उसी के लिए जी रहे हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि मतलब विषय मारता है, जिसको हमारे भर्तृहरि जी कहते हैं कि भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि भोगों को हमने नहीं, भोगों ने हमें भोगा, तृष्णा ने हमें बूढ़ा कर दिया, वो बूढ़ी नहीं हुई, वो तो जवान अभी भी है। और हर वृद्ध आदमी देखिए, वो तृष्णा के साथ आने वाली पीढ़ियों की योजनाओं को लेके बैठा है ना, जबकि अब आंखों से दिखना बंद हो गया, हाथ पांव कांपने लगे, शरीर नहीं संभल रहा है, लेकिन आज भी परिवार और संसार की चिंता वैसे ही बनी हुई है, तो तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। तो ये कोई भर्तृहरि जैसा आत्मदृष्टा देखेगा, कोई योगी देखेगा, तो इसीलिए राम ये योग जो वासिष्ठ है ये योगियों का प्रसंग है, और इसके लिए हमारे श्रोताओं को निश्चित ही अच्छी अवधारणा के साथ इस ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए।
2: अच्छा, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातें आप कह रहे हैं
1: जी,
2: कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए, मनुष्य बूढ़ा हो गया, सुना बहुत बार सुना, लेकिन असर तो हम पर भी नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल ठीक है।
2: ये असर कैसे हो?
1: हाँ, अभ्यास वही जो अभी हमने शुरू में ही कहा है कि शास्त्र के अनुसार मन वाणी और शरीर का व्यवहार।
2: जी जी,
1: तो
2: जी।
1: अब जैसे शरीर बूढ़ी होगी ये मानकर हम क्या जवानी में व्यवहार करते हैं। फिर मुझे एक कथा याद आ गई कि एक बूढ़े बाबा जा रहे थे कहीं से, तो वो थोड़ी झुकी कमर थी, हाथ में लाठी लिए थे, तो बच्चों ने उन्हें छेड़ा, कहा कि आप तो धनुष के आकार के हो गए, बाबा ये धनुष कहाँ से लिया? तो बाबा ने कहा कि बेटा समय आने पर तुम्हें भी मिल जाएगी।
2: बिल्कुल।
1: तो ये अगर हम शरीर की दशा देख लें तो निश्चित तौर पर हमें मतलब ये समझ में आ जाएगा, तो हम हमारा मतलब अनुशासित हो जाएगा, हम उद्दंड नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे।
2: अच्छा, ये बताएं कि जीवन में परम फल की प्राप्ति कैसे होती है?
1: जीवन में परम फल की प्राप्ति परम स्वार्थ रूप परमात्म साक्षात्कार रूपी फल से होती है। परम स्वार्थ रूप कहा वशिष्ठ जी ने उसे, कि आपके जीवन का परम स्वार्थ, जिसे हम संसार में अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, स्वार्थ बहुत प्यारा शब्द है, लेकिन इसके अर्थ इतने बिगाड़ दिए गए कि हम स्वार्थी शब्द का नाम से घृणा करते हैं कि बड़ा स्वार्थी आदमी है, जबकि स्वार्थ शब्द योगियों का शब्द है, कि जो स्वयं के अर्थ को खोजने में तत्पर हो या जिसने स्वयं के अर्थ को जान लिया वो स्वार्थी है।
2: स्व का अर्थ।
1: तो ये कहते हैं कि परम स्वार्थ जो है वह है परमात्मा साक्षात्कार, और जब आप स्वार्थ को सिद्ध करते हैं तो आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, और स्वरूप साक्षात्कार में अयमात्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है, ज्ञान नहीं होता, बोध होता है। जी, तो ये है परम स्वार्थ।
2: ये बोध और ज्ञान की लड़ाई हम लोग के साथ भी चल रही है।
1: हाँ, हम लोग ज्ञान में सुन ली, हम लोगों ने क्या किया, ऋषियों की भाषा सुन ली, लेकिन न उसका मनन किया, श्रवण तो कर लिया, मनन नहीं किया, मन से विचार ही नहीं करते, और निधिध्यासन तो दूर, तो फिर व्यवहार करने का सवाल ही नहीं होता। तो हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे हो? हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि इसलिए नहीं हो रही। अच्छा, एक बार और विचार करिए कि संसार में कभी किसी के पुरुषार्थ की सिद्धि हुई? पुरुषार्थ का जो परम पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। संसार में तो बंधन ही मिलता है ना, आप बहुत कुछ अर्जित कर लें तो और बड़ा बंधन खड़ा कर लेंगे, और छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। जितनी आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएं, उतनी ही आप इच्छाओं के बंधन में बंधते चले जाएंगे, उतना ही वो संसार की वस्तु आपको और गहरे में बांधेगी। परम पुरुषार्थ तो मोक्ष है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या हो? धर्म। इसीलिए भारत का ऋषि अद्भुत था। धर्म, धर्म में फिर हमने बात की सनातन धर्म, है ना, जो सनातन है उसके अनुसार व्यवहार करना, उसके अनुसार विचार करना, और उसी को बोलना, यह है धर्म। फिर धर्म जब होगा तो जीवन का अर्थ सिद्ध होगा। अर्थ मतलब यहाँ धन ही नहीं है। जीवन भी तो एक धन है, जीवन से बड़ा धन क्या है?
2: बिल्कुल।
1: जीवन पर जब संकट आए तो संसार के समस्त धन को क्या हम दांव पर नहीं लगाते?
2: बिल्कुल।
1: तो जीवन से बड़ा कोई धन नहीं है, और उसी जीवन को संसार के धन को पाने के लिए हम नष्ट करते हैं और बीमार होते हैं, और बीमार होकर फिर बाद में बचाने के लिए धन खर्च करते हैं। ये हम लोगों की मूर्तापूर्ण कहानी है कि पहले हम धन को कमाने के लिए अपने शरीर को बीमार करते हैं, और फिर बीमारी से मुक्त होने के लिए कमाए हुए धन को खर्च करते हैं, और एक दिन मर जाते हैं। तो हमने कमाया कि खोया? क्या किया? कंकड़ पत्थर इकट्ठा किया। तो कहते हैं कि वो तब अर्थ की सिद्धि होती है, और अर्थ जब सिद्ध होता है तब आपके काम की सिद्धि होती है। भारत में पूर्ण काम की बात की गई है। भारत का ऋषि कहता है काम मतलब अधूरी कामनाएं नहीं, पूर्ण काम होना। एक मंत्र बहुत सभी हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, आपको भी शायद स्मृति हो जाए, ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते। मैंने आप देखें तो आपका जो स्वरूप है वो पूर्ण है, और ऐसा पूर्ण है जिसमें से कुछ भी घटा लीजिए उसकी पूर्णता में कमी नहीं होगी। संसार के किसी भी विषय वस्तु को अगर आपसे छीना जाए तो आप अधूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन के अर्थ को प्रकट कर चुके हैं तो वो कभी भी अपूर्ण नहीं होगा। और पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते, उस पूर्ण से जो घटा तो भी पूर्ण, जो शेष बचा वो भी पूर्ण। तो ऐसे में पूर्ण को जब हम जान लेते हैं तो हम पूर्ण काम होते हैं, तो काम की सिद्धि होती है, और जब ऐसे पूर्ण काम हम होते हैं तो मोक्ष तो हो ही जाता है। यही तो मोक्ष है। पूर्ण काम होना मतलब मोक्ष होना, और पूर्ण काम होना मतलब अपने ओम पूर्ण मदह, उस पूर्ण ओम स्वरूप को अनाहत जो ध्वनि है उस तरंग के साथ हो जाना है, अपने स्वरूप को ही नहीं जानना बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप तरंगों की भाषा भी समझना, जिसको क्वांटम फिजिक्स तरंग पदार्थ के रूप में व्यक्त करता है कि एक ही समय में कब कोई वस्तु पदार्थ है कब तरंग है ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही हमारी तरंगों की भी एक दुनिया है जहां पर वो तरंगों की अनाहत नाद कहा हमारे ऋषियों ने उसे, वो तरंगे दो की वजह से नहीं है, आहत नहीं है, वो अनाहत है, वो ओंग है, अनहद नाद। तो उसके द्वारा हम अपने जीवन को,
2: समय बहुत कम रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत संक्षेप में आप बता दें कि जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि क्या है।
1: सुंदर कहा आपने, जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि है विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए।
2: अच्छा,
1: अब देखिए ये भी एक ऋषि का कितना गूढ़ तत्व चिंतन है। हम लोग दोष के साथ गुण को ग्रहण करते हैं। वशिष्ठ जी के ही इस योग वाशिष्ठ में एक प्रकरण आता है जिसमें कहते हैं कि शुद्ध गाय का दूध भी अगर चमड़े के थैले में दूहा जाए तो वो अपवित्र हो जाए। तो ऐसे ही दोष के साथ अगर गुण ग्रहण किया गया तो गुण भी दोषपूर्ण हो जाएगा। तो दोष का त्याग कर आप गुणों को ग्रहण करें। और दोष का त्याग कैसे होगा? विचार पूर्वक होगा, क्योंकि बिना विचारे आप दोष के साथ होते हैं, विचार पूर्वक आप दोषों को देख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रतिक्रिया मत करें, आप रिस्पॉन्ड करें। रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्डिंग व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए कि हम रिस्पॉन्स करें। तो इस तरीके से, और वो तभी होगा जब विचार पूर्वक हो। और कहा भी गया हमारे यहाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना। तो पछताने वाली बात तब होती है जब दोष के साथ गुण ग्रहण किया जाता है और विचार पूर्वक दोष को त्याग करके गुणों को ग्रहण किया जाए।
2: तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही शशिकांत जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद के खंडन विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें, नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। आज हम आपसे चर्चा करेंगे पद्म भूषण से सम्मानित महान चित्रकार कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई के बारे में। साथियों, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कला समाज का दर्पण है, समय का दस्तावेज है और परिवर्तन का माध्यम है। और जब हम के शंकर पिल्लई के बारे में बात करते हैं तो केवल एक कलाकार के बारे में नहीं बोल रहे होते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक युग के बारे में, एक आंदोलन के बारे में।
1: बिल्कुल, 31 जुलाई 1902 को केरल के छोटे से शहर कायमकुलम में जन्मे के शंकर पिल्लई ने अपने जीवन की शुरुआत बेहद साधारण परिस्थितियों में की थी। उनके पिता एक साधारण डाक कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन इस साधारण परिवार के बच्चे में छिपी थी एक असाधारण प्रतिभा, एक ऐसी प्रतिभा जो आगे चलकर भारत की पहचान बनी।
0: के शंकर पिल्लई ने कभी कोई औपचारिक कला शिक्षा नहीं ली, उनके हाथ में कोई महंगा ब्रश नहीं था, कोई विदेशी डिग्री नहीं थी, लेकिन था तो बस एक अटूट जुनून, चित्रकारी का जुनून, अभिव्यक्ति का जुनून, सच बोलने का जुनून। बचपन में वे दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे, स्कूल की किताबों के हाशिए पर अपने शिक्षकों के कार्टून बनाते थे, और यही शौक, यही जुनून उन्हें मुंबई ले गया, सपनों के शहर में, जहां संघर्ष था, चुनौतियां थीं, लेकिन अवसर भी थे।
1: बिल्कुल, तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं के शंकर पिल्लई की जीवन यात्रा की ओर। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव से और पहुंचती है पूरे भारत के दिलों तक। ऐसी यात्रा जिसमें है संघर्ष के अनगिनत पड़ाव, सपनों की उड़ान, असफलताओं का सामना और अंततः सफलता का वो शिखर जो आज भी हम सबको प्रेरित करता है।
0: केशव शंकर पिल्लई का जन्म 31 जुलाई 1902 को केरल के त्रावणकोर राज्य के कायमकुलम नामक छोटे से शहर में हुआ था। ये स्थान आलप्पुझा जिले में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बैकवाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। उनका जन्म एक परंपरागत नायर परिवार में हुआ था, जो केरल की प्रमुख जातियों में से एक है। उनके पिता केशवर नायर एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, वे डाक विभाग में काम करते थे और परिवार की आय बहुत सीमित थी। माता लक्ष्मी अम्मा एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं, जो घर परिवार की देखभाल करती थीं। परिवार में शंकर के अलावा और भी भाई बहन थे और सभी को एक साथ पालना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था।
1: केरल उस समय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था और शंकर के माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि आर्थिक तंगी थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा पर समझौता नहीं किया। शंकर बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और कल्पनाशील थे। कायमकुलम की हरी भरी प्रकृति, नारियल के पेड़, बैकवाटर्स की नावें और स्थानीय बाजार का रंगीन जीवन, ये सब उनकी कल्पना को उड़ान देते थे। वे घंटों बैठकर लोगों को देखते और उनकी विशेषताओं को अपने दिमाग में उतारते रहते थे।
0: उनकी माँ को याद है कि 5-6 साल की उम्र में ही शंकर घर की दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता का चेहरा दीवार पर बना दिया, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। चेहरे की समानता इतनी सटीक थी कि लोग पहचान गए कि ये किसका चित्र है।
1: बिल्कुल, और माँ अक्सर चिंतित होती थी कि शंकर अपनी पढ़ाई की किताबों में भी चित्र बनाते रहते थे। गणित की किताब के हाशिए पर फूल, पत्ते, चिड़िया और लोगों के चेहरे बने होते थे। कभी कभी तो पूरा पन्ना ही चित्रों से भर जाता था और पाठ पढ़ने के लिए जगह नहीं बचती थी।
0: शंकर की प्रारंभिक शिक्षा कायमकुलम के स्थानीय स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में औसत दर्जे के छात्र थे। गणित उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इतिहास और भूगोल में उनकी रुचि थी, क्योंकि इन विषयों में चित्र और नक्शे होते थे। स्कूल के शिक्षक उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि वे कक्षा में ध्यान ही नहीं देते थे। एक बार संस्कृत के शिक्षक पाठ पढ़ा रहे थे और शंकर अपनी कॉपी में कुछ बना रहे थे। शिक्षक ने गुस्से में कॉपी छीन ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शंकर ने उनका ही एक बेहद सटीक कार्टून बनाया है जिसमें वे संस्कृत श्लोक बोलते हुए दिख रहे हैं, तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। उस दिन के बाद वे शिक्षक शंकर को प्यार से छोटे चित्रकार कहने लगे।
1: जी हाँ, और स्कूल में शिक्षक के कुछ करीबी दोस्त थे जो उनकी कला के बेहद प्रशंसक थे। वे अक्सर शंकर से अपने चित्र बनवाते और अपने घर ले जाकर रखते थे। धीरे धीरे पूरे स्कूल में शंकर की प्रतिभा की चर्चा होने लगी। 10वीं कक्षा में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। स्कूल में वार्षिक उत्सव था और प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें विद्यार्थियों को महात्मा गांधी का चित्र बनाना था। शंकर ने जो चित्र बनाया वो इतना जीवंत था कि देखने वालों को लगा जैसे गांधी जी खुद वहां खड़े हों। उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला और स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, ये लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा।
0: हाई स्कूल पूरा करने के बाद शंकर ने त्रावणकोर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। ये केरल का एक प्रतिष्ठित कॉलेज था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए शंकर को छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं थी और उन्हें बहुत कठिनाई से अपना खर्च चलाना पड़ता था। कॉलेज में शंकर ने बीए में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और चित्रकारी में ज्यादा लगता था। वे कक्षाओं में बैठकर प्रोफेसरों के कार्टून बनाते रहते। एक बार इतिहास के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और शंकर उनका चित्र बना रहे थे। प्रोफेसर ने पूछा, शंकर मैं क्या पढ़ा रहा हूं? शंकर खड़े हो गए और बोले, सर मुगल साम्राज्य के बारे में। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा तो तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? शंकर ने झिझकते हुए अपनी कॉपी दिखाई। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, कला अच्छी है लेकिन परीक्षा में ये नहीं चलेगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, कॉलेज के दिनों में शंकर को अपनी आर्थिक स्थिति से भी बहुत जूझना पड़ा था। कई बार उनके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। वे दोस्तों से किताबें उधार लेते और पूरी रात जाग कर पढ़ते थे। खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ती थी। कभी कभी तो केवल चाय और बिस्किट से ही उनका दिन गुजरता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने शंकर की हिम्मत नहीं तोड़ी। उन्होंने कॉलेज की पत्रिका के लिए चित्र बनाने शुरू कर दिए। कॉलेज के वार्षिक समारोह के पोस्टर भी वे बनाते थे और धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी।
0: एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा, शंकर तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो डिग्री कैसे मिलेगी? शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे लगता है कि कला ही मेरा असली विषय है, मैं इसी में अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। अंततः शंकर ने अपनी डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन उनके मन में स्पष्ट था कि उन्हें एक कलाकार बनना है, किसी ऑफिस में बाबू नहीं। 1920 के दशक के अंत में जब शंकर की उम्र लगभग 25-26 साल की थी, उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गांव और परिवार को छोड़कर मुंबई जाने का फैसला लिया। उस समय मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था और यहाँ अवसरों की कमी नहीं थी।
1: लेकिन ये निर्णय इतना आसान नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि शंकर कोई सरकारी नौकरी कर ले और परिवार को आर्थिक सहारा दे। माँ को डर था कि बड़े शहर में उनका भोला भाला बेटा कैसे रहेगा, लेकिन शंकर ने अपने सपनों को पूरा करने की तो ठान ली थी।
2: है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: मुंबई पहुंचने पर शंकर के पास बहुत कम पैसे थे। वे दादर के एक छोटे से कमरे में रहने लगे जहाँ तीन और लोग रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि चारों लोगों के बिस्तर फर्श पर एक के बाद एक लगाने पड़ते थे। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। शंकर को रोजगार नहीं मिल रहा था। उन्होंने कई जगहों पर अपने चित्र दिखाए, लेकिन किसी ने भी उन्हें उस वक्त काम नहीं दिया।
0: एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे। उन दिनों की याद करते हुए शंकर ने बाद में कहा था, मुंबई की सड़कों पर मैंने भूख का असली मतलब समझा, लेकिन हर भूखी रात के बाद मुझे लगता था कि अगली सुबह जरूर कुछ बेहतर होगा। जब हालात बहुत बिगड़े तो शंकर को जीवन चलाने के लिए कोई भी काम करना पड़ा। उन्होंने पहले एक कपड़ा मिल में क्लर्क की नौकरी की। काम बहुत नीरस था। रोज लेजर के आंकड़े रोज लेजर में आंकड़े दर्ज करने होते थे, लेकिन वेतन नियमित मिलता था और कम से कम पेट भर भोजन तो हो ही जाता था।
1: जी हाँ, और मिल में काम करते हुए भी शंकर ने अपनी कला का अभ्यास जारी रखा। शाम को काम के बाद वे अपने छोटे से कमरे में घंटों स्केच बनाते रहते थे। वे मुंबई की सड़कों पर घूमते, लोगों को देखते और उनके चेहरों को अपनी ड्राइंग बुक में उतारते थे। इसके बाद उन्होंने रेलवे में भी कुछ समय काम किया। ये नौकरी थोड़ी बेहतर थी क्योंकि इसमें कभी कभार यात्रा करने का मौका मिलता था। ट्रेन में बैठकर शंकर विभिन्न यात्रियों के चित्र बनाते। किसान, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं, हर चेहरे में एक कहानी होती थी और शंकर उस कहानी को पकड़ने की पूरी कोशिश करते थे।
0: 1932 का साल शंकर के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना। एक दिन उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध अखबार द फ्री प्रेस जर्नल के दफ्तर जाने का साहस किया। उन्होंने अपने कुछ बेहतरीन कार्टून एक फाइल में रखे और संपादक से मिलने की इच्छा जताई।
1: रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वे पूरे दिन वहां बैठे रहे। शाम को जब संपादक बाहर निकले तो शंकर ने उनके सामने अपनी फाइल रख दी। संपादक ने कहा, तुम्हारी कला में दम है, लेकिन कार्टून बनाना सिर्फ अच्छी ड्राइंग नहीं है, इसमें समाज को समझना पड़ता है, राजनीति को समझना पड़ता है और सबसे जरूरी व्यंग को समझना पड़ता है। क्या तुम ये कर सकते हो?
0: शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। संपादक ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगले हफ्ते मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बैठक है जिसमें पानी की कमी के मुद्दे पर चर्चा होगी, इस पर एक कार्टून बनाकर लाओ। शंकर ने पूरे हफ्ते मेहनत की। उन्होंने अखबार पढ़े, पानी की समस्या को समझा और एक शानदार कार्टून बनाया जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर को प्यासे मुंबई वासियों से घिरे हुए दिखाया गया था, जबकि कमिश्नर खुद नारियल पानी पी रहे थे।
1: क्या बात है। और जब शंकर ये कार्टून लेकर गए तो संपादक बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बधाई हो शंकर, तुम्हारा ये कार्टून कल के अखबार में छपेगा। और अगले दिन जब शंकर ने अपना पहला प्रकाशित कार्टून देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों के संघर्ष के बाद उनकी मेहनत रंग ला रही थी। द फ्री प्रेस जर्नल में शंकर के कार्टून नियमित रूप से छपने लगे। शुरुआत में उन्हें प्रति कार्टून कुछ रुपए मिलते थे, जो उनकी रेलवे की नौकरी से ज्यादा नहीं थे, लेकिन संतुष्टि उन्हें बहुत मिलती थी।
0: धीरे धीरे शंकर के कार्टून मुंबई में चर्चा का विषय बनने लगे। लोग सुबह अखबार खोलते और सबसे पहले शंकर का कार्टून देखते। उनके कार्टूनों में समाज की विसंगतियां, राजनीतिक पाखंड और ब्रिटिश शासन की नीतियों पर तीखा व्यंग होता था। 1930 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। शंकर ने अपनी कला को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को उजागर करते थे।
1: जी हाँ, और एक बार तो उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसमें ब्रिटिश वायसराय को एक विशाल हाथी के रूप में दिखाया गया था जो भारत के गरीब किसानों को कुचल रहा था। ये कार्टून इतना प्रभावशाली था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अखबार के संपादक को धमकी तक दे दी, लेकिन संपादक ने शंकर का साथ दिया और कहा कि कला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कॉमन मैन का जन्म एक ऐतिहासिक पल। 1930 के दशक के मध्य में शंकर ने अपने सबसे प्रसिद्ध कार्टून चरित्र कॉमन मैन की रचना की। ये विचार उन्हें कैसे आया, इसके बारे में भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है।
0: एक दिन शंकर मुंबई की सड़क पर चल रहे थे। उन्होंने देखा एक साधारण आदमी धोती कुर्ता पहने, चश्मा लगाए, थोड़ा गंजा, बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न खुशी न गम, बस एक शांत स्वीकृति कि जो होना है वो होगा। शंकर ने सोचा कि ये चेहरा तो करोड़ों भारतीयों का चेहरा है, वो आम आदमी जो हर रोज संघर्ष करता है, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाता है, महंगाई से परेशान होता है, राजनेताओं के वादे सुनता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता।
1: बिल्कुल, जब शंकर ने पहली बार इस चरित्र को कार्टून में इस्तेमाल किया तो पाठकों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। लोगों ने लिखा, ये तो मैं हूँ, ये मेरे पिता हैं, और कईयों ने लिखा, ये तो हर भारतीय है। कॉमन मैन भारत के आम आदमी का प्रतीक बन गया। शंकर के हर कार्टून में ये चरित्र किसी न किसी रूप में दिखाई देता। कभी महंगाई से परेशान, कभी भ्रष्ट नेताओं से पिसता, कभी सरकारी योजनाओं का इंतजार करता और कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में डूबा हुआ।
0: आज 80 साल बाद भी कॉमन मैन भारतीय कार्टून का सबसे पहचाना जाने वाला चरित्र है। जैसे जैसे शंकर की ख्याति बढ़ी, अन्य अखबारों ने भी उन्हें काम के लिए बुलाया। 1948 से पहले शंकर ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कार्टून बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके कार्टून बहुत चर्चित रहे। हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल सभी शंकर के कार्टूनों में नजर आते थे।
1: बिल्कुल, लेकिन शंकर का असली फोकस भारत की समस्याओं पर था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब उनके कार्टूनों के विषय थे। लेकिन उनके कार्टून कभी नकारात्मक नहीं होते थे। उनमें हमेशा एक आशा की किरण होती थी, एक विश्वास की भारत बेहतर होगा। 1940 के दशक में जब भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था, शंकर के कार्टून और भी तीखे और प्रभावशाली हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मौन लेकिन शक्तिशाली हथियार बन गए थे।
0: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेता शंकर के कार्टूनों की सराहना करते थे। गांधी जी ने एक बार कहा था, शंकर का कार्टून 1000 शब्दों से ज्यादा प्रभावी है।
1: और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये शंकर के जीवन का भी एक नया अध्याय था। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी एक पत्रिका शुरू करनी चाहिए जो पूरी तरह से कार्टून और व्यंग पर आधारित हो। इसके लिए पैसों की जरूरत थी। शंकर ने अपनी कुछ जमा पूंजी लगाई और कुछ मित्रों से उधार ले लिया। 1948 में उन्होंने शंकर्स वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत कर दी। पहला अंक छपा तो शंकर की धड़कनें और तेज हो गईं। क्या लोग इसे पसंद करेंगे? क्या ये बिकेगी? उनकी सारी पूंजी दांव पर लगी थी।
0: लेकिन उनकी चिंता निराधार निकली। पहला अंक हाथों हाथ बिक गया। लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की। अखबारों में समीक्षाएं छपी। एक नई तरह की पत्रिका, व्यंग का अद्भुत नमूना। शंकर ने भारतीय पत्रकारिता में नया अध्याय जोड़ा। शंकर्स वीकली जल्दी ही भारत की सबसे लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक बन गई। हर सप्ताह लाखों लोग इसका इंतजार करते थे। पत्रिका केवल कार्टून नहीं थी, इसमें राजनीतिक व्यंग, सामाजिक टिप्पणी, कहानियां, कविताएं और बच्चों के लिए एक अलग ही सेक्शन होता था।
1: और पत्रिका का एक विशेष आकर्षण यू सेड इट कॉलम था, जिसमें प्रसिद्ध लोगों के विरोधाभासी बयानों को एक साथ रखकर व्यंग किया जाता था। राजनेता जो आज कुछ कहते थे और कल उसके उलट बोलते थे, उनके दोनों बयान को एक साथ छापा जाता था। ये बेहद लोकप्रिय था और राजनेताओं को सावधान रहने पर मजबूर भी करता था। पत्रिका में नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मुरारजी देसाई सभी के कार्टून छपते थे, लेकिन शंकर का व्यंग कभी व्यक्तिगत नहीं होता था। वे नीतियों और कार्यों पर टिप्पणी करते थे, व्यक्तियों पर हमला नहीं करते थे।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू और शंकर पिल्लई के बीच एक अनोखा रिश्ता था। नेहरू शंकर के कार्टूनों के बड़े प्रशंसक थे, हालांकि उनमें अक्सर खुद नेहरू का मजाक बनाया जाता था। एक बार शंकर ने एक कार्टून बनाया जिसमें नेहरू को दिखाया गया था कि वे एक साथ बहुत सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ उनके हाथ से गिर रहा है। ये उनकी अति व्यस्तता पर व्यंग था। जब ये कार्टून छपा तो नेहरू के कुछ करीबी सहयोगियों ने उन्हें शिकायत की कि शंकर बहुत ज्यादा आजादी ले रहे हैं। लेकिन नेहरू ने हंसते हुए कहा, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं वाकई बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कार्टून मुझे याद दिलाता है कि मुझे प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।
1: जी हाँ, और एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार नेहरू ने शंकर को 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री निवास में बुलाया। शंकर घबराए हुए थे कि शायद किसी कार्टून पर आपत्ति होगी, लेकिन नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ कार्टून बहुत पसंद आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मूल प्रतियां मुझे दे दो। मैं उन्हें अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ। क्या था, शंकर हैरान रह गए। प्रधानमंत्री अपने ही मजाक उड़ाने वाले कार्टून अपने कमरे में लगाना चाहते हैं। नेहरू ने समझाया, ये कार्टून मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ और आम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
0: शंकर भी नेहरू के विजन की सराहना करते थे, हालांकि उनके कार्टूनों में नेहरू की आलोचना जारी रहती थी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शंकर ने एक बहुत मार्मिक कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन नेहरू की तस्वीर के सामने सिर झुकाए खड़ा था और आंखों में आंसू थे। कैप्शन था, गुरु चला गया। ये कार्टून देखकर करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो गईं।
1: शंकर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी किताबें प्रकाशित करे। साल 1957 में उन्होंने चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट CBT की स्थापना की। शुरुआत में काफी मुश्किलें आईं। प्रकाशक कहते थे कि बच्चों की किताबों में पैसा नहीं है, लेकिन शंकर ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पैसा लगाया और पहले किताबें प्रकाशित की।
0: CBT की किताबें रंगीन और आकर्षक होती थीं। कहानियां भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित होती थी। कीमत इतनी कम रखी जाती थी कि मध्यम वर्ग का बच्चा भी खरीद सके। धीरे धीरे CBT की किताबें लोकप्रिय हो गईं। आज CBT ने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं और करोड़ों बच्चों तक पहुंची हैं।
1: शंकर खुद भी बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे और चित्र बनाते थे, लेकिन शंकर का सबसे बड़ा सपना था बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां वे अपनी रचनात्मकता को खुलकर अभिव्यक्त कर सकें, जहां वे कला, संगीत, नृत्य, थिएटर सीख सकें, जहां कोई परीक्षा ना हो, कोई नंबर ना हो, बस सीखने का आनंद हो।
0: 1 नवंबर 1961 को बाल भवन का उद्घाटन हुआ। नेहरू खुद इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, शंकर ने जो काम किया है वो केवल एक इमारत बनाना नहीं है, उन्होंने बच्चों के सपनों के लिए एक घर बनाया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: बिल्कुल। और बाल भवन में विभिन्न विभाग थे, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, साइंस और फोटोग्राफी। बच्चे शाम को स्कूल के बाद यहाँ आते और अपनी रुचि की चीजें सीखते थे। शंकर खुद अक्सर बाल भवन आते थे। वे बच्चों से बातचीत करते, उनके चित्र देखते और उन्हें प्रोत्साहित करते। कई बच्चे जो आज सफल कलाकार हैं, उन्हें याद है कि कैसे शंकर अंकल ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे ही बनाते रहो। बाल भवन की ये सफलता के बाद देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन खोले गए। आज भी ये संस्थाएं लाखों बच्चों को कला और शिक्षा दे रही हैं।
0: शंकर ने एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का विचार दिया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में शंकर ने सुझाव दिया, क्योंकि नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और तब से हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
1: शंकर्स वीकली में हर साल बाल दिवस पर एक विशेष अंक निकलता था जिसमें बच्चों की रचनाएं, कहानियां, चित्र छापे जाते थे। देश भर के बच्चे अपनी रचनाएं भेजते थे और चुनी गई रचनाएं पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। किसी बच्चे के लिए शंकर्स वीकली में छपना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। शंकर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वे अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखते थे। उनका विवाह केरल की एक शिक्षित महिला से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत संयमी और समझदार थी, जो शंकर के काम को समझती थी।
0: उनकी बेटियों को याद है कि कैसे पिता रविवार की शाम को उनके साथ बैठते और उन्हें चित्र बनाना सिखाते थे। वे बच्चों को कभी दबाव नहीं डालते थे कि वे भी कलाकार बने, बल्कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने की आजादी देते थे। एक रोचक बात, शंकर घर पर बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके पास महंगी गाड़ी नहीं थी, ना ही बड़ा बंगला। वे दिल्ली के एक साधारण इलाके में मध्यम आकार के घर में रहते थे। उनकी पत्नी रसोई में खुद ही खाना बनाती थीं।
1: शंकर अक्सर देर रात तक काम करते थे और सुबह देर से उठते थे। उनकी पत्नी को ये आदत बहुत परेशान करती थी, लेकिन वो जानती थी कि रात का वो समय जब घर में शांति होती थी, शंकर के लिए सबसे रचनात्मक समय था। शंकर केवल एक कलाकार नहीं थे, वे एक सामाजिक चिंतक भी थे। उन्हें समाज की समस्याओं की गहरी समझ थी। उन्होंने कॉमन मैन को सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए अनगिनत बार देखा था और दिखाया भी था।
0: शंकर जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों ने उन्हें बहुत दुखी किया। उन्होंने कई मार्मिक कार्टून बनाए। महिला सशक्तिकरण में भी उनका विश्वास था उनकी कार्टूनों में महिलाएं कमजोर नहीं दिखाई जाती थीं। उन्होंने कई बार समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर कार्टून बनाए।
1: व्यक्तिगत रूप से शंकर बेहद विनम्र और सरल इंसान थे। उन्हें कोई अहंकार नहीं था। युवा कलाकार जब उनसे मिलने आते तो वे बहुत प्यार से मिलते और उन्हें मार्गदर्शन देते। 1960 और 70 के दशक में शंकर ने विभिन्न देशों की यात्राएं भी की। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया भी जाता था।
0: उन्होंने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों का दौरा किया। हर जगह उनके कार्टूनों की प्रदर्शनी लगाई गई। विदेशी कलाकार उनकी शैली से बहुत प्रभावित होते थे। एक बार लंदन में एक प्रदर्शनी के दौरान एक अंग्रेज कार्टूनिस्ट ने शंकर से कहा, तुम्हारे कार्टून में जो गर्माहट और मानवीयता है वो पश्चिमी कार्टूनों में नहीं होती। तुम लोगों पर व्यंग करते हो लेकिन नफरत नहीं फैलाते।
1: तब शंकर ने जवाब दिया था, ये भारतीय संस्कृति का असर है। हम समस्याओं को दिखाते हैं लेकिन व्यक्तियों से नफरत नहीं करते। हमारा मकसद सुधार लाना है, ना कि किसी को नीचा दिखाना। विदेश यात्राओं के दौरान शंकर ने कई प्रसिद्ध हस्तियों से मुलाकात भी की। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी, अमेरिकी राष्ट्रपति, विभिन्न प्रधानमंत्रियों और कई प्रसिद्ध कलाकारों से मुलाकात की। लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद उनमें कोई अहंकार कभी नहीं आया।
0: एक दिलचस्प घटना है। 1965 में उन्हें मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टून प्रतियोगिता में जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां दुनिया भर के 50 देशों से कार्टूनिस्ट आए थे। शंकर भारत के प्रतिनिधि थे। प्रतियोगिता में एक युवा रूसी कार्टूनिस्ट ने बहुत प्रभावशाली काम प्रस्तुत किया। जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो कुछ पश्चिमी जजों ने उस रूसी कलाकार को पुरस्कार देने में आपत्ति जताई, क्योंकि वे सोवियत यूनियन के थे और शीत युद्ध का दौर था। बाद में उस कलाकार ने शंकर से मिलकर कहा, आपने मेरे लिए न्याय किया, मैं आपका आभारी हूं। शंकर ने जवाब दिया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ सही किया।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में शंकर ने भारतीय राजनीति पर लगातार व्यंग किए। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आपातकाल तक हर महत्वपूर्ण घटना पर उनके कार्टून छपते थे। 1962 के चीनी आक्रमण पर उनके कार्टून बेहद प्रभावशाली थे। उन्होंने भारत की तैयारियों की कमी और सरकार की लापरवाही को दिखाया, लेकिन साथ ही भारतीय सैनिकों के साहस की भी सराहना की।
0: 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव हुए तो शंकर ने एक यादगार कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन को मतपेटी के सामने खड़े दिखाया गया था और उसके चेहरे पर संकल्प का भाव था। कैप्शन था, अब मेरी बारी है। ये कार्टून लोकतंत्र की विजय का प्रतीक बन गया।
1: बिल्कुल। और आर के लक्ष्मण, जो आगे चलकर भारत के सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों में से एक बने, शंकर के ही मार्गदर्शन में आगे बढ़े थे। लक्ष्मण अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, शंकर मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कार्टून केवल मजाक नहीं है, ये समाज का दर्पण है। अब्बू अब्राहम, मारियो मिरांडा जैसे कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने शंकर से प्रेरणा ली। शंकर का स्टूडियो युवा कलाकारों के लिए हमेशा खुला रहता था। कोई भी आकर अपना काम वहां दिखा सकता था।
0: शंकर अक्सर कहते थे, प्रतिभा तो बहुत लोगों में होती है लेकिन मेहनत और निरंतरता से ही सफलता मिलती है, और सबसे जरूरी है ईमानदारी। अपनी कला के प्रति ईमानदार रहो। शंकर को उनके जीवन काल में कई सम्मान मिले, लेकिन वे इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं बल्कि कला की महत्ता के रूप में देखते थे। 1966 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शंकर से कहा, आपने कला के माध्यम से समाज को दर्पण दिखाया है। यह सम्मान केवल आपकी कला के लिए नहीं बल्कि आपके सामाजिक योगदान के लिए भी है।
1: और तब शंकर ने विनम्रता से जवाब दिया, महोदय ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, ये उन करोड़ों कॉमन मैन का है जिनकी आवाज में अपने कार्टून के जरिए उठाने की कोशिश करता हूँ। साल 1974 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हालांकि उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला लेकिन नामांकन ही उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
0: 1980 के दशक में शंकर की उम्र 80 के पार हो चुकी थी लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। वे अभी भी नियमित रूप से कार्टून बनाते थे, बाल भवन जाते थे और युवा कलाकारों से मिलते थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। 1989 में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन अस्पताल में भी वे अपनी स्केच बुक साथ में रखते। एक बार उनके डॉक्टर ने उनसे कहा, आप अब आराम कीजिए, इतनी उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, कला करना मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरी सांस है, जब तक सांस है तब तक कला रहेगी।
1: और वो दिन 26 दिसंबर 1989 की शाम, जब शंकर ने अपनी अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अखबारों में श्रद्धांजलि छपी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश भर के लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा, शंकर जी ने अपनी कला से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। उनका कॉमन मैन हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि सरकार किसके लिए है। आज देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन हैं, जो लाखों बच्चों को कला की शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली का बाल भवन आज भी सक्रिय है और हर साल हजारों बच्चे वहाँ आते रहते हैं।
0: CBT आज भी बच्चों के लिए किताबें प्रकाशित कर रहा है। 60 साल में इसने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं, जो 100 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। हालांकि शंकर्स वीकली अब प्रकाशित नहीं होती, लेकिन इसने भारतीय व्यंग पत्रकारिता की नींव रखी। आज के कई व्यंग कार्यक्रम और पत्रिकाएं शंकर्स वीकली से प्रेरित है।
1: आज के कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। उनकी शैली, सरल रेखाएं, गहरा संदेश और मानवीय स्पर्श आज भी कलाकारों को बेहद प्रभावित करता है।
0: के शंकर पिल्लई का जीवन एक साधारण केरल के लड़के से लेकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट और समाज सेवक बनने की अद्भुत यात्रा है। उन्होंने साबित किया कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और बदलाव लाने का शक्तिशाली माध्यम है। बचपन में दीवारों पर कोयले से चित्र बनाने वाला वो बच्चा, जिसकी माँ चिंतित रहती थी कि ये शौक पढ़ाई में बाधा न बन जाए, आखिरकार देश का गौरव बन गया।
1: जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर भूखे पेट घूमने वाला वो युवक, जिसने कभी हार नहीं मानी, आजाद भारत की आवाज बन गया। वो कलाकार जिसने अपने कॉमन मैन के जरिए करोड़ों भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। शंकर पिल्लई केवल एक कार्टूनिस्ट नहीं थे, वे एक दूरदर्शी, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान थे, जो अपने देश और उसके लोगों से बेइंतहा प्यार करते थे।
0: उनका जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखो, मेहनत करो, अपनी प्रतिभा को समाज की सेवा में लगाओ और कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करो। आज भी जब हम कॉमन मैन को देखते हैं, हमें शंकर की याद आती है। वो महान कलाकार जिसने अपनी कला से लाखों दिलों को छुआ और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। कला जीवन का दर्पण है और कलाकार समाज का प्रहरी। के शंकर पिल्लई। श्रोताओं, तो आज हमने प्रस्तुत कार्यक्रम भारत विभूति में चर्चा की के शंकर पिल्लई जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखक अखिलेश कुमार वर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा।
1: मैं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती।
0: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां 21 से 23 अगस्त तक जननायक समारोह का आयोजन किया गया है।

0: जिसका निर्देशन किया रामचंद्र सिंह ने। आइए सुनते हैं इस नृत्य नाट्य के संपादित अंश।
1: दादा कोई कथा सुनाओ।
2: कथा सुनाओ? का कथा सुनाओ?
3: पुरानी कथा।
4: दादा कोई पुरानी कथा सुनाओ, पुरानी कथा।
2: अरे कतेक पुराण कथा सुनाओ, तोर घर द्वार के कि राजा महाराज के?
5: राजा महाराज की।
1: गोंड राजा की कथा सुनाओ दादा।
4: हाँ दादा गोंड राजा की कथा सुनाओ।
2: अच्छा तो गोंड राजा की कथा सुनाओ।
4: हाँ दादा।
2: तो भाई लोग, दाई दादा मन, कान धर के सुनना, ये गोंड राजा की कथा है। राजाओं के राजा पेमल शाह की कथा सुनाता हूँ। वो बहुत प्रतापी राजा थे, दूर दूर तक उनका राजपाट फैला हुआ था। राजा पेमल शाह का धरती पर अवतरण ब्रह्मा के हाथों हुआ था।

0: सात कोरी देवता के मथने से राजगोंड निकले। उसे देख ब्रह्मा खुश हुए। ब्रह्मा कहने लगे,
1: तुम राज करोगे, तुम ही हो राजा इस धरती के।

यही कहकर ब्रह्मा अपने लोक वापस चले गए। इसी घराने में राजा पेमल शाह और उनके चार भाई दूधन शाह, बूढ़न शाह, शंकर शाह और दलपत शाह हुए।

राजा पेमल शाह का ब्याह पातालकोट के राजा भोजा बल्लारे की बहन पोहपाल के संग बड़ी धूमधाम से होता है।

राजा पेमल शाह गढ़मंडला में राज कर रहे हैं। सब लोग उनका हुक्म बजा रहे हैं। 900 जोड़ी हल नागर चल रहे हैं। 12-12 लाख खंडीदान हो रहा है। 1600 बैल हैं। सब रैयत चिरई चिरगुन जीवधारी अच्छे से खा रहे हैं और आनंद मना रहे हैं।

ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हॉलैंड के राजा का छल, डच कंपनी का कूटनीतिक मुखौटा। 17वीं शताब्दी में दुनिया सम्राटों और शक्तिशाली शासकों का एक नक्शा थी, जहां सत्ता शीर्ष से नीचे की ओर बहती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC के व्यापारियों के लिए ये पहचान के एक मौलिक संकट जैसा था। VOC डच गणराज्य में स्थित एक निजी कंपनी थी, एक ऐसा राज्य जो प्रसिद्ध रूप से बिना किसी राजा के था। हालांकि एशिया के शाही दरबारों में व्यापारिक मामलों को राज्य के अस्तित्व से बेहद छोटा माना जाता था। शासक केवल अपने साथी राजाओं और सम्राटों के साथ ही शाही मामलों जैसे युद्ध, सैन्य सहायता और उत्तराधिकार पर चर्चा करना चाहते थे। इस भीड़भाड़ वाले कूटनीतिक अखाड़े में जीवित रहने के लिए डच गणतंत्रवादियों ने एक सोचे समझे वैश्विक धोखे का सहारा लिया। VOC के राजदूत नियमित रूप से खुद को एक गैर मौजूद हॉलैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में पेश करते थे। उन्होंने जानबूझकर कंपनी के जटिल कॉरपोरेट ढांचे को छिपाया और इसके बजाय स्टेड होल्डर मॉरिस ऑफ ऑरेंज को एक संप्रभु सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया। वे स्टेड होल्डर की तस्वीरें और कूटनीतिक पत्र लाकर राजाओं की सभा में बैठने की जगह हासिल करने के लिए भ्रम पैदा करते थे। ये छल 1627 में जापान के टोकुगावा शोगुनेट में पीटर न्यूयत्स के मिशन के दौरान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। न्यूयत्स ताइवान में व्यापारिक विवादों को सुलझाने की उम्मीद में बड़ी भव्यता के साथ ईदो पहुंचे। हालांकि जापानी अधिकारियों की गहन पूछताछ के सामने उनका मिशन बिखर गया। जापानियों ने गौर किया कि न्यूयत्स के पत्रों पर बटाविया के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर थे, जिन्हें वे केवल जावा का एक जागीरदार मानते थे। शोगुनेट के सख्त पदानुक्रम में एक अधीनस्थ के अधीनस्थ का सीधे जापान के राजा को संबोधित करना असहनीय और अशिष्टता का कार्य था। जापानी अधिकारियों ने प्रसिद्ध रूप से ये निष्कर्ष निकाला कि जावा हॉलैंड के बराबर है और दूतावास को पूरी तरह खारिज कर दिया। न्यूयत्स मिशन की विफलता ने VOC को सिखाया कि वे शोगुन के साथ समान राज्य भागीदार के रूप में बातचीत नहीं कर सकते। हॉलैंड के राजा के झूठ को जारी रखने के बजाय डचों ने एक क्रांतिकारी रणनीतिक बदलाव किया। उन्होंने टोकुगावा राज्य के छद्म प्रजा के रूप में दर्जा स्वीकार कर लिया। उन्होंने शाही पत्र भेजना बंद कर दिया और इसके बजाय बाहरी दुनिया की खुफिया रिपोर्टों के रूप में लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करना चालू कर दिया। हॉलैंड का राजा का ये छल उस युग के इंटरैक्टिव डोमिनेंस को दर्शाता है, जहां यूरोपीय नव आगंतुकों को एशियाई कूटनीतिक रीति रिवाजों के अनुसार खुद को ढालने के लिए मजबूर होना पड़ा। चाहे वो एक काल्पनिक सम्राट के बारे में उपयोगी झूठ हो या एक छद्म प्रजा के रूप में विनम्र समर्पण, VOC ने साबित कर दिया कि प्रारंभिक आधुनिक दुनिया में संप्रभुता का मुखौटा उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि मसालों का माल। अंततः कंपनी की लंबी उम्र जहाज के डेक पर नहीं बल्कि पूर्व के राजनीतिक परिदृश्यों में फिट होने के लिए खुद को रीब्रांड करने की उसकी क्षमता पर टिकी थी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: मैं हूं हरि प्रसाद चौरासिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुने कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

0: नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक नई कहानी, इतिहास के एक नए पन्ने की एक नई शुरुआत लेकर मैं तारीख
1: और मैं इतिहास आज फिर से आजाद हिंद के एक नए अध्याय को आपके सामने ला रहे हैं।
0: श्रोताओं, आज हम आपको 1857 की क्रांति के उस नायक से रूबरू करने जा रहे हैं जिनकी ख्याति उस समय तात्या टोपे से कम नहीं थी। इस नायक का नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान सिपाहियों में से एक थे। 80 वर्ष की आयु में सन 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कुंवर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लिया और बहुत से युद्धों में विजय हासिल की। इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में शाही परिवार में सन 1777 में हुआ था।
1: दोस्तों, 1857 का सिपाही विद्रोह महज विद्रोह भर या साधारण घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत थी। मेरठ के बैरकपुर की छावनी में भारतीय सिपाहियों ने क्रांति का जो बिगुल बजाया, उसकी गूंज बिहार के आरा तक भी पहुंची और वहां के बाबू कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। 25 जुलाई को दानापुर में क्रांति का बिगुल बजाकर सिपाही 26 जुलाई को सोन नदी पार कर 27

जोर जबरदस्ती लगान नहीं वसूलते थे। साहबजादा सिंह को चार पुत्र हुए, कुंवर सिंह, दयाल सिंह, राजपति सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह सबसे बड़े थे और बचपन से ही पढ़ने लिखने से कतराते थे, लेकिन उनका मन खेलकूद, कुश्ती और तलवारबाजी में खूब लगता था।

0: कुंवर सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए बेहतर योद्धा के रूप में चर्चित होने लगे। इस बीच उनके पिता मुकदमे में फंसे और उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। बाबू कुंवर सिंह चापलूसों से दूर रहते थे, इसीलिए उनकी अपने पिता से बिल्कुल नहीं पटती थी। उनके पिता के दरबार में कई चापलूस थे जिन्हें हटाने के लिए कुंवर सिंह ने पिता को सलाह दी थी। जब चापलूसों को नहीं हटाया गया तो वे अलग रहने लगे और जितौरा में अपना आवाज बनाया।
1: वृद्धावस्था के कारण साहबजादा सिंह की मृत्यु 1883 में हो गई। पिता के निधन के बाद बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के स्वामी बने। बाबू कुंवर सिंह गद्दी पर बैठते ही जगदीशपुर के विकास में लग गए। उन्होंने अपने जमींदारी काल में काफी जनसेवा की। जितौरा में तालाब का निर्माण कराया तो वहीं मुसलमानों के लिए मस्जिद और हिंदुओं के लिए मंदिर का निर्माण एक साथ कर कुंवर सिंह ने सर्वधर्म संभाव का बेहतर उदाहरण उस दौर में पेश किया। कुंवर सिंह हिंदू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय थे। अंग्रेजों से भी अच्छी पटती थी। समय समय पर अंग्रेज अफसरों के साथ वे जितौरा के जंगलों में शिकार को जाते थे। अंग्रेज भी उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और आतिथ्य की प्रशंसा करते नहीं थकते थे।
0: कुंवर सिंह ने अपने जमींदारी काल में पैतृक संपत्ति की भी वृद्धि की, लेकिन अधिक खर्च और कुप्रबंधन के कारण जमींदारी की स्थिति दयनीय हो गई। उन पर ऋण भार बढ़ने लगा। वे अपना खर्च कम नहीं करते थे। महाजन और साहूकार उनका शोषण करने लगे। ऐसे में कुंवर सिंह पर 17 लाख ऋण हो गया। महाजनों के चंगुल से मुक्त होने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार को आवेदन दिया।

0: इसी बीच 1857 तक ऋण बढ़कर 20 लाख तक हो गया था। वे चाहते थे कि सरकार इसकी व्यवस्था कर दे जिससे ऋण से मुक्ति मिले।
1: लेकिन तारीख स्थानीय महाजन नहीं चाहते थे कि कुंवर सिंह ऋण से मुक्त हों। वो उनको और फंसाना चाहते थे। कुंवर सिंह को कहीं से ऋण चुकाने के लिए कर्ज नहीं मिल रहा था और अंग्रेज सरकार भी उन्हें मदद नहीं कर रही थी। 25 जून 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने सरकार को आवेदन देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अभी मामला चल ही रहा था कि ठीक एक माह बाद 25 जुलाई को दानापुर छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह ने भी विद्रोह में भाग लिया।
0: 1845-46 में सोनपुर मेले के दौरान एक बैठक में क्रांतिकारियों के साथ उनकी भेंट हुई थी। कुंवर सिंह का संबंध नाना साहब के साथ था और वे कई बार उनसे मिल चुके थे। बहादुर शाह के नेतृत्व में हिंदू मुसलमानों द्वारा एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से निकालने की योजना बनी थी।
1: दानापुर के सैनिकों ने जब नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तब कमिश्नर ने कुंवर सिंह और डुमराव के जमींदार को समझाने के लिए बुलाया। कुंवर सिंह ने स्पष्ट कहा था कि शाहबाद के लोग मेरी बात मान सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह के सिपाही मेरी बात नहीं मानेंगे। इससे कमिश्नर खफा हो गया। कुंवर सिंह देश और बिहार की परिस्थितियों से अवगत थे। पीर अली की फांसी ने उन्हें बेचैन कर दिया था। इधर दिल्ली और मेरठ की घटना से बिहार के अंग्रेज अधिकारी चिंतित थे। दिल्ली पर विद्रोही सिपाहियों का अधिकार हो चुका था। सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर जो बिगुल बजाया, उसकी आवाज बिहार में भी स्पष्ट सुनाई पड़ी।

0: अंग्रेज कुंवर सिंह को गिरफ्तार करने की फिराक में लग गए। वहीं कुछ अंग्रेज अधिकारी इसके बाद के परिणामों से सशंकित थे कि कहीं इसका उल्टा असर ना हो। कमिश्नर टेलर पर पहुंची मजिस्ट्रेट की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने 2 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह के मित्र और रईस डिप्टी कलेक्टर मौलवी सैयद अजीमुद्दीन को बाबू साहब को पटना लाने के लिए भेजा। उस समय कुंवर सिंह जगदीशपुर में थे। कुंवर सिंह ने स्थिति को भांपते हुए अपनी अस्वस्थता जाहिर की और पटना नहीं गए।
1: इसके पूर्व पटना में मौलवियों की फांसी और टेलर के आतंकी कार्य को वे सुन चुके थे। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा हो गई और उन्होंने अपने आप को विद्रोह के लिए तैयार किया। दानापुर के सिपाहियों के विद्रोह को लेकर उन्होंने अपने भाई अमर सिंह और कई ख्याति प्राप्त लोगों के साथ विचार विमर्श कर हालात को जानने का प्रयास किया। सभी दानापुर के सिपाहियों का साथ देने के लिए तैयार थे और अधिकतर लोग कुंवर सिंह को सिपाहियों का नेता बनाना चाहते थे।
0: 29 मार्च 1857 को 34वीं पलटन के विद्रोह की जो आवाज मंगल पांडे की शहादत से उठी, उसका विद्रोही स्वर मेरठ और दिल्ली में सुनाई दिया। इसका प्रभाव दानापुर की छावनी पर भी पड़ा। क्रांतिकारियों की योजना 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने की थी। इसी बीच दिल्ली से खबर आई कि सिपाहियों ने वहां कब्जा जमा लिया है और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शासक बना दिया गया है। चारों ओर संघर्ष का शंखनाद हो गया था।
1: उधर टेलर पटना में लोगों को फांसी देकर आतंक मचा रहा था। कमिश्नर ने हालात देखते हुए सेना को पटना आने को कहा। इस बीच 24 जुलाई को 37 नंबर की यूरोपियन फौज दानापुर पहुंची। अगले दिन देशी फौज अंग्रेज अफसर और सैनिकों से भिड़ गई और मेजर जेम्स होम की हत्या कर दी। देशी सिपाही वर्दी उतार हथियार लेकर आगे बढ़े। सिपाही सोन नदी पार करना चाहते थे। वहीं सिपाहियों का पीछा करने के लिए अंग्रेजी सेना आ गई।
0: हालांकि 26 जुलाई को देशी सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने का काफी प्रयास किया। इधर हरे कृष्ण सिंह और रणदलन सिंह दानापुर जाकर सिपाहियों से बात कर उनको आरा में प्रवेश कराने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि नेतृत्व कुंवर सिंह करेंगे। हरे कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 27 जुलाई को वे सुबह आरा पहुंचे। उसी दिन बाबू कुंवर सिंह भी आरा आए। आरा स्थित बाबू बाजार के मकान पर सिपाही एकत्र हुए। बिहार की धरती पर कुंवर सिंह ने दानापुर के विद्रोही सैनिकों का साथ देकर क्रांति की धारा को तेज कर दिया था।

0: आरा पर कब्जे के बाद बाबू कुंवर सिंह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के करीब 5,000 क्रांतिकारी सिपाहियों के शौर्यमान नेता बन गए। कुंवर सिंह का प्रभाव इतना बढ़ गया कि खेत खलियानों में कुंवर सिंह पर गाने गाए जाने लगे। बिहार में जो विद्रोह हुआ उसका व्यापक प्रभाव पड़ा, इसमें जनता ने खुलकर भाग लिया। पूरे शाहबाद में विद्रोह का क्रांतिकारी तेवर अपना रूप ले चुका था। छोटे मोटे जमींदार और सभी राजपूत कुंवर सिंह के विद्रोह के साथ थे। आरा कब्जे के दौरान जेल को तोड़कर करीब 400 कैदियों को छुड़ा दिया गया था। बाद में सरकारी खजाने से 70,000 रुपए भी लूट लिए गए। इस लूट में अंग्रेजों के नजीर पहरेदारों ने भी साथ दिया।
1: सोन पार कर कुंवर सिंह से मिलने तक बागियों की संख्या 10,000 तक पहुंच चुकी थी, जो शाहबाद के लिए अनोखी बात थी। कुंवर सिंह ने ग्रैंड ट्रंक रोड पर कब्जा जमा लिया था। अंग्रेजों के पास जहां आधुनिक हथियार थे, वहीं कुंवर सिंह और उनके आदमियों के पास बहुत साधारण हथियार थे। ब्यायल कोठी की लड़ाई करीब एक सप्ताह तक चली थी। कहा जाता है कि पानी की कमी होने पर कोठी में तैनात सिख सिपाहियों ने 18 फीट जमीन खोदकर पानी की व्यवस्था की थी। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी। दानापुर से सेना भेजना आसान नहीं था। 27 जुलाई को 37 नंबर की गोरी सेना भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन नदी में पानी कम होने से जहाज रुक गया। बाबू कुंवर सिंह की सेना द्वारा आरा की घेराबंदी और कोठी में घिरे अंग्रेजों की रक्षा का प्रश्न सरकार को परेशान कर रहा था।
0: हालांकि उनकी रक्षा के लिए 500 यूरोपियन सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी गई, जिसका नेतृत्व कैप्टन डनवर ने किया। बाबू कुंवर सिंह के सैनिकों से डनवर की फौज का मुकाबला आरा से 3 मील दूर पर हुआ। रात का फायदा उठाकर काली पोशाक में कुंवर सिंह की सेना ने सफेद पोशाक पहने अंग्रेजों को चांदनी रात में पहचान कर हमला किया। सैनिकों को मरते देख अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। कई अंग्रेज सिपाही लापता हो गए। इस युद्ध में डनवर मारा गया, जो बच गए थे किसी तरह जान बचाकर भागे। ये कुंवर सिंह की अपूर्व विजय थी। दानापुर से सैनिक भेजे नहीं जा सकते थे, क्योंकि कुंवर सिंह के समर्थक सैनिकों की संख्या 10,000 तक हो गई थी। आरा पर कुंवर सिंह का पूर्ण अधिकार हो गया था। इस विजय के बाद कुंवर सिंह को लोगों ने तेगवा बहादुर की उपाधि से नवाजा। बाबू कुंवर सिंह ने अपना राज्य हरे कृष्ण के सहयोग से स्थापित किया। कुंवर सिंह ने बेहतर शासन के लिए कई व्यवस्थाएं की।
1: डनवर की पराजय और आरा में कुंवर सिंह के कार्यों से अंग्रेजों में डर पैदा हो गया था। इस बीच मेजर आयर ने आरा की ओर कूच किया। 2 अगस्त को कुंवर सिंह के सैनिकों के साथ उनका मुकाबला हुआ। अंग्रेजों के पास तोपें थी। कुंवर सिंह के सैनिक पीछे हटे, आयर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर बीबीगंज के पास एक नदी मिली, जहां भीषण संग्राम हुआ। कुंवर सिंह ने पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों पर आक्रमण किया। इस हमले से आयर घबरा गया। घंटों भयंकर संघर्ष जारी रहा। 3 अगस्त 1857 को आयर आरा पहुंचा। इसे गोरों को राहत मिली। आयर ने आरा पहुंचकर 2 दिन के भीतर सभी के हथियार जमा कर लिए और कोर्ट मार्शल कराकर संदिग्ध लोगों को फांसी पर लटका दिया।
0: 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के नजदीक गंगा नदी पार करते समय बाबू वीर कुंवर सिंह को अंग्रेजों की गोली लग गई। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ माँ गंगा को अंतिम दान कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण 24 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई।
1: कुंवर सिंह जब तक जीवित रहे, इस वीर ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और मरते समय तक जगदीशपुर को आजाद रखा। बाबू वीर कुंवर सिंह की याद और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अमूल्य भूमिका के लिए 23 अप्रैल 1966 में भारत सरकार ने 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया। बाबू कुंवर सिंह कहा करते थे, 100 दिन भेड़ की तरह जीने से 2 दिन शेर की तरह जीना ज्यादा अच्छा है, और वो अपनी पूरी जिंदगी उसी वचन के आधार पर जिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: यह प्रस्तुति उन्होंने दी भारत भवन में आयोजित कजरी झूला गायन महोत्सव में। यह इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग है।
1: अब एक कजरी में जो ठुमरी नुमा कजरी है वो प्रस्तुत कर रही हूँ। ठुमरी कजरी कई तरह की होती है। मिर्जापुरी कजरी थोड़ी चलत की कजरी होती है, बनारसी में फक्कड़पना होता है, और ये बनारस की हमारी गुरु हैं सविता देवी, उनकी शिष्या हैं सुचरिता दास गुप्ता, उन्होंने बताई है, तो वो सुनाती हूँ। मिश्र पीलू।

हिंडोला है वो गाऊंगी, और फिर बनारसी का एक थोड़ा सा 3 मिनट का झूला गा के अपनी प्रस्तुति समाप्त करूंगी।

0: शुक्रिया।
1: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे डॉक्टर नीना श्रीवास्तव का गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सागर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूँ कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: श्रीयुत हरिदास बिहारीदास देसाई के घर ठहरे।
1: स्वामी जी के वार्तालाप एवं व्यवहार से दीवान जी इतना मोहित हो गए थे कि वे नित्य तीसरे पहर राज्य के उच्च पदाधिकारियों के साथ स्वामी जी के पास बैठकर देर रात तक धर्म चर्चा किया करते। स्वामी जी भी इनके प्रति विशेष श्रद्धावान थे और दोनों में इस प्रकार जो मित्रता स्थापित हुई थी वो आजीवन बनी रही। अमेरिका से भी स्वामी जी उन्हें नियमित रूप से अनेक तथ्यपूर्ण पत्र लिखा करते थे। जूनागढ़ में इन सारी विचार गोष्ठियों में बातचीत के क्रम में धर्म के साथ अनेक सांस्कृतिक विषय में बोलते थे।
0: राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत ज्वलंत भाषा में वे इतिहास द्वारा स्वीकृत तथ्यों के सहारे प्रमाणित करने लगे कि भारतीय भावधारा ने किस प्रकार पश्चिमी जगत में फैलकर उसके धर्म को रूपांतरित किया है। मध्य और पश्चिम एशिया ही इस आदान प्रदान का मुख्य क्षेत्र था। उन्होंने दिखा दिया कि सनातन धर्म कितना प्राचीन, कितना उदार एवं कितना शक्तिशाली था। कितनी ही विभिन्न सभ्यताओं ने इस भावधारा का अनुसरण कर अपना अस्तित्व प्राप्त किया है।
1: दीवान के ऑफिस के मैनेजर श्रीयुत सीएच पंड्या ने उस समय की बातों का स्मरण कर लिखा था,
2: जूनागढ़ में हम सभी स्वामी जी के निश्चल भाव, आडंबर शून्यता, विभिन्न कलाओं और विज्ञानों के गहन ज्ञान, उदार विचार, धर्म प्राणता, मर्म स्पर्शी वाक कला और विलक्षण आकर्षण शक्ति से मुग्ध हो गए थे। इन सब गुणों के अतिरिक्त उनकी संगीत में असाधारण क्षमता तथा भारतीय कला की समस्त विधाओं में पारदर्शिता थी। अरे वे तो पाक कला में भी कुशल थे और बहुत बढ़िया रसगुल्ले बनाते थे। हम सभी उनके अनुरागी हो गए थे।
0: वस्तुतः जूनागढ़ में उन दिनों स्वामी जी के व्यक्तित्व का एक ऐसा अपूर्व विकास हुआ था जो लगता है कि आदर्श की दृष्टि से प्रायः संपूर्ण था। निश्चय ही उनका विराट व्यक्तित्व इसकी अपेक्षा भी विशाल और वैचित्र्यमय था। फिर भी हमें लगता है कि जूनागढ़ में उनकी असाधारण प्रतिभा कारगर ढंग से पूर्ण विकास की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी। वराहनगर में उन्हें अपने अध्ययन आदि में लीन एवं तपस्वी मार्गदर्शक के रूप में देखा था। हिमालय में उन्हें हमने सत्य दृष्टा ऋषि के रूप में देखा है। अलवर में उनका गुरुभाव प्रस्फुटित हुआ था। खेतड़ी में वे धर्म जीवन के साथ पाश्चात्य विज्ञान का समन्वय करने में तत्पर दिखाई पड़ते हैं। जूनागढ़ में वे ये सब तो हैं ही, इनके अतिरिक्त उन्हें हम भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अग्रदूत के रूप में पाते हैं। पूर्व और पश्चिम के आदान प्रदान का इतिहास बताकर, संस्कृति के विजय अभियान की गाथा सुनाकर वे अब श्रोताओं को मोह लेते हैं। अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण के जीवन का वृतांत सुनाकर भारतीय आध्यात्म की चिर नवीनता और अमरता प्रमाणित करते हैं।
1: हम समझ सकते हैं कि अन्य स्थानों की भांति जूनागढ़ में भी उनके गुण ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और यहाँ पुरातन पंथी पंडित तथा नवीन पंथी शिक्षित समाज के सभी लोगों ने उनके उदार धर्म भाव, गहन देश प्रेम, अगाध पांडित्य, तेजोमय भाव प्रकाश इत्यादि से आकृष्ट होकर एक नई प्रेरणा पाई थी। किंतु सहज ही सफलता की प्राप्ति होने पर भी वे संतुष्ट होकर बैठे नहीं रह सके। सुदूर की पुकार उन्हें अन्यत्र ले चली।
0: सुविख्यात गिरनार पर्वत जूनागढ़ शहर से 2 मील दूर पर स्थित है। ये स्थान हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन सभी संप्रदायों की अति प्राचीन एवं पवित्र स्मृतियों और कीर्तियों अथवा खंडहरों को अपने सीने पर लिए सबके लिए आकर्षक हो गया है। यहाँ जगह जगह पर कई सुंदर मंदिर, मस्जिद और समाधि स्थल दिख पड़ते हैं, किंतु कीर्ति के स्मारक के रूप में खपड़ा खोदिया के नाम से अनेक गुफाएं अभी भी हैं। सांप्रदायिक उत्थान पतन के साथ साथ इन सबका विभिन्न युगों में विभिन्न संप्रदायों के मठों के रूप में निर्माण किया गया था। स्वामी जी ने इन सब का उत्सुकता पूर्वक दर्शन किया। वे पहाड़ की चोटी पर चढ़े। इस मार्ग के अगल बगल अनेक मंदिर मिलते हैं। जिस शिलाखंड पर सम्राट अशोक ने अपने 14 अनुशासन खुदवाए थे वो भी दिखाई देते हैं। भवनाथ के नाम से विख्यात शिव मंदिर में सदैव अनेक सन्यासियों का आगमन होता है। ऊपर जाकर रास्ता बहुत संकीर्ण हो गया है।
1: 1500 फुट ऊपर भैरव झंपा नामक एक जगह है। ऐसी जनश्रुति है कि वहाँ से कूदकर कई हजार फुट नीचे गिरकर अनेक लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए हैं। इसके और भी ऊपर 2370 फुट ऊपर किले की भांति दीवार से घिरे स्थान पर

0: 16 जैन मंदिर मिलते हैं। यहाँ आकर स्वामी जी ने कुछ देर तक विश्राम किया और मंदिरों के अपूर्व शिल्प तथा तीर्थकरों की मणिरत्न विभूषित मूर्तियों का निरीक्षण किया। फिर और भी ऊपर 3,300 फुट की ऊंचाई पर पर्वत शिखर पर चढ़कर उस क्षेत्र के दूर दूरांतर के मंदिर आदि से सुशोभित पवित्र स्थानों को देखकर उन्होंने तृप्ति पाई।
1: उस शिखर से उतरकर दूसरे शिखर पर चढ़कर उन्होंने अवधूत दत्तात्रेय के चरणों के चिन्ह का दर्शन किया। उस शिखर के नीचे बहुत दूर तक फैली हुई शैल श्रृंखला देखी जा सकती है। निकट ही चार अक्षर की विशिष्ट आकृति वाली या ब्रह्मा के कमंडल के आकार की एक झील भी पाई जाती है। सब कुछ विचार कर गिरनार पर्वत स्वामी जी को तपस्या के उपयुक्त मनोरम स्थान प्रतीत हुआ।
0: इसके लिए उन्होंने एक निर्जन गुफा भी खोज ली और कुछ दिन वहाँ ध्यान में व्यतीत होकर फिर जूनागढ़ मित्रों के पास आ गए। फिर शीघ्र ही उन लोगों से विदा ली और कच्छ राज्य के उच्च पदाधिकारियों के नाम जूनागढ़ के दीवान जी द्वारा दिए गए परिचय पत्र लेकर उन्होंने कच्छ राज्य की ओर प्रस्थान किया।
1: कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता रहता है कि स्वामी जी तो सर्वत्यागी सन्यासी थे, फिर उन्हें हमेशा धनवान शक्तिशाली और राजा महाराजाओं से दोस्ती करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब हमें अनेक परवर्ती काल के एक कथन से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा था,
2: जिसके हाथों में क्षमता ऐश्वर्य एवं हजारों व्यक्तियों पर शासन करने की शक्ति रही है, उन लोगों को यदि मैं अपने भाव में भावित कर सकूं तो मेरे जीवन का व्रत और अधिक सफल होगा। मात्र एक महाराजा को अपने मत में ला सकने पर मैं हजारों व्यक्तियों का उपकार कर सकता हूं।
0: भुज पहुंचकर स्वामी जी राजा के दीवान जी के अतिथि बने। दीवान जी उनके अगाध पांडित्य, मनोहर व्यक्तित्व एवं अत्यंत दुरूह विषयों को सामान्य लोगों के समझने योग्य भाषा में व्यक्त करने की क्षमता को देखकर उनकी ओर आकृष्ट हुए। बहुत दिनों बाद भी ये सारी बातें दीवान जी को याद थी। उन्होंने ये सारी बातें स्वामी जी के एक शिष्य को सुनाई थी। जूनागढ़ की ही भांति यहाँ भी दीवान जी के घर पर स्वामी जी को केंद्रित कर विचार गोष्ठी आयोजित होती। धर्म चर्चा के साथ ही शिल्प, कृषि, आर्थिक समस्या आदि की बातें भी आ जाती और स्वामी जी सबको समझा देते कि इन सब दिशाओं में भी भारत की उन्नति की आवश्यकता है तथा उसका उपाय भी भारत की क्षमता से परे नहीं है। गुणग्राही दीवान जी ने कच्छ महाराजा से स्वामी जी का परिचय करा दिया और महाराजा भी लंबे अरसे तक होने वाली चर्चाओं से विशेष आनंदित हुए।
1: कच्छ की राजधानी भुज से लौटकर स्वामी जी फिर जूनागढ़ पहुँचे। वही मानो उस समय उनके काठियावाड़ भ्रमण का मुख्य केंद्र था। इस बार जूनागढ़ लौटकर उन्होंने कुछ दिन वहीं व्यतीत किए और फिर वेरावल एवं सोमनाथ बंदरगाह यानी पाटन सोमनाथ की यात्रा की। पाटन सोमनाथ ही पुराणों में प्रसिद्ध प्रभास तीर्थ है। सोमनाथ का मंदिर अनेक बार विधर्मियों के द्वारा विध्वस्त एवं भक्तों के द्वारा पुनर्निर्मित हुआ है। एक समय मंदिर में प्रचुर धन था। कहा जाता है कि देवोत्तर संपत्ति के रूप में 10,000 गांव मंदिर के व्यय के लिए रख छोड़े गए थे और 300 गायक उस मंदिर से जुड़े थे। इसी प्रभास क्षेत्र में आंतरिक कलह के कारण यदुवंश का विनाश हो गया और इस दुर्भाग्य के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक व्याध के तीर से विद्ध होकर योग मार्ग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया।
0: सोमनाथ के मंदिर का दर्शन करने के उपरांत स्वामी जी ने सूर्य मंदिर और रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया एवं त्रिवेणी संगम में स्नान किया। प्रभास में कच्छ के महाराज से उनकी पुनः भेंट और वार्तालाप आदि होने पर स्वामी जी के अगाध पांडित्य और विविध विषयों में नवीन एवं सरल ज्ञान को देखकर महाराजा ने कहा, स्वामी जी, एक साथ कई पुस्तकों को पढ़ने पर जिस प्रकार मस्तिष्क चकरा जाता है, उसी प्रकार आपसे वार्तालाप करने पर मेरा मस्तिष्क कूल किनारा खो बैठता है। इतनी प्रतिभा का प्रयोग कहां किस प्रकार होगा? कुछ एक अत्यंत आश्चर्यपूर्ण घटना के नहीं घटित होने तक आप रुकेंगे नहीं। महाराज ने उन्हें राज्य देखने के लिए निमंत्रित किया।
1: प्रभास से थोड़े ही दिनों के बाद वे जूनागढ़ लौट आए और वहां कुछ दिन विश्राम करने के बाद पोरबंदर पहुंचे। पुराण प्रसिद्ध इस सुदामापुरी में आकर उन्होंने सुदामा जी के मंदिर में दर्शन किया। उस राज्य के राजा उन दिनों अल्प वयस्क थे, इसलिए दीवान श्रीयुत शंकर पांडुरंग राज्य का संचालन करते थे। स्वामी जी अखंडानंद की स्मृति कथा के मतानुसार स्वामी जी यहाँ शंकर पांडुरंग के घर में अतिथि थे। वे पोरबंदर यानी सुदामापुरी के शासक थे। स्वामी जी कहा करते थे कि उनके समान वेद का पंडित उन्होंने भारत में नहीं देखा। अथर्ववेद का भाष्य सहज प्राप्त नहीं होने से उन्होंने स्वयं भाष्य प्रकाशित किया। स्वामी जी इनसे संस्कृत में वार्तालाप करने का अभ्यास कर थोड़े दिनों में ही परिपक्व हो गए। दीवान जी उन दिनों वेद का अनुवाद करने में लगे थे।
0: स्वामी जी के पांडित्य का परिचय पाकर इस कार्य में सहायता के बहाने ही विशेष अनुरोध कर उन्हें कुछ दिनों तक अपने घर में रखे रहे। वेद के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा और अनुराग के कारण स्वामी जी इस कार्य की ओर आकर्षित हुए। इसके अतिरिक्त वहाँ पाणिनि के पातंजल भाष्य को समाप्त करने का उन्होंने सुयोग भी पाया। शंकर पांडुरंग महोदय के परामर्श पर उन्होंने फारसी भाषा पर भी काफी अधिकार प्राप्त कर लिया। स्वामी जी की मेधा, उदारता और मौलिक विचारधारा का परिचय पाकर पांडुरंग जी ने कहा था,
3: मुझे लगता है कि आप इस देश में कुछ अधिक नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपके लिए पश्चिमी देशों में जाना उचित है। वहां के लोग आपके विचारों एवं व्यक्तित्व की वास्तविक मर्यादा समझ पाएंगे। सनातन धर्म का प्रचार कर निश्चय ही आप पाश्चात्य संस्कृति को आलोक प्रदान कर सकेंगे।
0: ये बातें सुनकर स्वामी जी प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वयं उनके मन में भी इस प्रकार की परिकल्पना प्रस्फुटित हो रही थी और इस अस्फुट इच्छा का आभास उन्होंने इसके पूर्व जूनागढ़ के पंड्या महोदय को भी दिया था।
1: इन दिनों वे अपने भीतर एक विचित्र तरह की विकलता का अनुभव करते। उन्हें प्रतीत होता कि श्री राम कृष्ण ने एक बार जो बात कही थी, नरेन के भीतर ऐसी शक्ति है जिससे वो संसार को उलट पलट कर रख दे सकता है, वो वस्तुतः सच है। उन्होंने भारत के जितने स्थानों का भ्रमण किया था, जितने राज दरबारों या पंडितों के समाज में अपने वक्तव्य आदि दिए थे, सर्वत्र ही लोगों को ऐसा अनुभव हुआ था कि वे महाशक्तिधर महाप्राण पुरुष स्वदेश के कल्याण के लिए किसी एक स्थान में कोई एक विशेष कार्य करने के लिए भगवान के द्वारा मनोनीत हुए हैं। आध्यात्मिक पुनरुत्थान की बात ही उन दिनों उनके चिंतन का प्रथम और प्रधान विषय थी।
0: उन्होंने कट्टर धर्मांधों की संकीर्णता और सुधारवादियों के भ्रम दोनों को ही देखा था और उन्होंने देखी थी साधारण जनों की ईर्ष्या परायणता, कलह विलगाव तथा लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्तता का अभाव, जिन सब ने पराधीन जाति के जीवन में प्रबल आकार धारण कर लिया था। भारत अपनी अंतर्निहित शक्ति के बूते पर तथा सनातन धर्म और आर्य संस्कृति के प्रभाव से अभूतपूर्व मान और ऐश्वर्य का अधिकारी हो सकता है, तथापि जो तथाकथित नेता और मुट्ठी भर भ्रांत समाज सुधारक हैं, वे अपने जीवन में अपने ही उपदेशों का प्रतिपालन करने से विमुख होकर व्यर्थ की बातों में दिन बिताते हैं।
1: भारत अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को भूल गया है, ये देखकर स्वामी जी के प्राण रो उठते थे। जो उन्हें चाहते और श्रद्धा करते, उन लोगों से वे साफ साफ कहते थे, इस अवस्था का परिवर्तन अत्यावश्यक है। राजाओं, महाराजाओं और विभिन्न राज्यों के शासन अधिकारियों को वे अपना ये सिद्धांत सुनाते और उनकी प्रतिभा का परिचय पाकर वे उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनते। परंतु उन्होंने देखा कि इस नवीन वाणी को रूप आकार प्रदान करने के लिए उस समय भी कोई अग्रसर नहीं हो रहा है। कहीं मानो एक अभाव रह गया है जिसके कारण आदर्श यथार्थ में परिणित नहीं हो पा रहा है। यही स्वामी जी के क्षोभ और चिंता का कारण था। इसके बाद मार्ग किधर है? स्वामी जी की चिंता इस समस्या के समाधान में ही लगी रही।
0: स्वामी जी जब पोरबंदर में थे तब एक मजेदार घटना घटी। स्वामी त्रिगुणातीत उस समय पैदल तीर्थ दर्शन करते करते पोरबंदर में आकर अन्य कई सहयात्रियों के साथ ठहरे थे। सहयात्री साधुओं की इच्छा थी कि वे लोग मरुतीर्थ हिंगलाज जाएंगे। वो स्थान काफी दूर था। पैदल रास्ता तय करना असंभव नहीं होने पर भी समय साक्षेप और अत्यंत कष्टमय मार्ग था। अतएव उन लोगों ने करांची तक जहाज से जाकर वहाँ से ऊंट पर चढ़कर हिंगलाज जाना ही उचित समझा। किंतु इतने पैसे कहाँ थे? सभी चिंता मग्न थे। तभी एक साधु ने कहा, दीवान जी के मकान में एक विद्वान परमहंस है, वे अंग्रेजी बोलते हैं और पंडितों के समाज में विशेष समादृत हैं। ये महात्मा संभवतः हम लोगों के लिए दीवान जी से कहकर रुपयों की व्यवस्था कर दे सकते हैं।
1: तदनुसार छोटी सी साधु मंडली के आगे आगे स्वामी त्रिगुणातीत राजभवन की ओर चले। उस समय स्वामी जी महल के ऊपरी बरामदे में टहल रहे थे। इसी से दूर से ही उन्होंने साधु मंडली को देख लिया। इस दल में अपने गुरु भाई त्रिगुणातीत को देखकर विस्मित होने पर भी वे अत्यंत उदासीनता पूर्वक नीचे उतरकर अपने कमरे में बैठ साधुओं के आने की प्रतीक्षा करने लगे। द्वार पर नियुक्त पहरेदारों ने पहले उन लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया। अंत में परमहंस का दर्शन करने जाएंगे आदि कहकर त्रिगुणातीत ने एक अन्य साधु के साथ जाने की अनुमति पाई। स्वामी जी के कमरे में आते ही गुरु भ्राता को अचानक इस अप्रत्याशित स्थान पर देखकर वे अत्यंत आनंदित और आश्चर्यचकित हुए। इधर स्वामी जी ने दृढ़ स्वरों में कहा, इस प्रकार दूसरे लोग उनका पीछा करें इसे वे पसंद नहीं करते। त्रिगुणातीत ने तब उन्हें बता दिया कि स्वामी जी के पोरबंदर में रहने की बात वे रंच मात्र भी नहीं जानते थे। हिंगलाज के दर्शनार्थी संगी साधुओं के अनुरोध पर अर्थ भिक्षा करने आकर देव संयोग से भेंट हो गई है। इसके बाद स्वामी जी ने उन लोगों की याचना पूरी करने की व्यवस्था करने के बाद त्रिगुणातीत को सावधान कर दिया कि वे फिर उनके पीछे न चले।
0: स्वामी जी से विदा लेकर त्रिगुणातीत अपने निवास स्थान हटकेश्वर मंदिर लौट आए। दूसरे दिन तड़के भोर में वे अन्यत्र जाने के लिए गठरी पोटली बांध ही रहे थे। उसी समय वहां आकर स्वामी जी उन्हें अपने निवास स्थान ले गए। त्रिगुणातीत की गठरी वे स्वयं ही ढोकर ले चले। वहां उन्हें दो दिन रखकर विदा करते समय कहा, मैं यहां रह रहा हूं, ये समाचार मठ में खासकर अखंडानंद को किसी भी स्थिति में नहीं बताना।
1: पोरबंदर में कुछ दिन और बिताकर अंत में स्वामी जी ने मित्रों से विदा ली और भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि द्वारका चले आए। प्राचीन कीर्तियों में से कुछ भी वर्तमान द्वारका में नहीं पाया जाता। जहां भगवान श्री कृष्ण का अट्टालिकाओं से सजा वो पौराणिक नगर था, वो आज अतल समुद्र के गर्भ में निमज्जित है।
0: वे श्री शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित शारदा पीठ की ओर चिंताकुल हृदय से धीरे धीरे चल पड़े। मठ के महंत ने उनका सादर स्वागत किया। यादवों द्वारा अवस्थित उस प्राचीन महानगरी के अवशिष्ट एक हिस्से में स्थित उस मठ के एक नीरव कमरे में बैठकर स्वामी जी एकांत मन से भावी भारत के पुनरुत्थान के विषय में सोचने लगे और अपने मानस नेत्रों से भारत के समुज्वल दैदीप्यमान भविष्य का चित्र देखते रहे। द्वारका और भेंट द्वारका के दर्शन के उपरांत वे कच्छ के महाराजा के आमंत्रण अनुसार फिर उस राज्य को देख आए।
1: स्वामी जी के बार बार मना करने पर भी अखंडानंद को उनसे मिलने की इच्छा हुई। वे स्वामी जी की तलाश में निकल पड़े। स्वामी जी की तलाश में विभिन्न जगहों पर घूमने के बाद स्वामी अखंडानंद को बंधवा आने पर ज्ञात हुआ कि स्वामी जी वहां थे अवश्य, किंतु अभी वे जूनागढ़ में हैं। फिर जूनागढ़ पहुंचने पर उन्हें समाचार मिला कि स्वामी जी वहां से पोरबंदर होते हुए द्वारका धाम गए हैं। द्वारका से वे बेट द्वारका जाएंगे। उसी मार्ग से बेट द्वारका आने पर अखंडानंद ने सुना कि स्वामी जी ने पहले ही वेरावल में कच्छ भुज के राजा का आमंत्रण पाया था, उसी के अनुसार वे मांडवी चले गए हैं। मांडवी से स्वामी जी राजकीय गाड़ी से राजा के ही लोगों के साथ नारायण सरोवर गए और वहां से वे आशापुरी चले गए।
0: उन्हें पकड़ पाने के लिए स्वामी अखंडानंद ने बहुत दिनों तक उनका पीछा किया, फिर भी वे सफल नहीं हुए। मांडवी आकर उन्होंने तय किया कि चाहे जैसे भी हो उनके पास पहुंचना ही होगा। अतएव हर प्रकार का कष्ट झेलते हुए वे स्वामी जी की खोज में शीघ्र ही आशापुरी आ गए। परंतु यहां आकर उन्हें ज्ञात हुआ कि स्वामी जी उनके आने से पहले ही 100 मील दूर स्थित मांडवी की ओर चले गए हैं। और अंत में मांडवी पहुंचने पर ये खबर पाई कि स्वामी जी एक भाटिया सेठ के घर में ठहरे हैं। तुरंत वहां जाकर उन्होंने स्वामी जी से भेंट की। स्वामी जी ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हुए कहा,
3: क्यों रे गंगा, तू यहां कैसे आ गया?
1: अखंडानंद ने अब तक जयपुर से मांडवी तक स्वामी जी के पीछे कैसे धावा किया सब कह सुनाया। सुनकर स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों व्यक्तियों ने एक साथ इसी मकान में कुछ दिन व्यतीत किए। इसी से कुछ दिनों बाद जब स्वामी जी ने उनसे खुले शब्दों में कहा,
3: ओरे गंगा, मैंने अपना एक जीवन लक्ष्य निर्धारित किया है। तुम में से किसी के साथ रहने पर उसे कार्य में परिणित नहीं कर सकूंगा। देख, मैं दुश्चरित्र हो गया हूँ, मेरा साथ छोड़ दो।
4: यदि तुम दुश्चरित्र हो गए हो तो इससे क्या, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे चरित्र से उसका क्या संबंध। किंतु तुम्हारे कार्य में विघ्न बाधा उपस्थित नहीं करूंगा भाई। तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो गया था और वो लालसा भी पूरी हो गई। अब तुम अकेले जा सकते हो।
0: दूसरे दिन ही स्वामी जी मांडवी छोड़कर भुज चले गए। इधर अखंडानंद अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए एक दिन और मांडवी में रहकर वहां गए। इससे स्वामी जी को ये विश्वास हो गया कि अखंडानंद उनकी स्वाधीनता में बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे। इसी से दोनों व्यक्ति भुज में दो दिन एक साथ बिताकर मांडवी लौटे और वहां एक पखवाड़े तक साथ साथ रहे। यथा समय स्वामी जी ने पोरबंदर के लिए प्रस्थान किया। इसके 5-7 दिनों बाद ही अखंडानंद भी वहां उनसे मिले। यहां भी कई दिन एक साथ परमानंद में व्यतीत हुए। इसी के बाद स्वामी अकेले जूनागढ़ चले गए।
1: कच्छ राज्य में परिभ्रमण करने के समय की एक कहानी स्वामी जी ने कही थी। एक समय वे मरुभूमि होकर जा रहे थे। सूर्यदेव आग बरसा रहे हैं और प्यास के मारे कंठ सूख रखा है। फिर कहीं भी जल या गांव घर का चिन्ह मात्र नहीं दिख रहा है। इस तरह कष्ट से चलते चलते अचानक उन्होंने देखा कि आगे पेड़ झाड़ियां और फूस से आच्छादित एक सुंदर गांव है और उस गांव में निर्मल जल से भरा हुआ एक सरोवर है। 2-4 डग जाने पर ही प्यास बुझ जाएगी, इसी आशा से वे जितना ही आगे बढ़ने लगे वो मरुवाटिका भी जैसे उतनी ही दूर हटने लगी। किसी तरह भी दूरी कम नहीं हो पा रही थी। तभी उन्हें वेदांत का सिद्धांत स्मरण हो आया, जीवन इसी प्रकार की पहेली के पीछे चलने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अपूर्व माया का कैसा इंद्रजाल है। इसके बाद भी उनकी आंखों के आगे बार बार निहारिका का आगमन होता रहा, परंतु वे फिर विभ्रांत नहीं हुए। उस समय उनके ज्ञान नेत्र का उन्मीलन हो गया था, वे सत्य का साक्षात्कार कर चुके थे।
0: जूनागढ़ के बाद स्वामी जी का परवर्ती दर्शनीय स्थान था पालीटाना। यही जैनों का पवित्र स्थान शत्रुंजय पर्वत स्थित है। पर्वत पर हनुमान जी का एक मंदिर भी विराजमान है। इसके अलावा हेंगर नामक एक मुसलमान साधु का समाधि स्थल भी यही है। शत्रुंजय पर्वत से इन सभी आकर्षक दृश्यों का अवलोकन कर पुरातन भारत की आश्चर्यकारक गरिमा का स्मरण कर स्वामी जी का हृदय एक साथ ही आनंद और गहन चिंता से भर उठा। इस लुप्त गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का क्या उपाय है।
1: चिंता मग्न हृदय से पर्वत शिखर से उतरकर वे पालीटाना के मंदिर आदि का दर्शन करते करते अपने गंतव्य पथ पर चढ़ चले और कभी पैदल कभी ट्रेन से चलकर नाडियाड स्टेशन पहुंचे। नाडियाड से वे बड़ौदा आए। वहां गायकवाड़ राज्य के दीवान श्रीयुत मणिभाई के यहां आतिथ्य ग्रहण किया। बड़ौदा से स्वामी जी ने 26 अप्रैल को श्रीयुत हरिदास बिहारी दास को लिखा था,
2: आपके मित्र मणिभाई ने मेरे लिए सभी सुविधाएं प्रदान की हैं। जहां तक उनके सत्संग का प्रश्न है, केवल मैं उनसे 2 बार मिला, एक बार 1 मिनट के लिए और दूसरी बार ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के लिए, जब उन्होंने यहां की शिक्षा पद्धति पर बातचीत की। पुस्तकालय और रवि वर्मा के चित्र तो खैर देख ही लिए, यहां केवल यही दर्शनीय वस्तुएं हैं। अतः आज शाम को मैं बंबई जा रहा हूं।
1: बड़ौदा छोड़ने के बाद स्वामी जी मुंबई और पुणे होकर गर्मी के दिनों में महाबलेश्वर चले गए। उनका गुजरात भ्रमण समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। अब हमें आगे दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे प्रत्येक बुधवार और रविवार इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: खिलाफ इससे हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अब रात्रि के 10 बजने वाले हैं, तो अब समय है हमारी सभा के समापन का। चलते चलते हम आपको बताए दे रहे हैं कि कल यानी 23 अगस्त रविवार को आप हमारी सुबह की सभा में कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। सुबह 7 बजे जब सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 पर सुनिए ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में, और 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, ये कार्यक्रम कल टुंगटूरी प्रकाशम जी पर आधारित होगा, जिनकी कल जयंती भी है। सुबह 8:30 सुनिएगा बाल सभा। कल बाल सभा होगा रक्षाबंधन विशेष, प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र। सुबह 9:00 सुनिएगा प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम में बातें होंगी वायुमंडल के बारे में। सुबह 9:30 सुनिएगा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें बात होगी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अब तक के सफर की। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से चर्चा की है पूर्वाखले ने। दिन में 10:00 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम आजाद हिंद। ये कार्यक्रम आधारित होगा शेख भिखारी पर। दिन में 11:00 आपके लिए लेकर आएंगे परिक्रमा, और 11:30 आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे रश्मि रथी का भाग 10। अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए। और अब दीजिए अनुमति इस सभा से पूर्वाखले को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।